आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 8 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 36 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दो दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। सीबीआई वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आरंभ मातृ वंदना से। हमारी भारतवर्ष की नदियां भारत की माँ और प्राण है, जो देश के वीरों की तरह ही हमेशा हमें आगे बढ़ना सिखाती है।

समस्वरों में अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। कविता मथरानी की आवाज में आइए सुने ये शिव भजन। एकमात्र वो यथार्थ है, एकमात्र वो यथार्थ है, वश उनका तीनों काल पे पूरा जग झूम उठता है मेरे भोले के डमरू की ताल पे।

कभी माखन चुराया कभी रास रचाया, कभी माखन चुराया कभी रास रचाया, प्रेम की परिभाषा हमें मुरली की धुन में समझ में आया। जब जब भटकेगी राह मनुज की तब तब सारथी बन तुम आओगे, हे मुरलीधर हर युग में तुम ही हमारे मन को भाओगे।

0: ए हरिहरन के स्वर में अभी आप सुन रहे थे कृष्ण भजन। इसी के साथ ही आज की वंदना यहीं पर संपन्न होती है। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:20 हुए हैं। आइए सुने आज का चिंतन। आलेख और प्रस्तुति माधुरी महापात्र की है।
1: सुंदर विचार जिसके साथ हैं वे कभी एकांत में नहीं होते हैं, खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है पेड़ों को छांव देते हुए। विचार मनुष्य में स्वाभाविक है। विचार न हो तो हम पशु की श्रेणी में गिने जाएंगे। विचारों का उद्गम मन है। मन हमें प्राप्त होने से ही हम मनुष्य कहलाए। मन का काम है विचार करना या मनन करना। सारा मानव संसार विचार करता है, बोलता है, काम करता है और अनुभव करता है, पर बहुत से लोग यह नहीं जानते कि सब का कारण मन है। अज्ञात रूप से विचार चलते रहते हैं, उसी के कारण वे बनते बिगड़ते रहते हैं। फिर भी कहते हैं कि हमको विचार नहीं आते, हमने बिना विचारे काम कर लिया, हमको विचार शक्ति का रहस्य नहीं मालूम। यदि सूक्ष्म दृष्टि से जीवन का या संसार में किसी भी कार्य की जड़ देखी जाए तो मालूम होता है कि कोई भी कार्य बाहर दृश्य स्थूल जगत में होने के पहले वह हमारे मानसिक जगत में तैयार हो जाता है। ऐसा क्रम अनादि काल से चला आता है। जो संबंध बीज और वृक्ष का है वही संबंध हमारे विचारों और कार्यों में है। हम विचार करते हैं फिर कार्य करते हैं, पर हमें यह मालूम नहीं है कि यह कार्य हमारे विचारों के परिणाम है। हमें जो सुख दुख आदि प्राप्त होते हैं उसका कारण हम बाहर के पदार्थों को समझते हैं। बाहर नहीं, यह हमारी केवल कल्पना है। एक ही वस्तु आज हमें अप्रिय है, कल वह प्रिय हो जाती है। हम जैसा विचार उस वस्तु के विषय में करेंगे वैसी ही वह लगेगी। अच्छी और बुरी सब बातें सब हमारे मन में ही उत्पन्न होती है। भावनाएं और विचार दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। जीवन सभी विचारों को धारण किए हुए है, पर विचार जीवन को धारण नहीं कर सकते। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि जब आप बेचैनी, आवेश और इच्छा को लेकर बिस्तर पर सोने जाते हैं तो गहरी नींद नहीं आती। अति महत्वाकांक्षी लोगों को गहरी नींद नहीं आती क्योंकि भीतर से उनका मन मुक्त नहीं होता और महत्वाकांक्षाओं का नहीं होना सा प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में वे वहीं होती हैं। निद्रा में तभी विश्राम कर पाएंगे जब सोने से पहले सब विचारों योजनाओं को त्याग देंगे। विचार के बिना सृष्टि का कोई भी कार्य क्षण भर के लिए भी आगे नहीं बढ़ सकता। मनुष्य अपने विचारों का ही बना हुआ है। जैसा विचार करता है वैसा ही वह हो जाता है। मनुष्य अच्छा विचार करे तो अच्छा और बुरा विचार करे तो बुरा बन जाता है। मनुष्य विचारों का पुतला है। मनुष्य में मन का अस्तित्व होने से ही उसे रोग, शोक, भय, निर्भय, सुख, दुख, मित्र, शत्रु, अच्छा, बुरा आदि का अनुभव होता है। जो वस्तुएं हमारे उपयोग की हैं, जिनसे स्वार्थ सिद्ध होता है, परिस्थितियां अनुकूल हैं, उन्हें हम अच्छा कहते हैं, बाकी अन्य बुरा है। यह अच्छा बुरा हमारे विचारों से ही उत्पन्न हुआ। सारा संसार विचारों पर ही स्थित है। विचार करने में हम स्वतंत्र हैं। यदि मनुष्य शोक, भय, व्यभिचार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि के विचार करेगा तो निश्चय ही ये दुर्गुण उसमें बैठ जाएंगे। विपरीत में परोपकार, निर्भयता, सत्यता के विचार करेगा तो उसमें गुणों का प्रादुर्भाव होने लगेगा और साथ ही साथ एक आश्चर्यजनक शक्ति का संचार होगा। विचारों का महत्व असाधारण है। विचारों के द्वारा ही मानव जीवन का निर्माण होता है। विचारों के कारण ही मनुष्य ऊंचा बढ़ता और नीचे गिरता है। इसलिए विचारों को अपनाते समय हमें बड़ी सतर्कता रखने की आवश्यकता है।
0: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। आलेख और प्रस्तुति थी माधुरी महापात्र की। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:25 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का गायन।

देवताओं, संतों और दुष्टों की वंदना के पश्चात तुलसीदास जी प्राणी मात्र की वंदना करना भी नहीं भूले हैं। 84 लाख योनियों से स्वेदज, अंडज, उद्भिज तथा जरायुज, ये 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी तथा आकाश में रहते हैं और उनसे भरा हुआ ये समस्त जगत भक्त कवि को सीता राममय प्रतीत होता है। हवा के साथ धूल आकाश पर चढ़ जाती है और फिर वही नीचे बहने वाले जल की संगत में कीचड़ बन जाती है। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, किंतु वही सुसंग पाकर सुंदर स्याही वन धर्मशास्त्र लिखने के काम में आता है। जड़ और चेतन सभी को राममय जान तुलसीदास जी हाथ जोड़ उनकी वंदना करते हुए अपनी अल्प बुद्धि तथा अक्षमता प्रकट करना भी मर्यादा के अनुकूल पाते हैं। मानव की बुद्धि छोटी है और श्री राम का चरित्र अतः श्री राम का चरित्र गायन अपनी ढिठाई मान वो सज्जनों से क्षमा याचना करते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का गायन। स्वर महेंद्र कपूर का था, संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि समय की बेड़ा खड़ा चकोट।
1: सूरजमुखी चो बीज चो छोल का मांद रहे से एक आजे अकर तो बेरा भूई ने नंगत ओलकमा रतोरा। भूई के नंगत गड़िया जपुन बाती लगड़ा मार तो रहा है और पाछे देसी नांगर ले दुहार असन जपुन बाती बकर चलान देतो रहा है और बुन तो लाइक चो बना तो रहा है। सूरजमुखी चो बीज नंगत किस्म चो बीज होले ने 6 से 8 किलो और संकर किस्म जोन के हाइब्रिड किस्म बोलसो हुन होले ने 5 से 7 किलो 2.5 एकड़ चो हिसाब ने लागे से बुन तो समिया। सूरजमुखी चो बूटा घाम खुबे भाए से जुगे सीत की छाणुन बाती आमी सपाई समिया ने एचो कमानी करुक लाए सकू। जेट बेरा का जे जनवरी चो तीसर हफ्ता ले धरुन बाती फरवरी महीना चो सरासरी तक आमी के कमानी करुक लाए सकू। बुन तो पहिल बीच के 12 से 14 घंटा पानी ने भिजान बाती संगा तो रहा तेबे निकरान बाती बुन तो रहा। बीज ने हो तो रोग काजे 1 किलो बीज के थायरम 2 ग्राम नहाले वाविस्टिन 1 ग्राम के मिसान बाती उपचार करुन बुन तो रहा। पाउडरी मिल रही जोन थाने खुबे दखा दे से जाले बीज के 6 ग्राम मेटालिक्स 1 किलो बीज जो हिसाब ने उपचार करतो रहा। शीत बेरा बुनतो होलो ने धाड़ी ले धाड़ी 60 से धरुन बाती 70 सेंटीमीटर और चमास और जेट बेरा बुनतोर होले ने 45 से 50 सेंटीमीटर ओसार रतो रहा है और बूटा ले बूटा जो ओसार आए 25 से 30 सेंटीमीटर।

0: सेंटीमीटर रतो राय और बीच के चार धरुणबाती 5 सेंटीमीटर गड़ियानासन रपतो राय। असनीची सूरजमुखी ने पहल सिंचाई बुनलो 30 ले 35 दिन और दूसर सिंचाई फूल एतो समय ने करतो राय। पानी देते बेरा जुगे होली जाले भूई चो ओलकमा के दकुन बाती तीसर हर पानी देते रहोले जोन फूल फूलन बाती सूरजमुखी चे जोन फूल भीतर दाना मन बनते रह दे उसन समय ने देते रहे से। संगे संगे सूरजमुखी कमानी कर लेने खत और उर्वरक बल लागे से। सूरजमुखी काजे 80 किलो यूरिया 250 किलो फॉस्फोरस 33 किलो म्यूरेटा ऑफ पोटास 20 किलो सल्फर 2.5 एकड़ चो हिसाब ने लागे से। सफाई खत के 2 भाग करुन बाती पहल भाग के बुनतो समय ने देतो राय और जोन बाचलो बीती दूसर भाग आए उनके फिर 2 भाग करुन बाती 30-30 दिन चो आड़ ने देतो रहे से। संगे संगे आमी कई बोले फसल कमानी कर लेने लाटा बूटा होए से। अकर तो पहल एलाक्रो नहाले एडी मिथाइल 1.50 बोले ने 1.5 किलो असन दवाई के 600 लीटर पानी ने घोरुन बाती 2.5 एकड़ चो हिसाब ने छिछले ने लाटा बूटा कम हो दे। सोयाबीन संगे सूरजमुखी बल्ले ने 2:1 और राहर संगे सूरजमुखी 3:3 बल्ले ने बराबर बराबर कमानी करुक लाए सकू। असन कर लेने काय हो दे कि आमके अच्छा उपजन बल्ले मिरे दे और संगे संगे 2 फसल चो लाभ बल्ले मिरे। फूल फूल तो समय कहीं बोले कीटनाशक दवाई के नीचेच तो राय कसन बल्ले ने फूल ने ओंडार मोसी नहाले दूसर पिलपिली नहाल जो दूसर बल्ले कीड़ी उन बाती ये फूल ले धरुन बाती उन फूल ने बसे से उसन बेरा फूल चो पराकरण होए से और बीज बनुक लाए मुरियाए से। तो असन समय ने ध्यान दे तो राय कि आमे कहीं बोले कीटनाशक दवाई चो उपयोग नहीं करूँ। असनी ची सूरजमुखी चो सूरजमुखी के जुगे करुन तेल काजे कमानी कर सोत और आम के अच्छा किस्म के कमानी कर लेने उनके बीक लेने अच्छा तेल बोले मिरे दे। गोटोक की समय CO2 ये जो पाकतो समय 90 ले 95 दिन आए और ये जो उपजन मिरे से 2.5 एकड़ जो हिसाब ने 16 ले 18 क्विंटल और ये जोन किसन ने तेल जो जोन मात्रा रहे से बल्ले ने 38 ले 40% असन रहे से। देखे ये किसम के आमी सितकार और चमास बेरा कमानी करुक लाए सक। गोटोक की समय मार्डन पाक तो समय 80 ले 90 दिन होए से और ये जो उपजन बल्ले 12 ले धरुन बाती 15 क्विंटल असन 2.5 एकड़ जो हिसाब ने मिरे से और ऐसे थाने बल्ले तेल जो जोन मात्रा रहे से जो बीच ने 38 ले 40% असन और एक आमी तीनों समय ने बल्ले ने चमास बेरा सितकार बेरा और जेट बेरा कमानी करुक लाए सक। उसनी ची गोटोक DRS F108 ये चो पाकतो समय बोले 90 ले 95 दिन है और ये चो उपजन बोले 2.5 एकड़ चो हिसाब ने 12 ले 15 क्विंटल असन मिरे से और ये चो थाने जो तेल चो मात्रा रहे से 40 ले धरुन बाती 42% तेल रहे से जो बीचा ने और ये चो जो कमानी आए आमी सफाई समयान करुक ले सकू जेट बेरा शीतकार बेरा और चमास बेरा। उसने ची संकर किस्म जो उनके हाइब्रिड किस्म बोलो से गोटोक हो से ज्वालामुखी ये 95 ले 100 दिन चो भीतरे पाकुन बाद तैयार हो से और उपजन दे से 24 ले 30 क्विंटल असन और ये चो जो बीच ने तेल चो मात्रा रहे से 40 ले 42% असन रहे से अरे के बोले हम शीतकार बेरा और चमास बेरा कमानी करुक लाए सकू। उसनी ची गोटोक हो से KBSH1 एक किस्म बोले 90 ले 95 दिन ने पाकुन बाती तैयार हो से और ये चो उपजन हो से 24 ले 30 क्विंटल तक 2.5 एकड़ चो हिसाब ने और ये चो बीच ने तेल चो मात्रा रहे से 42 ले 45% और एक बोले हम तीनों समय ने बल्ले ने शीतकार बेरा जेट बेरा और चमास बेरा कमानी करुक लाए सकू।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुगोट। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। हुलहुली कार्यक्रम में आज सुनिए फिरंता पाड़। वाद्य कलाकार हैं मंगलू और साथी।

हुलहुली कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मंगलू और साथी का बजाया फिरंता पाड़। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आज सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। इसमें आप सुनेंगे आज के अतिथि। इसमें सुनिएगा डॉक्टर राशि जैन से भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे चंद्र ऋषि ठाकुर और होगी मधुर गीतों से सजी मधुरिमा। विभिन्न बोलियों में लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी आप सुन सकेंगे सुबह 8:30 पर। सुबह 9:00 सुनिएगा लोक साहित्य पत्रिका मोचू माटी। कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। इसमें आप सुनेंगे सागर फिल्म के कुछ गीत। सुबह 10:00 सुनेगा कार्यक्रम गुलशन। इसमें सुनिएगा पुराने नगमे। बस्तर के लोकगीतों का कार्यक्रम गुड़दुम में आप सुन सकेंगे शुक्ला और साथी का गाया गोंडी लोकगीत सुबह 10:30 पर। दिन के 11:00 सुना जा सकेगा कार्यक्रम एक ही कलाकार। इसमें आप सुनेंगे अभिनेत्री डिंपल कंपाड़िया अभिनीत फिल्मों के गीत। कार्यक्रम पाटा केंजा आप सुन सकेंगे दिन के 11:30 पर। इसमें आप सुनेंगे सैनी राम और साथी का गाया गोंडी लोकगीत। दोपहर 12:00 सुनिएगा कार्यक्रम कला और कलाकार। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार होगा दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:05 पर बेड़ा खड़चा गुट का पुनः प्रसारण किया जाएगा। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन आप सुनेंगे दोपहर 1:10 पर। दोपहर 2:30 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार आप सुनेंगे शाम 5:05 पर। शाम 5:10 पर होगा युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। संतुलाल और साथियों का गाया गोंडी लोकगीत सुनेगा शाम 6:30 पर। शाम 7:00 होगा बस्तर के स्वर कार्यक्रम आमचो गांव आप सुन सकेंगे शाम 7:21 पर। रात 8:00 सुना जा सकेगा बस्तर के लोकगीतों का कार्यक्रम नानोली। इसमें आज आप सुनेंगे रामेश्वर और साथी का गाया गोंडी लोकगीत। कार्यक्रम पीलामन का जे गोट आप सुन सकते हैं आज रात 8:30 पर। विषय होगा कल्पना चावला प्रस्तुति फूल सिंह कश्यप की होगी। आज रात 9:15 पर सुनिएगा जिमना चो सोर। इसमें सुनिएगा सोनमती घोष से भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे बलबीर सिंह कज। कार्यक्रम भेंट घाट सुना जा सकेगा रात 9:30 पर। इसमें आप सुन सकेंगे राजूराम बघेल से भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे बलबीर सिंह कच। रात 10:00 आप सुन सकेंगे बस्तर के लोकगीतों का कार्यक्रम कोदोमाली। इसमें आप सुनेंगे कहरू राम और साथी का गाया गोंडी लोकगीत। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। अष्टमः भारत इण्डोनेशिया संयुक्त आयोगस्य उपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम्। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण तस्य इण्डोनेशिया देशस्य समकक्षीयेण सुगियोनो इत्यनेन च सभायाः सहाध्यक्षता कृता। भारत इण्डोनेशिया देशौ राजनैतिक रक्षा सुरक्षा समुद्रीय व्यापार निवेशः औषधीय स्वास्थ्य सेवाः डिजिटल ऊर्जा सम्पर्कः अंतरिक्षम् शिक्षा दूतावास संस्कृति क्षेत्रम् इत्यादीनां विविध क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढं कर्तुं चर्चितवन्तौ। उभौ नेतारौ परस्पर हितानां क्षेत्रीयस्य वैश्विकस्य च विषयेऽपि विचाराणाम् आदान प्रदानम् अकुरुताम्। डॉक्टर जयशंकरः स्वस्य प्रारम्भिक भाषणे उक्तवान् यत् उभयोः राष्ट्रयोः मध्ये संयुक्त आयोगः चतुर्णां वर्षाणाम् अन्तरालस्य अनन्तरम् आहूयते। अस्मिन् उपवेशने द्वैपाक्षिक सम्बन्धेषु महती प्रगति अभवत्। लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरला वर्यः अद्य चण्डीगढ़ नगरे कॉमनवेल्थ संसदीय संघस्य सीपीए इत्यस्य भारत क्षेत्रस्य त्रिदिवसीय मण्डल द्वितीय सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य सम्मेलनस्य आयोजनं हरियाणा विधानसभया क्रियते। अस्मिन् कार्यक्रमे राज्यसभायाः उपसभापतिः हरिवंशः, राज्यस्य मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभायाः अध्यक्षः हरविंदर कल्याणः, सम्पूर्ण देशस्य 15 विधानमण्डलानां पीठासीन उपपीठासीन अधिकारिणः, विधानसभायाः सदस्याः च उपस्थिताः भविष्यन्ति। राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरणेन एनटीए इत्यनेन अस्मिन् मासे 21 दिनांके आयोक्ष्यमाणस्य 26,000 वर्षस्य नीट यूजी पुनः परीक्षायाः कृते परीक्षा नगर सूचना पत्रं प्रकाशितम्। पुनः परीक्षाः अपराह्ने 2 सायं 5:45 पर्यन्तं भारतस्य 150+500 नगरेषु 14 विदेशेषु च भविष्यन्ति। एनटीए इत्यनेन स्पष्टीकृतं यत् परीक्षा नगर सूचना पत्रं प्रवेशपत्रं नास्ति, अपितु केवलं अभ्यर्थिनां परीक्षा केन्द्र ज्ञानाय सूचना एव अस्ति। अभिकरणेन अभ्यर्थिनः प्रार्थिताः यत् ते परीक्षायाः प्रवेशपत्रस्य विमोचनस्य च विषये नवीनतमानां घोषणानां कृते स्वस्य आधिकारिक जालपटले अद्यतनीयाः भवेयुः। विश्वस्य बृहत्तमा सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वस्ति योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनायाः कार्यान्वयन राज्येषु पश्चिम बंगाल राज्यं 37वां राज्यं भविष्यति। राज्ये एबीपीएम जय इत्यस्य कार्यान्वयनार्थं अद्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरणं पश्चिम बंगाल सर्वकारस्य सहमतिपत्रे हस्ताक्षरं करिष्यतः। नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रिणः जेपी नड्डायाः तथा पश्चिम बंगस्य मुख्यमन्त्रिणः शुभेन्दु अधिकारिणः उपस्थितौ एमओयू इत्यस्य हस्ताक्षरं भविष्यति। भारतस्य पूर्वोत्तर राज्यैः सह सहकारं सुदृढं कर्तुं द्विदिवसीय यात्रायै यूरोपीय संघस्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलम् अद्य असम राज्यस्य गुवाहाटी नगरम् आगमिष्यति। यूरोपीय संघस्य मतानुसारं चर्चाः तेषु विषयेषु केन्द्रिताः भविष्यन्ति यत्र यूरोप देशस्य तथा पूर्वोत्तरस्य च समानहितानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः श्वः नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबन्धन व्यवस्थायाः उद्घाटनं करिष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् LPMS इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तन्त्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबन्धन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। भारतीय मल्ल क्रीडकाः ह्यः मंगोलियायाम् ओपन क्रीडायां भारतस्य कृते द्वे स्वर्ण पदके द्वे कांस्य पदके च विजितवन्तः इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY को लागू करने वाला 36वां राज्य बनने जा रहा है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY योजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेगी। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन के जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी के अनुसार पुनर्परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित होगी। NTA ने कहा कि परीक्षा शहरों की जानकारी प्रवेश पत्र नहीं है, इसे केवल अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी देने के लिए जारी किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने घोषणा की कि कर्नाटक विधानसभा परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य उम्मीदवार होंगे। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर शामिल हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल चुका है। संघर्ष से होर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ुरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गोरेस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

नमस्कार। जगदलपुर सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को रूपाली पारई का स्नेहिल अभिवादन। नमस्कार। आज के नमस्कार जगदलपुर के इस अंक में आपके लिए है आज के अतिथि और मधुर गीतों से सजी मधुरिमा।

0: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
1: पवन के ठंडे झोंके के साथ
0: हिलोरे लेगी
1: आकाश की वाणी।
0: आकाशवाणी
2: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुरा कर,
0: या फोन करें 222150 या 222400,
1: 222150 या 222400।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1-5-1-0-2।
6: श्रोताओं, हमारी पृथ्वी के फेफड़े कहे जाने वाले महासागर दुनिया की आधी से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। यह महासागर अरबों लोगों के लिए भोजन, प्रोटीन और आजीविका का प्रमुख स्रोत है। महासागर मौसम को नियंत्रित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में एक विशाल और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर श्रोताओं, आज के समय में प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग, औद्योगिक कचरा और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए महासागरों के महत्व, उनसे जुड़ी चुनौतियों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 8 जून यानी आज ही के दिन पूरे विश्व में विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हमें उन समस्याओं के स्थायी समाधान खोजने और आने वाली पीढ़ियों के लिए महासागरों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करता है।

0: अभी आप समंदर फिल्म का गीत सुन रहे थे, स्वर दिया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। अब एक सूचना सुनिए, फोन इन किसानवाणी की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार दोपहर 3:30 से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।
1: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
2: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
1: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
3: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसानवाणी, आपकी आवाज़।

0: आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
1: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
2: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज के अतिथि। इसमें आज सुनिए डॉक्टर राशि जैन से भेंट वार्ता। भेंट करता है चंद्र ऋषि ठाकुर।
3: आकाशवाणी के आप सभी श्रोताओं को चंद्र ऋषि ठाकुर का नमस्कार। श्रोताओं, हम समय समय पर कोशिश करते हैं कि आप सभी को जागरूक कर सकें, वो जानकारी दे सकें जो आपको आम तौर पर लोगों से या फिर अपने आसपास से नहीं मिलती है। तो आज ऐसी ही एक जानकारी या कहें आप सभी के लिए जानकारी का खजाना हम लेकर आए हैं और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है OCD, जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये क्या है, ये किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में आज जानकारी देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर राशि जैन को। आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और EFT यानी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक की कोच हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर राशि जैन जी, आपका स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में।
4: थैंक यू ऋषि जी।
3: तो जैसे कि हमने अपने श्रोताओं को बताया कि आज हम OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा परिचय आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये OCD होता क्या है और इसके बारे में हम लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं, आप बताएं
4: जी। OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो एक इंसान को इस तरीके से परेशान करती है कि उनके मन में ऑब्सेशंस आते हैं, मतलब जो दिमागी तरंगे उठती हैं, विचारों के जो ख्याल आते हैं वो ऑब्सेसिवली आते हैं, बार बार रिपीटेड आते हैं और इतने भयानक तरीके से आते हैं कि उनको कंपल्सिवली बिहेवियर करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी उन्हें एक्ट करना पड़ता है। जैसे डर आएगा मान लीजिए मन में कि अगर मैंने हाथ नहीं धोया तो जो जर्म्स हैं वो मुझे मार सकते हैं, तो वो हाथ धोते हैं और एक बार हाथ नहीं धोते, कम से कम 100 बार 200 बार हाथ धोएंगे, घंटों वो बाथरूम में रहेंगे। तो इस तरीके के ऑब्सेसिवली बिहेवियर वो करते हैं, ऑब्सेशंस के थॉट्स आते हैं जिसको कंपल्सिवली वो एक्ट करते हैं, तो ये OCD है।
3: ज्यादातर जो लोग हैं वो OCD को साफ सफाई से ही जोड़ते हैं
4: जी जी,
3: कि कुछ चीज साफ नहीं है तो उसको साफ करना है। तो ये जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या सिर्फ साफ सफाई से जुड़ा हुआ है या फिर अन्य चीजों से भी जुड़ा हुआ है?
4: OCD ना बहुत सारे तरीके की होती है, लेकिन इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला क्लीनर, जैसे कि हम जानते हैं साफ सफाई वाले। दूसरे चेकर्स होते हैं जो हर चीज को चेक करते हैं। तीसरे होते हैं आपके सिमेट्रिकल, वो हर चीज को सिमेट्री में रखने की कोशिश करते हैं। और चौथे होते हैं रुमिनेंट थॉट वाले, रुमिनेंट या इंट्रूसिव थॉट्स वाले। मैं एक एक के विषय में बताती हूँ। क्लीनर्स हर चीज को क्लीन करते हैं, मतलब उनको कहीं भी गंदगी नहीं चाहिए, वो आपको दिन में 6 बार नहला सकते हैं, ऐसे होते हैं। चेकर्स वो गैस के नॉब को चेक करेंगे कि मैंने अच्छे से बंद किया या नहीं किया, ताले को चेक कर करके देखेंगे कि मैंने ताले को अच्छे से बंद किया कि नहीं किया। सिमेट्रिकल वाले अपने जूतों को, अपने कपड़ों को बिल्कुल सही अरेंजमेंट में रखेंगे, अगर एक भी चीज़ इधर से उधर हो गई तो वो परेशान हो जाते हैं, उनको इतनी घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है जब तक कि वो उस चीज़ को सही ना कर ले, भले रात के 2 क्यों ना बज रहे हो। वो कपड़ों को एक सेट में जमाएंगे, एक कलर में जमाएंगे, एक बकायदा लाइन से जमाएंगे, अगर लाइन इधर से उधर हुई, तीसरे नंबर का कपड़ा चौथे नंबर में रखा गया तो वो पैनिक हो जाते हैं। और चौथे होते हैं इंट्रूसिव थॉट्स वाले, बहुत खतरनाक। इनको मतलब ये सब दिल से बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनके अंदर आएंगे थॉट्स कि कहीं मैं अपनी माँ का खून तो नहीं कर दूंगा, या फिर जैसे रिलीजियस OCD होती है तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि वो भगवान से मन्नत मांगेंगे, मेरा बच्चा पास हो जाए मैं ये करूँगा, मेरा ये काम हो जाए मैं वो करूँगा, वो दिन भर यही करते हैं। तो आप कुछ चीज़ें तो कर सकते हैं, कुछ चीज़ें चढ़ावा चढ़ा सकते हैं कुछ दिनों तक, लेकिन दिन में 100 बार आप मन्नत मांगेंगे तो कैसे होगा। ऐसे ही इसमें एक और OCD होती है कि वो काउंटिंग करते हैं, हर चीज़ को काउंट करेंगे।

0: चढ़ेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो सीढ़ियों को काउंट करेंगे, अगर कोई बोल रहा है तो उसने कितने शब्द बोला यहाँ तक वो काउंट कर लेते हैं, सोचिए। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। कई लोग मंदिरों के सामने से निकलेंगे, मान लीजिए सड़क पे जा रहे हैं, तो सड़क में जितनी गाड़ियां हैं वो गिनेंगे। कई लोगों को ऐसे ऑब्सेशन हो जाता है कि रोड क्रॉस करना है तो गिनती में करना है कि 3 बार या 5 बार या 7 बार, किसी काम को करेंगे तो 3 बार 5 बार 7 बार करेंगे, लक्की नंबर अनलक्की नंबर मानते हैं। अगर वो वैसे नहीं करेंगे तो वो सोचते हैं घर में किसी को बाधा हो जाएगी, कोई मर ना जाए या मेरे कारण किसी का बुरा नहीं हो जाए। ऐसे ही जितने मंदिर हैं वो सबके दर्शन करेंगे, जितने रास्ते में जितने दिखेंगे, तो फिर वो डर बैठ जाता है, फिर वो धीरे धीरे मंदिर नहीं जाते, धीरे धीरे उनको ऐसा लगता है कि मुझे भगवान पाप देंगे, श्राप देंगे, मेरा कुछ बुरा हो जाएगा। तो ये OCD के टाइप्स हैं।
1: जी, और जैसे हम अपने माता पिता को देखते हैं या फिर पहले अपने बुजुर्गों को देखते थे, तो उन लोग कुछ चीजें जो है वो तरीके से ही करते थे, उन्हें हम ऑर्गेनाइज्ड कहते थे कि हाँ ये चीजें इसी तरीके से होंगी, इसी लय में होंगी, या फिर पंक्चुअलिटी की भी बात करें, वो सभी चीजों को टाइम से ही करते थे कि हाँ 10 बजे हमको खाना खाना है, 12 बजे हमको
0: डिसिप्लिन में,
1: डिसिप्लिन डिसिप्लिन में रहते थे। तो ये जो डिसिप्लिन है वो OCD से कैसे अलग है और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, ये भी आप हमें बताएं।
0: बिल्कुल। देखिए, डिसिप्लिन में और OCD में बहुत बारीक फर्क है। शुरुआत में ये डिसिप्लिन जैसे ही लगता है, धीरे धीरे लेकिन ये ऑब्सेसिवली होने लगता है। मतलब जैसे आपको ये पता है कि अगर मैं हाथ नहीं धोऊंगी खाना खाते समय तो इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप हाथ धो के किसी भी काम को करते हैं, मान लीजिए अगर आपको इवन आपको कपड़े भी धोना है तो भी आप हाथ धो के धोएंगे, तो ये ऑब्सेशन है, फिर ये डिसिप्लिन में नहीं आता है ना। तो बारीकी यहाँ से आती है कि आपका ब्रेन का एक सेंटर है एमिगडाला, वो आपको हर चीज़ में हर समय खतरा बताता है। जब भी आप किसी मुसीबत में फंसते हैं वो बताता है कि अभी खतरा है। लेकिन जो OCD के मरीज होते हैं ना, उनका एमिगडाला इतना एक्टिव हो जाता है कि वो हर चीज़ को खतरा बताता है। उनका मतलब अलार्म, बिल्कुल अलार्म, जो एक इमरजेंसी अलार्म बोल सकते हैं, वो एकदम एक्टिव रहता है 24 घंटे ब्रेन का। तो आपको बताएंगे कि अरे ये दिक्कत है। मतलब आप देखो, एक चीज़ होती है डिसिप्लिन और एक चीज़ होता है परफेक्शन। तो परफेक्शन ह्यूमन एट्रीब्यूट नहीं है, है ना। तो जब तक कि वो चीज़ डिसिप्लिन से हो रही थी और उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, वो अच्छी बात है, फिर वो ऑब्सेशन नहीं है। लेकिन जिस दिन ऐसा हो जाए कि आपको तकलीफ होने लगे, आप हाथ को 1 बार की जगह 100 बार धोने लगे, है ना, घंटों नहाने लगे, आप दूसरे को नहलाने लगे कि आप घर आए हैं तो अभी आप नहाइए। OCD के पेशेंट ऐसे ही करते हैं, उनके घर में यही चीज़ें सबसे ज़्यादा होती क्लीनर्स के, कि अगर कोई कहीं से भी आया तो पहले नहाएगा, अगर वो वॉशरूम गया तो वो नहाएगा, चाहे रात के 2 क्यों ना बजे हो। तो वो डिसिप्लिन नहीं रह जाता है, फिर वो ऑब्सेशन में आ जाता है। तो ये फ़र्क है।
1: जी, इसके शुरुआती लक्षण किस तरह से
0: इसके
1: देखते
0: शुरुआती
1: हैं?
0: लक्षण ऐसे होते हैं कि अगर कोई इंसान है उसके अंदर ये भावना आ गई है कि अगर कोई इंसान आपको ऐसा दिख जाए ना, सीधा इसको ऐसे समझिए कि बहुत पाप पुण्य की बात कर रहा है और हर किसी से पूछ रहा है कि ये जो मैंने किया वो ठीक किया ना, ये मुझे करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। और अगर आपको कोई दिख जाए कि वो ज़रूरत से ज़्यादा हाथ धो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को चेक कर रहा है, या कोई इंसान है उसने काउंटिंग चालू कर दी है। देखिए, नॉर्मली ये सब चीज़ें ना शुरुआत में परफेक्शन के लिए ही होती है, जैसे हमने बोला ना कि डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ही होती है, कि मेरा घर अच्छा दिखेगा, साफ सुथरा रहेगा तो कोई अच्छा मेरी तारीफ कर देगा। काउंटिंग भी इसलिए करते हैं, या गैस का नॉब भी बंद करके चेक इसलिए करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आग ना लग जाए घर में, या घर में चोरी ना हो जाए अगर मैं ताला अच्छे से बंद ना करूं। तो शुरुआत तो ऐसे ही होती है, लेकिन अगर कोई इंसान ताला लगाने के बाद 3 बार 5 बार 7 बार हर बार चेक करता है तो फिर उसको डॉक्टर से मिलना चाहिए। शुरुआती लक्षण यही होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये बढ़ सकते हैं। आपको पता है OCD क्यों होती है? OCD तब होती है जब किसी के दिमाग में अनचाहे विजुअल्स, ऑडियो या फीलिंग्स आने लगे। मतलब अगर मान लीजिए किसी के दिमाग में ऐसे आवाज़ आ रही है कि इस बच्चे को नहला दो, ठीक है, तो आप क्या सोचेंगे? नहीं, अभी रात का 4 बज रहा है, अभी बच्चे को कैसे नहला सकती हूँ, अभी ना, अगर ठीक है चलो उसने पॉटी की है, वो गंदा हुआ है, मैं पोछ सकती हूँ, लेकिन आप उसको नहलाएंगे नहीं। लेकिन जो OCD का मरीज होता है ना, उसके ऑडियो इतनी हाई होती है कि वो उसको 4 बजे भी नहला देगा। उसको विजुअल्स ऐसे आएंगे कि भगवान ना पाप देने वाले हैं, श्राप देने वाले हैं, तो वो हर भगवान के सामने मन्नतें मांगेगा, उनसे माफ़ी मांगेगा दिन भर। और कई बार उनके अंदर से फीलिंग्स आएगी कि मैं अगर हाथ नहीं धोऊंगा या नहीं धोऊंगी तो अब मेरे हाथ में जम्स आएंगे और मैं मर सकता हूँ। आपको पता है, एक ऐसा क्लाइंट आया था मेरे पास, उनको ऐसा लगता था कि अगर मैं अपने बच्चे की सुसु पॉटी साफ करूंगा तो मेरे को कहीं HIV नहीं हो जाए। वो दिन भर उनके दिमाग में थॉट्स चलते थे। तो ये ऑब्सेशन है, तो ये एमिग्डाला की ही गड़बड़ी है, और सेरोटोनिन हार्मोन्स आपके ऊपर नीचे हो जाए तो ऐसा होता है।
1: तो ये जो OCD है वो किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकती है या फिर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ही होती है?
0: नहीं, ये किसी को भी हो सकती है, जेनेटिक है तो और जल्दी होती है। जैसे छोटे बच्चे हैं उनके साथ भी हो सकता है। और इसकी शुरुआत कैसे होती है, देखिए जब माँ बाप जो हैं बच्चों को बहुत स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्ट तरीके से पालते हैं या फिर उनको बिल्कुल महत्व नहीं दिया जाता है, तो वो महत्व पाने के लिए कई बार ये सारी चीज़ें करते हैं, सिग्निफिकेंस पाने के लिए। कई बार ये चीज़ें डिसिप्लिन में रहने के कारण होती है कि शुरू में पैटर्निंग की जाती है, बाद में वो पैटर्न्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो ऑब्सेशन का रूप ले लेते हैं। जैसे आपको आर्मी जैसे ट्रेनिंग दी गई हो, मैं गलत नहीं मतलब आर्मी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपके घर में वैसे आपको ट्रेनिंग दी गई हो तो आपका एक आदत बन जाएगा, फिर वो न्यूरल पैटर्न्स स्ट्रांग होते जाएंगे और धीरे धीरे आप ऑब्सेशन में आ जाएंगे कि आप उसको और ज़्यादा करेंगे। सिग्निफिकेंस का मैंने बोला, ऐसे ही कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि रिलीजियस प्रैक्टिस की जाती है ना। छोटे बच्चे में अगर आप OCD की बात करें तो अगर आपने सिखाया उसको दिन भर ये नहीं करना, पाप लग जाएगा, वो नहीं करना, नहीं तो तेरे को भगवान मतलब भगवान पनिशमेंट देंगे, तो वो उनके बच्चे के मन में बैठ जाता है। तो धीरे धीरे वो उस चीज़ से वैसे ही लर्निंग लेने लगता है। बड़ा होता है तो हर चीज़ से डरता है, अरे मैं ये करूँगी तो कहीं मेरे को पाप तो नहीं लगेगा, मैं वो किया तो मेरे को पुण्य मिला होगा ना, फिर वो पूछते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल आता है स्ट्रेस का, चाइल्डहुड ट्रॉमा का। ठीक है, तो अगर आपने किसी चीज़ को मान लीजिए जैसे कोविड आया, ठीक है, कोविड के बाद से ना जाने कितने लोगों को क्लीनिंग OCD हो गई। क्यों? क्योंकि माइंड ने सीख लिया कि अगर मैंने हाथ नहीं धोया, मैंने अच्छे से साफ सफाई नहीं रखी तो मेरी मौत भी हो सकती है, क्योंकि कोरोना हो जाएगा। तो अब तो कोविड चला गया लेकिन वो पैटर्न्स बन गया। तो ऐसे ही बचपन में कुछ और चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ, आपने कुछ गलत किया, आप उसके बाद आपके लाइफ में कुछ बुरा हो गया, तो आपने क्या बना लिया दिमाग में विचार, आपने क्या मीनिंग दे दिया कि क्योंकि उस दिन मैंने मंदिर में ये चीज़ अच्छे से नहीं की थी, पूजा अच्छे से नहीं की थी, इसलिए आज मेरे को पनिशमेंट मिली है, इसलिए मेरे साथ बुरा हुआ, मेरी मम्मी ने वो मन्नत मांगी थी नहीं पूरी की इसलिए हुआ। तो वो धीरे धीरे रिलीजियस OCD का रूप ले लेती है। और एक चीज़ और ही होती है फिर, जैसे बड़े लोगों में देखें तो जैसे 25 से 35 साल के लोगों की बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा ये बीमारी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनकी सेल्फ इमेज लो होती है, उनका खुद को लेके कोई भी एक छवि नहीं होती कि मैं कैसी हूँ, है ना, उनके अंदर सेल्फ लव नहीं होता, कंपैशन नहीं होता है, तो फिर वो चीज़ें जल्दी अट्रैक्ट करती है उनको, क्योंकि वो दिन भर फ्रस्ट्रेट रहते हैं। तो कोर्टिसोल हार्मोन्स निकलता है, कोर्टिसोल हार्मोन सेरोटोनिन के बिल्कुल अपोजिट हार्मोन है, तो सेरोटोनिन जो है वो सही से रिलीज नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और एक ब्रेन का सेंटर होता है बेसल गैंग्लिया, वो भी अच्छे से काम नहीं करता। और अगर हम बुढ़ापे में बात करें तो बुढ़ापे में अगर ब्रेन की परेशानी हो गई, जैसे अल्जाइमर हो गया, पार्किंसन हो गया या स्ट्रोक आ गया किसी को, तो फिर ये सारी चीज़ें और होती है।
1: जी जी। और जैसे अगर जो श्रोता आपको अभी सुन रहे हैं, हमारी बातचीत सुन रहे हैं, उनमें से अगर किसी को OCD है तो वो किस तरह से OCD से निजात पा सकता है, क्या तकनीकें होती है या फिर क्या इलाज होता है?
0: देखिए मैं आपको सभी की अलग अलग टेक्निक्स बता देती हूँ। सबसे पहले तो ERP जो थेरेपी है वो सब पे काम करेगी, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंटिव थेरेपी, प्रिवेंशन थेरेपी। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, आपको जानबूझ के उस चीज़ों को देखना है, आपको वो गंदी चीज़ें देखनी है और ख़ुद को बोलना मैं इसको अभी साफ नहीं करूँगी। ठीक है, मैं अगर आपको शुरू में बोलने में ये घबराहट हो रही है कि मैं अभी इसको साफ नहीं करूँगी, तो बोलो नहीं मैं 15 मिनट बाद साफ करूँगी, लेकिन शुरुआत ऐसे करूँ। ताला चेक करके लोग क्या करते हैं, ताला लॉक करके गए, 15-20 मिनट बाद फिर घर आएंगे, फिर चेक करेंगे, फिर जाएंगे, सोचो कितना टाइम बर्बाद होता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, फोटो खींच के ले जाने चाहिए, वीडियो बना के ले जाना चाहिए जब वो लॉक को चेक कर रहे हैं, तो वो बचे रहेंगे। ठीक है, सिमेट्रिकल वालों के लिए मैं बोलूँगी ERP के हिसाब से कि आप ऐसे करो कि आप बोलना चालू करो कि ये मेरे घर के लोगों को ऐसे ही पसंद आता है, ये न्यू सिमेट्री है मेरे लिए। जानबूझ के आप जूतों को दूर दूर रख दो, अलग अलग रख दो, आड़ा तिरछा रख दो, बोलो यही नया सिमेट्री है। धीरे धीरे अनकॉन्शियस माइंड को विश्वास होने लगेगा। इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके ये थॉट्स हैं, ये आप नहीं हैं, आप बुरे इंसान नहीं हैं, आप अच्छे इंसान है, इसलिए आपको गिल्ट हो रहा है।

0: सकते हैं। आपको जैसे क्या होता है ना, जब किसी को ओसीडी होती है तो उसका माइंड हर एक चीज को डेंजरस पिक्चर की तरह देखता है, बड़े साइज में देखता है, एचडी में देखता है। उसको ऐसा लगता है कि मतलब वो सारे जम्स अटैक ही कर रहे हैं, जम्स दूर नहीं दिखते उनसे। हम लोग क्या सोचते हैं, हमसे जम्स दूर पे हैं, इसलिए हमारी इम्यूनिटी अच्छी ना, हमारे दिमाग में ये पिक्चर है। ओसीडी के मरीज में जम्स उनके शरीर से चिपके हुए देख पाते हैं वो, तो उनको आंखें बंद करके अपने उस इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट करना है, दूर करना है, छोटा करना है, बर्फ में डालना है, जला देना है, और एक नई पिक्चर बनाना है जिसमें वो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, उनके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। चाहे वो ये इमेजिन कर सकते हैं कि भगवान ने वो सुरक्षा कवच बनाया है और उसमें वो सुरक्षित हैं, और जो सारे जम्स हैं ना वो सुरक्षा कवच के बाहर हैं, और ऐसा वो हमेशा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो कर सकते हैं। ऐसे ही वो अपने माइंड में स्विस पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं। आंखें बंद करेंगे, अपने बीमारी के, अपने इस ओसीडी के पहली पिक्चर को लाएंगे। पहली पिक्चर मतलब मान लीजिए मेरे हाथ गंदे हैं, तो फिर मैं क्या करूँगी, नल के पास जाऊँगी हाथ धोने, तो हाथ गंदे हैं वो पिक्चर, उसको आंखें बंद करेंगे, वो पिक्चर को लाएंगे साइड, और उसको रखें आंखों के सामने, साइड में एक और पिक्चर बनाएंगे जिसमें वो अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ देखेंगे, अपने हाथों को साफ देखेंगे, अपने आसपास में बिल्कुल साफ सुथरा चीज़ें देखेंगे, साफ कुछ साफ देखेंगे, और उसको एक डॉट में कन्वर्ट कर देंगे। फिर उस डॉट को एक्सपांड करेंगे और जो पुरानी पिक्चर है उसको श्रिंक करेंगे, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे आंखों के सामने से। ऐसे 10-15 बार करेंगे तो आराम हो जाएगा। दूसरा, उनको ये बोलना है कि मेरे थॉट्स हैं, ये कोई मतलब सच में मैं नहीं हूँ, मैं सच में किसी को नहीं मारने वाली हूँ, ये थॉट्स हैं, ये बादल हैं, मैं आकाश के जैसे बड़ी हूँ। ठीक है, तो वो अपने आप को जब बड़ा बताएंगे ना, ओसीडी की बीमारी से अपने आप को बड़ा देखेंगे, बीमारी को छोटा देखेंगे, तो वो ठीक होने लगेंगे। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, हिप्नोसिस यूज़ कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब में वीडियो है। EFT में बॉडी में अलग अलग पॉइंट्स पे टैप करके इमोशंस को रिलीज कर सकते हैं, और अपने घर परिवार के लोगों को ये बात समझा सकते हैं कि ये कुछ दिनों की बात है, मैं ठीक होके दिखाऊंगी, क्योंकि घर वाले बहुत परेशान होते हैं।
1: जी, और मान लो कि कभी कभी ओसीडी बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसमें आपने जो टेक्निक्स बताए हैं ये भी काम नहीं आ रहे हैं, तब की स्थिति में क्या करना चाहिए?
0: जी, तो टेक्निक तो चालू रखनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल न्यूरल पाथवे को खत्म करने के लिए टेक्निक ही काम आएगी। आप दवा ले सकते हैं इसके बाद, अगर आपको तकलीफ सही नहीं हो रही है तो सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर्स, बहुत सारे SSRI करके ड्रग्स आते हैं, जो आपको कोई भी एलोपैथिक प्रैक्टिशनर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो दे सकते हैं। दूसरा, आप बेच फ्लावर भी ले सकते हैं। बेच फ्लावर मेडिसिन फूलों से बने हुए अर्क होते हैं और वो अलग अलग इमोशंस पे काम करते हैं। तो जैसे व्हाइट चेस्टनट मेडिसिन उनको देते हैं जो बार बार एक जैसे काम करते हैं। रेस्क्यू मेडिसिन किसी भी डर या चिंता को ख़त्म करने के लिए देते हैं। तो इसको पानी में 10-10 बूंद डाल के 3 से 4 बार अगर कोई इंसान ले तो भी उसके ये तकलीफ ठीक होने लगेगा। जेनसेन सक के लिए देते हैं, तो तीनों दवा वैसे ही 10 बूंद डाल के पानी में लेंगे तो आराम होने लगेगा। और घर परिवार वाले लोगों को सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है ओसीडी के विषय में, क्योंकि जब तक कि वो कॉपरेट नहीं करते तब तक कि वो बंदा पूरा ठीक नहीं हो पाता है। कुछ दिन तो बेचारे एडजस्ट करते हैं, फिर बाद में लेकिन कई बार नौबत डिवोर्स तक की आ जाती है, क्योंकि आप कितना नहाएंगे, कितना आप, क्योंकि देखो ओसीडी वाले घर से निकलने को एक समय के बाद तैयार नहीं होते, अगर क्लीनिंग की ओसीडी है तो, क्योंकि वो उनको हर जगह ये लगेगा कि जम से पूरे दुनिया में, तो उनको ये थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा ओसीडी पेशेंट को, और उनको समझाना पड़ेगा समय समय पे कि नहीं सब कुछ साफ है, और आपको भी खुद को बोलना पड़ेगा कि मैं स्वच्छ हूँ। कई बार पता है जिन लोगों के साथ एब्यूज हो जाता है ना बचपन में, उनको भी ओसीडी हो जाती है, क्योंकि वो अंदर से डर्टी महसूस करने लगते हैं। तो उनकी मेमोरीज पे अगर काम किया जाए ना, वो पास्ट की खराब मेमोरीज को हटा दिया जाए, वो श्रिंक करके है ना, ब्लैक एंड व्हाइट करके, और उनको जिंदगी की खूबसूरत इमेजेस दिखा दी जाए, तो ये चीज़ें सही हो जाएगी। मेरे सर हमेशा ये बात बोलते हैं कि अगर माइंड को आप ढंग का काम नहीं देंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा उठपटांग काम में लग जाएगा। ठीक है, तो अपने आप को अच्छे काम से जोड़िए, मेडिटेशन करिए, माइंडफुलनेस करिए, खुद को बोलिए ऑल इज़ वेल, काम डाउन, रिलैक्स, सब कुछ अच्छा है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सेफ हूँ। ठीक है, और अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, हाउ एग्जैक्टली, अगर मैं घर में मैंने मान लीजिए ताला अच्छे से नहीं लगाया तो हर बार क्या चोरी ही हो जाएगी, क्या और किसी की जिम्मेदारी नहीं? क्योंकि ना ये ओसीडी उन्हीं लोगों को ज़्यादा होती जो हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद लेके घूमते हैं कि सिर्फ मेरी गलती है, मैं जिम्मेदार हूँ। देखो ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, है ना, लेकिन कितनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ क्रिएट करने की

0: रखती है। और अध्यात्म के लिए जैसे कई लोगों को क्या होता है, जैसे माता की फोटो हो गई या कोई भगवान की फोटो हो गई, उनको देख के सेक्सुअल थॉट्स आते हैं। तो वहां भी आप समझिए कि ये सिर्फ केमिकल लोचा है, आप सच में वो नहीं कह रहे, ये सिर्फ ब्रेन का अलार्म सेंटर है जो बज रहा है, जिसको आपको शांत करना है। इसको आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप अपने काम में लगे रहिए और थोड़ा थोड़ा डिले करिए तो चीजें सही हो जाएगी।
1: जी, आपने तो बहुत सारी बातें बताई हैं आज ओसीडी से संबंधित, लेकिन फिर भी अगर कोई बात रह गई हो तो आप हमारे श्रोताओं से साझा करें।
0: बिल्कुल, आप कुछ आवाजें आ रही है जिसको आप बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहे, जैसे मैं इसको मार दूंगी या मैं अभी इस बच्चे को नहला दूं या मैं अभी ये कर लूं, तो आपको क्या करना है, आंखें बंद करना है और उन आवाजों को मिक्की माउस या डोनाल्ड डक की आवाज में सुनना है, और उसके बाद धीरे से उसके वॉल्यूम को कम करके खत्म कर देना है। 10, 9, 8, 7, 6, जैसे हम टीवी में करते हैं, 5, 4, 3, 2, 1, 0, म्यूट। तो इस तरीके से होगा, और जो भी फीलिंग आ रही है आपके अंदर, आपके शरीर में कहीं ना कहीं वो फीलिंग लोकेटेड होगी उस ओसीडी से संबंधित। जैसे किसी को छाती में लगता होगा और वो फट से हाथ धोने जाता होगा, तो आपको क्या करना है, वो फीलिंग को उल्टे दिशा में रोटेट करना है। जैसे मान लीजिए वो फीलिंग एक मोमेंट में घूम रही होगी, सीधे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के रोक दीजिए, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज घुमा के रोक दीजिए, और नई फीलिंग लाइए कि मैं सेफ हूँ, मेरे चारों तरफ बिल्कुल साफ सुथरी चीजें हैं, मैं स्वस्थ हूँ। और अगर आपको कहीं भी और भी कुछ परेशानी लगे, आप जेमिनाई में पूछिए, चैट जीपीटी में पूछिए कि मैं क्या एफर्मेशन यूज करूँ ओसीडी को ठीक करने के लिए, मैं खुद से क्या बातें करूँ, तो वो भी आपको हेल्प कर देगा। यूट्यूब चैनल देख सकते हैं मेरा डॉक्टर राशि जैन नाम से, उसमें मैंने EFT भी बताया है, हिप्नोसिस भी बताया है ओसीडी के लिए, तो वो कर सकते हैं। और आप रोज कल्पना, आप हाँ एक काम जरूर कर सकते हैं, आप अब तो जेमिनाई है, चैट GPT है, तो अपनी एक स्वस्थ फोटोग्राफ बनाइए जहाँ बिल्कुल सेफ है, जहाँ बिल्कुल सिक्योर है, और उसको वॉलपेपर में लगाइए, रोज उसको देखिए कि मैं ऐसी हो चुकी हूँ, तो धीरे धीरे आप वैसे होते चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें
1: जी, तो डॉक्टर राशि जी, आपने अपना समय दिया और हमारे श्रोताओं को ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में इतनी सारी विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं का धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के अतिथि, इसमें आज आप सुन रहे थे डॉक्टर राशि जैन से भेंट वार्ता, भेंट करता थी चंद्र ऋषि ठाकुर। आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर,
4: 8700001-4242।
5: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
6: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
5: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
7: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।

और अब पेश है मधुरिमा। यूं तो पूरे थे हम पर तुमसे मिले तो जाना कि तुम बिन कितने अधूरे थे हम।

मैं यादों में तेरी, खोया ही रहता हूँ मैं यादों में तेरी, खुशबू सी बसी है मेरी सांसों में तेरी। पहले ना था मैं इतना दीवाना, कुछ तो जादू जरूर है बातों में तेरी।

कुछ तो मर्जी रही होगी ऊपर वाले की, कुछ तो मर्जी रही होगी ऊपर वाले की, यूं ही कोई किसी की जिंदगी में नहीं आता। जब से मिले हो तुम हमें, हर लम्हा जैसे एक खूबसूरत ख्वाब बन जाता है।

कुछ ना रह सका जहां वीरानियां तो रह गई, कुछ ना रह सका जहां वीरानियां तो रह गई, तुम चले गए तो क्या कहानियां तो रह गई।

फिल्म रॉकी कलाकार आहिस्ता आहिस्ता और आसपास के इन मधुर गीतों के साथ ही आज के नमस्कार जगदलपुर के इस अंक से रूपाली पारई को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
3: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
4: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
2: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
5: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र के शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
6: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियोनो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
2: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
7: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
8: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
7: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
9: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
7: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
10: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला न करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है।

0: लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रूपये की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोकसत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मुबूर कॉलेज नगा
1: चिंता की माँ
0: फीस तिनूड़ा
2: बाल विंदेन बड़ा
1: फीस ताल जे
3: राहुल ने बैग का था कौन मिंदे अर नल्ला बैग तीना जरा तीसाब दे पेकोर पोड़ मायला कर्जा उपाय दौर की था अद्वैन नालो लाख रुपया ती पलाई वा अद्वैन का मिंदे
4: आई
5: मिठाई
6: और भी एक तीता
7: की बुंदल्ला का मोर लेन देन ती मनु चतुर
8: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं विभिन्न बोलियों में लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी।

अभी आप सुन रहे थे राम और साथी के स्वर में भद्री लोकगीत। आइए अब सुनते हैं हल्बी लोकगीत। गायक कलाकार है शिवराम नाग और साथी।

0: जयकार हीर दे मसत हवा संगे जयकार।
1: इस लोकगीत के साथ ही विभिन्न बोलियों में लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए लोक साहित्य पत्रिका मोचो माटी, संपादक है बलबीर सिंह कच्छ।

रेडियो सुनतो भाई बहन मन सपाय के करें से जुहार। लोक साहित्य पत्रिका मोचो माटी ये कार्यक्रम ने आमचो बस्तरचो बोली मंचो जसन की आपन मन जानास आमचो बस्तर ने हलबी गोंडी धुरवी दोरली भतरी और भले कितले बोली मन बलतो लोग मन आसोत हुन सपाय बोलीचो कटाव कथा कहनी ठसा और भले बरन बरनचो तिहार आए कहीं आमचो धार्मिक काम है से बाजार आए मंडी आए चरु आए जत्रा आए ये सपाय गोट मन के आमी इमोचो माटी लोक साहित्य पत्रिका ने आनुन आपन मन के सुनाऊं दे आरु जनाऊं दे। तो आज ही आमी ये कार्यक्रम ने धरुन बाती इलू से ठसा काय बीती है ये ठसा के सुनन बाती अपन मन जाना से कि ठसा काय है। तो आले सुनू ए ठसा के।

आजीचो हासी के सुनन बाती तो जानला सोती में आज ठसा कार्यक्रम धुरुन बाती अमरले से आरु आजीचो जो ठसा ने बुल्ले ठसा सुनाओ बितामन चुनाव में सामुदे से।

0: एक ही
1: चाहो
0: बुटकी आई हूँ,
1: अच्छा
0: बुटकी
2: बुटकी
0: हूँ बुटकी बोले से
1: हाँ।
0: मैं बुटकी मैं बुटकी मैं तो सबले बड़े
1: हाँ।
0: मैं बुटकी मैं तो सबले बड़े
1: हाँ।
0: मैं बुटकी नी रोले कुछ ही काम ही चले
1: बुटकी जो ना ले सफाई ची तो नहीं चले
0: चले कांड तो बीती
1: है
0: कांडू बीती तो उन्होंने बोले से बुटकी मैं बुटकी मैं तो सबले बड़े मैं बुटकी नी रोले काम नहीं चले
2: तो हुनी भी ऐसे गोटक जो है नहीं गाय होली
0: गुन
2: जाने गुनिया
0: गुनिया
2: गुन जाने गुनिया
0: हाँ।
2: मन चीने कनिया हो
0: हाँ, हाँ, हाँ।
2: और डॉक्टर जाने मरीज के मास्टर जाने पिला मन के हो
0: पिलाए मन के जाने
1: मास्टर पर पिलाए मन के पड़ा तो बीता है
0: अले मतलब करिया बोकड़ा लेप सका करिया बोकड़ा लेप सका और कान के धरून घरे ये बोले करिया बोकड़ा लेप सका
2: लेप सका ने कान के धरून घरे आन
0: कान के धरून घरे आले हो
1: तुम
0: हां
1: बच्चे सुनाता
0: आले आले आले
1: बाप के जाने न माए के जाने
0: हां बाप के जाने
1: न माए
0: के जाने
1: और बेटी की हंसी करे
0: बेटी की हंसी करे आले ना
1: ऐसे बच्चे को
0: आज तू चुप सुनो था
1: ए दे एक हाथ काकड़ी नौ हाथ बिचा एक हाथ काकड़ी
0: नौ
1: हाथ बिचा नानी बाटले सिकड़ून जाए कुलू बुटू
0: बांडाड़ी नौ हाथ बिचा
1: नानी बाटले सिकड़ून जाए कुलू बुटू गांडा
2: आई
1: एक हाथ काकड़ी नौ हाथ बिचा
0: आले हो सोमदी तुम चलो खाया
2: हासे हो
0: आले
2: आले देखा ये बहू
1: हाँ
2: सानी उपरे लऊ
0: लऊ
2: समदी सियान बसन खाऊ
0: सानी उपरे लऊ समदी सियान बसन खाऊ अच्छा ये देखो समदी के समदी बोलतो गुसन खाऊ बोलतो के मौके बोले अच्छा गोट सुरता इली
2: सांग दका
0: केरा पाक लो बोला काय केरा पाक लो केरा पाक लो बोला काय केरा पाक लो इतलो सुंदर लेकी पिला के डोकरा लो
1: कुतरी करली कोई बोला काय कुतरी करली कोई इलो पटवारी गाड़लो झंडी कितलो नापलो भुई
0: पटवारी तो भूची
1: नापुआतरी
0: करली काय
1: काय
0: आरु इलो पटवारी
1: नापलो
0: आले समझी आले तुम चुप सुन
1: सुनाता हो डांडा रे डांडा करिया डांडा
0: करिया डांडा
1: खूबी आसत पीला झिला झगड़ा हो तो के झांडा
0: झगड़ा हो तो के झांडा
1: आय आय आय नंदरी ऐसे होते गोट बोल रहा है ना आजकल तक खा पीला झिला मन के इतनो जन बाउ देश होत देश होत के नहीं आरु उनके झगड़ा कोरिक माय बाप नी सुनो जाले कौन सुने सत्य
0: झगड़ा
1: झगड़ा
0: ज्यादा पीला वाले झगड़ा हुआ
1: हुआ
0: हां यदे समझी
2: आले आले सांगा
0: मोचलो गोठो खास
1: अच्छा
0: कड़ा टाटी वो चालू सगा बोसालू
1: अच्छा हाँ
0: काय बोलसो कड़ा टाटी वो चालू सगा बोसालू बेटी चो कमाई खातो बेरा जुआए बाबू चो मुंडे भारदार कमाई खातो बेरा जुआए बाबू चो मुंडे
1: सत्य बोल रहा आजकल का देखा माए बाप बाप लो पिला जिला के पोसोत पोसोत के नहीं पिला बेरा ले 20 बरक 25 बरक पोसोत मानसर पासे का है
0: कमाई खातो के
2: बासरे कुकुड़ा कोकरे कोई কোনাই বলুন নিবা মায় পোটালে রে বাবু জাদু
3: বকে
0: আজকাল তো লেখালেখি মত গাওতে রুয়াত লে যা লেজা লেজা লেজা পাপা লেজা কেউ রা লেজা লেজা লেজা পাপা লেজা কেউ রা তুকে মালা নিয়ে যালে ননি মজকে নে উরা
2: বিয়া যা তো পিনতে বল রবা
0: বিয়া যা তো পিনতে বল নি উয়া কে উদারি বাড়ি
1: ভাই আই আই সব দি কোটা মডে যত বলি আই লোক কে দেখা তো কাজ আই কি
2: শহরে যত বলি আই হ্যাঁ
1: এ তো মাং লোক তো মাং দে আই আই আই
0: আই মালা নিয়ে যালে ননি মজকে নে উরা
3: হ্যাঁ আলে আচ্ছা এ দেহো
0: হ্যাঁ আসে
3: ঘর যাও ঘর জিন রলা মানে
0: আচ্ছা
3: হেনি লেগি থানে ঘর যাও
0: হ্যাঁ
3: তো দেখা ঘর যাও ফের কহন নে লেখি বলেস তা সিং শিকারি জঙ্গল ঝাড়ি মাকড়ি গাঁও
1: সিং শিকারি
3: জঙ্গল ঝাড়ি
1: জঙ্গল ঝাড়ি মাকড়ি গাঁও
3: পর হম বলে শিবনি গাঁও
2: শিবনি গাঁও
1: আলে হো খুবই হাসলু আলে আলে আলে
0: রাম রাম রাম রাম রাম।

0: तो एबे सुनते रहलू ठसा, तो ठसा काया है इस सुनन बाती जान पड़ ली होती कि गांव ने कोनिता नेसन कुमटी बनन बाती सियान मन बसुरे सोत ना ले फिर जोड़ी जोड़ी लेखा मन जोड़ी जोड़ी लेखी मन जोड़ी जोड़ी बायले मन जोड़ी जोड़ी डोकरा मन जोड़ी जोड़ी डोकरी मन। तो ये सपाय कोनी लगे असन बसुन कहीं गोट बात कर सोच जाले ये ठसा ठसा ने बोलू कहीं से पहले गोट के निकरान बल्ले ने हरी कुदिम बले मनातोर होए से। एदाएं सुनू गोटो कहनी के एक कहनी चुनाव आए तीन माए पिला आरु एक सुनाए सोत श्रीमती चंपा।
1: तीन माई पिला रोहत मने डोकरा और डोकी रोहत मन गोटक ले का रहे मन ले का उसने बाढ़ते बाढ़ते रोलो मन ते वे खूबे मया करत एक लाए ले का है खूबे मया करत खूबे हनके कहीं लग मारत नहीं कहीं नहीं खाना पीना अच्छा देत कहीं करनी होत मन उसने उसने खिनिक मा बाढ़ तो के ले का बाढ़े से बोलन फिर मया करत खूबे कहाँ है बल डगरा हूँ पीला बेरा ब्याह करूँ बल्ला मैंने दुनिया सोरा ला मन माए बाप और डगरा हूँ जानू पीला बेरा लाड़ ब्याह सन करूँ बल्ला मैंने उसने होते होते होते बाढ़ते बाढ़ते एक दिन फिर लेखा रात बेरा जर धरली बिहान मोर लो मैंने लेखा मर तक फिर काय करती था माँ उतरों ने मर तक हुनी संग मर तक आज होते रहे कि लटपटान ला मन धर लेखा दफना दिला छान लाई ला मन फिर उसने गा गए मैंने दिन भर गा गए मैंने घरे गा गए मैंने गुलाय बाट घुंडरून घुंडरून के बई डोंडी पांच मिनट नहीं ठेबे मन राती मजने गा गए ची दी राती होले मोड़ा फाटन जाए मैंने लेखा लगे मोट लगे यार गा गए मैंने दिन होले घर आए मैंने की तरह थक ली मैंने गागुन गागुन उसने अजी मरलो आठ होली पंद्रह होली होली कितरो दिन महीना दुई महीना के भी दातु नहीं पतर नहीं खाना नहीं पीना नहीं नहा नहीं धुआ नहीं कैची नहीं उनके गागती ची रात आर दिन रात आर दिन। तो भगवान विचार कर ला मैंने हे भगवान मक पाप लागले मजबूर ने बल जन्मा तो रहा कसन करुन जन्म दे पठाऊ से मान तर मृत्यु बल रहा है और जन्म बला है बोल फिर भगवान विचार कर ला मैंने का हाल होली जानू असन नहाल तो संसार चो नर नारी रो नो हाथ भी ये पटिन तर चो गागे समाए आ गोटक बेटा है गोटक कहीं रात सब चो तो उसने दुखे से सब परिवार ने तो गोटक बेटा गोटक बेटी असने तो जन्म सत लोग असने संसार ने उबजली सर भाई बहन चो ने जन्म भाती राज दुनिया बोल ली से बोल फिर बोल ली मैंने माए भगवान बोल ली मैंने असने का हाल खुली जानू मके पाप लागली मरा तो कहीं मर ली मर लो बोलन फिर हुन बल भगवान बल कलपला मन और काय करूं आता बिचार हां जान में मंजपुर ने और जान में मंजपुर ने काय हो रूप हुन जमे जाए दे में डोकरी हुन रूप बोलली मन और भगवान फिर विचार होला सिरज ना करला नी करला घर ले जान ता नोनी नोनी बलते गाकते रहे मने फिर बल नी माने मन नोनी बल तक बल नीसी माने मन ए नोनी ए बेटी सुन रहे एक मिनट डंडिक सुन बोलली मने फिर जन हाँ काय आए माँ आ बोलली मन डंडिक बल ठेप बोलू फिर भगवान बोलला मन ए बेटा डंडिक ठेप रे बेटा तू पाए पड़े समय एक मिनट तु मक पानी देस तुझे घर लोग मरला पानी देस बोल तक फिर पानी दिली हाँ तु गोटक गोट सुन मचरत के बेटी तुझे बेटा गोट के रलो मर ली तु तो असन नी मानिस रे बेटा आ कोच पारा जा कोच घर नी मरला साल लोग मखन छे घरे तु पानी आनो
2: पानी आनो देस
1: नी करली मैं बसु रहन तु चेतले बोलली भगवान बसली से ए डोकरी होन भाती भगवान चतो
2: तो भगवान महापुर डोकरी
1: डोकरी होन बसला से
2: हो गेला
1: सुन जेलिस पानी डगर नहीं मच घर बेटा मरल नहीं मच घर बुआरी मरली नहीं मच घर सतरी मरली सब लोग साल पारा डंडिक बुलू वा सब घर डंडिक पारा नाम डंडिक बुलले सर 10 मिनट ने बुलले सर वा हेरली नहीं पानी नहीं आने दीदलो मा गईली के दीदी भगवान दीदलो ज्यादा नी मा हो दीदले असन के
2: दीदी मरला
1: हो कमंडला के काल उनके दिली के धर लिया जुगे नी मांगी तरे मांगू ना बोलली मन कोचे घर सब घर मरा कोचे घर पानी
2: कहां जगन होय
1: फेरी ली मन हे भगवान नी मिरली मक पानी का आयल
2: नी मिरली मा पानी
1: पानी नी मिरली मा कसन करू है इतना पानी बल पियो प्यास लागे साल घर चुक डुमली दिली नहीं मके नीचे मरलो घर पानी होता रहा से भगवान संकल्प कर ली नहीं मां नी मेरे तो तू नीचे मोर लग रही पानी तू ही बोलता जितरो गाक्सीस आज ले
2: तू नी गा मैं उसन बोल ले बोल तो
1: मैं उसन बोल ले मैं लोग ना है मैं तो के भगवान है তোকে সমজাও কিলে কসন করু নর নারী ভুল কাছে আর অসনিজ গাখতে রাসে কোন দিন তুই কমাউন খাসে আর কোন দিন ফের আউর বল বেটা বেটি ভগবান দিলি আর পাওসে
2: আর কসন করু
1: পোস কসন করু তুই রাসে আর পোসে তুই এ ভুলক তরাই দুঃখ কে আজলে নি মিরে তো সব ঘর উসনে দুঃখ আয় সব ঘর উসনে সুখ আয়
2: মর সো মর না আয়
1: জীবন পকাউন দে তরাই লোক কে নে তরাই পকাউন দে তরাই হেলে তরাই ভাত খাতে আমচ ধক্ত আয় অসনি আয় বলেন পর ভগবান হ আজলে তুই চলাইস বাড়ো আর তুই ভুলক ভুনি দিনে মতি কে ভগবান ভুল
2: কালা মানে
1: সব সংসার চ লোক কে
2: লোক কে
1: আর লোক বলুনি দিনে ভুলক লোক পকাউন দে সোজ ভাত কে
2: খাউন সে সে ভাত খাউন কে ভুনি দিনে ভগবান ভুল কালা
1: ভগবান বলে সন করুন মায়া কে ভুল কাউন দিলা
2: ভুল কাউন দিলা
1: উনি দিনে ভগবান বলে পকাউ সে খাউ সে উনি দিনে এই ভগবান জান হুনকে সদ বড় কে রাইদ্রিয়া মাছ কে উনি সরলি না দিস
0: হ্যাঁ তো দেখা শ্রীমতী চম্পাচু এ কাহিনী বলে কটাও রলি তিন মাহি পিলা তো দেখা আসন বলে গাঁও মানে কথা আর কাহিনী বলে সাংতর হয়েছে বলে যুগে করুন সিয়ান মন নানি নানি পিলা মনকে সুনাউন বাতি কাই আসন শিখ হুন মনকে সাংসোত শিক্ষা দেশোত তো আসনেচি আমি বলে বেড়া পস্তা গাঁও নে বলে আসন কটাও আসন ঠসা বলে বরণ বরণচু গোট মনকে আপন মনকে সুনাও দে জনাও দে আর এচলে আমচু বস্তরচু সংস্কৃতি কে বলে জানুকলায় হয়ে দে আর হুন সংস্কৃতি বাঁচে দে আর এতজন পিঢ়ি হুনকে বচাওন বাতি সঙ্গায় দে তো রেডিও শুনতো সপ্পায় ভাই বেন মনকে জুহার।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक साहित्य पत्रिका मुझो माटी, संपादक थे बलवीर सिंह कच्छ। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़, और आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे सागर फिल्म का गीत। श्रोताओं, फिल्म सागर सन 1985 में रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित और जीपी सिप्पी द्वारा निर्मित एक प्रसिद्ध भारतीय हिंदी संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। यह फिल्म डिंपल कंपाड़िया की बॉलीवुड में शानदार वापसी के लिए भी जानी जाती है। तो लीजिए सुनिए फिल्म सागर का एक और गीत।

आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे सागर फिल्म का गीत। फिल्म सागर के कथा व पटकथा को लिखा था जावेद अख्तर ने। प्रमुख कलाकार थे कमल हसन, ऋषि कपूर, डिंपल कंपाड़िया और नादिरा। श्रोताओं, फिल्म सागर में त्रिकोणीय प्रेम कहानी को दर्शाया गया है।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और किशोर कुमार की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे सागर फिल्म का गीत। सन 1985 में रमेश सिप्पी द्वारा निर्मित फिल्म सागर के गीतों को लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत से सजाया था आर डी बर्मन ने, स्वर दिया था किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, एसपी बाला सुब्रमण्यम और शैलेंद्र ने।

श्रोतो, फिल्म सागर को भारत की ओर से सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 98 अकादमी पुरस्कारों में आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया था। आर डी बर्मन को बेहतरीन संगीत और कमल हासन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी इस फिल्म में प्राप्त हुआ था।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे थे सागर फिल्म के कुछ गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। एनटीए ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। राष्ट्रीय कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता 12 जून से नवा रायपुर में आयोजित की जाएगी और मॉनसून के अगले 3 से 4 दिनों में छत्तीसगढ़ में दस्तक देने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की संगठनात्मक बैठक में मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री और मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा गौर ने कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 5 से 21 जून तक आयोजित कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। बैठक में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास हो रहा है और सरकार की योजनाओं की जानकारी समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर में 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता के शुभंकर पहाड़ी मैना का विमोचन किया। ये प्रतियोगिता 12 से 14 जून तक नवा रायपुर के सेंध लेक में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ये आयोजन खिलाड़ियों को नई प्रेरणा देगा और प्रदेश की खेल पहचान को और मजबूत बनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह के अवसर पर रायपुर में आज से विशेष प्रदर्शनी और व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय की आर्ट गैलरी में ऐतिहासिक दस्तावेजों और अभिलेखों के छायाचित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। 12 जून तक चलने वाली ये प्रदर्शनी प्रतिदिन 11:00 बजे से 5:00 बजे तक लोगों के लिए खुली रहेगी। वहीं 9 जून को अभिलेखों के संरक्षण और उनके महत्व पर विशेष व्याख्यान आयोजित होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। संस्कृति विभाग द्वारा सरगुजा संभाग के उदयपुर और लखनपुर में आज से आकार पारंपरिक शिल्प और कला प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। 14 जून तक आयोजित शिविर में युवाओं को 14 प्रकार की पारंपरिक कला विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य लोक कलाओं और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण के साथ नई पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कल तक पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मॉनसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मॉनसून पहुंच गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 12 जून से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होने के आसार हैं। बालोद जिले के लोक कलाकार प्रेम साहू उर्फ राजू की कल हृदय आघात से मौत हो गई। ये सूचना मिलने के बाद अस्पताल जा रहे उनके माता पिता भी एक सड़क हादसे का शिकार होकर घायल हो गए। धमतरी जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में एक नाबालिग समेत 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अर्जुनी पुलिस ने जांच नाके पर कार और पिकअप से 400 किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त किया। वहीं मेजका पुलिस ने कार से 44 किलोग्राम गांजा बरामद कर 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को पकड़ा। पुलिस ने कुल 450 किलोग्राम गांजा और तस्करी में प्रयुक्त वाहन जब्त कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। राष्ट्रीय कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता 12 जून से नवा रायपुर में आयोजित की जाएगी और मानसून के अगले 3 से 4 दिनों में छत्तीसगढ़ में दस्तक देने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और आप हमें न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलशन, इसमें आज सुनिए पुराने नगमे।

कार्यक्रम का पहला गीत साथी फिल्म से, रचना मजरू की है, संगीत नौशाद का है, आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

मजरू के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने, स्वर लता मंगेशकर का है, फिल्म है समाधि।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलशन। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पुराने नगमे। गीता दत्त की आवाज में आइए सुने फिल्म साहिब बीबी और गुलाम का गीत। बोल शकील बदायनी के हैं, धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलशन। इसमें आज आप सुन रहे हैं पुराने नगमे। मोहम्मद रफी और आशा भोसले के स्वरों में प्रस्तुत है SH बिहारी का लिखा गीत। धुन बनाई है OP नैयर ने। फिल्म है एक मुसाफिर और एक हसीना।

आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को सुरों में ढाला है आरडी बर्मन ने, स्वर आशा भोसले और किशोर कुमार का है। फिल्म है शरीफ बदमाश।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गुलशन संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे पुराने नगमे। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
1: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाए समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाए सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और आप हमें न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। लीजिए सुनिए बस्तर के लोकगीतों का कार्यक्रम गुड़दम। इसमें आज सुनिए शुक्ला और साथी का गाया गोंडी लोकगीत।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं बस्तर के लोकगीतों का कार्यक्रम गुड़दुम। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं शुक्ला और साथियों का गाया गोंडी लोकगीत।

0: गुड़दुम कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शुक्ला और साथियों के गाए हल गोंडी लोकगीत। मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 11 बजे हैं।
1: तीनों कॉलेज ने
2: चिंता नहीं करा,
1: फीस तो देख।
3: हे हे, काय हाल है, काय होली आए
2: फीस जो फिकर।
3: राहुल जो बैंक खाता तो आसीचे बाट सरसरा, बैंक ले काम पड़ लो इतरो पीला पढ़ाई कर जा सरसरा मिले दे, और हुन बोले 4 लाख तक बिन झंझट चो आए हुन कहां से मिठाई।
4: आरबीआई बोले से
5: नंगत करा मूर लेन देन बेरा रहा चतुर।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 870-001-4242।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
0: श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया पर। हिंदी सिनेमा की दिग्गज और सदाबहार अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया महज 16 साल की उम्र में राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म बॉबी, जो कि सन 1973 में बनी फिल्म से धमाकेदार नवोदित अभिनेत्री रहीं। आइए सुनते हैं उनकी अभिनीत बॉबी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में।
8: मुझे कुछ कहना है,
9: मुझे भी कुछ कहना है,
8: मुझे कुछ कहना है,
9: मुझे भी कुछ कहना है।
8: पहले तुम,
9: पहले तुम,
8: पहले तुम,
9: पहले तुम,
8: पहले तुम,
9: तुम,
8: तुम,
9: तुम,
8: तुम,
9: तुम,
8: तुम,
9: तुम। देखो, जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
8: अच्छा, मैं कहती हूँ

श्रोताओं, डिंपल कपाड़िया का जन्म 8 जून सन 1957 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। आइए सुनते हैं उनकी अभिनीत फिल्म रामलखन का ये गीत।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम केंद्रित है हिंदी सिनेमा की दिग्गज और सदाबहार अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया पर। डिंपल कपाड़िया, जो कि एक धनी गुजराती परिवार से ताल्लुक रखती हैं, डिंपल कपाड़िया की छोटी बहन सिंपल कपाड़िया भी एक अभिनेत्री और कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। आइए सुनते हैं फिल्म मंजिल मंजिल का ये गीत आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में।

श्रोताओं, सन 1973 में ही बॉबी फिल्म के रिलीज के बाद ही डिंपल कपाड़िया ने सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी कर ली।

कंचन और किशोर कुमार के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे जांबाज फिल्म का गीत। डिंपल कपाड़िया की दो बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना, उनके दामाद अक्षय खन्ना, ये सभी हिंदी सिनेमा

सक्रिय भूमिकाएं अभी भी निभा रहे हैं। लीजिए सुनिए डिंपल कपाड़िया अभिनीत फिल्म लेकिन का ये गीत। इस गीत को स्वर दिया है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, डिंपल कपाड़िया ने सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी करने के बाद एक दशक लंबे ब्रेक के बाद उन्होंने सन 1984 में वापसी की और कई पुरस्कार जीते। लीजिए सुनिए उनकी अभिनीत फिल्म एतबार का ये गीत भूपिंदर और आशा भोसले के युगल स्वर में।

श्रोताओं, फिल्म अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया को फिल्म बॉबी और सागर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार और रुदाली फिल्म जो कि 1993 में प्रदर्शित हुई इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। अब लीजिए सुनिए सागर फिल्म का ये गीत।

श्रोता हूँ, फिल्म रुदाली के लिए डिम्पल कपाड़िया को राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। आइए सुनते हैं उनकी अभिनीत फिल्म दिल चाहता है का ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था हिंदी सिनेमा की दिग्गज और सदाबहार अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया पर। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 11:30 हुए हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
3: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: अब प्रस्तुत है कार्यक्रम पाटा किंजा। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सैनीराम और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत।

पाटा केंजा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सैनीराम और साथियों के गाए कोंडी लोकगीत। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 11:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है और राष्ट्रीय कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता 12 जून से नवा रायपुर में आयोजित की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना भी जारी कर दी है। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर में 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता के शुभंकर पहाड़ी मैना का विमोचन किया। ये प्रतियोगिता 12 से 14 जून तक नवा रायपुर के सेंध लेक में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ये आयोजन खिलाड़ियों को नई प्रेरणा देगा और प्रदेश की खेल पहचान को और मजबूत बनाएगा। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जशपुर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने रोजगार की मांग दर्ज कराई और जॉब कार्ड निर्माण तथा अद्यतन कार्यों में भाग लिया। विशेष शिविरों में मनरेगा की विभिन्न प्रक्रियाओं और प्रावधानों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जल संरक्षण कार्यों तथा महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत डॉ अंबेडकर फाउंडेशन ने दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में डॉ अंबेडकर चेयर शोध पीठ की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। डॉ अंबेडकर चेयर की स्थापना से विश्वविद्यालय में शोध प्रकाशन, राष्ट्रीय संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, जन जागरूकता कार्यक्रम, क्षेत्राधारित अनुसंधान और पीएचडी कार्यक्रमों को नई दिशा मिलेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून कल तक पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 12 जून से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होने के आसार हैं। बालोद जिले के लोक कलाकार प्रेम साहू उर्फ राजू की कल हृदय आघात से मौत हो गई। ये सूचना मिलने के बाद अस्पताल जा रहे उनके माता पिता भी एक सड़क हादसे का शिकार होकर घायल हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है और राष्ट्रीय कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता 12 जून से नवा रायपुर में आयोजित की जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम कला और कलाकार।
1: दादा दा दादा दा दादा दा

0: हाँ भाई बहन मन, मैं तो अमर ले कला और कलाकार सुन तो सप्पा है भाई बहन मन के, मैं रत्नी करें से जुहार। भाई बहन मन, कला और कलाकार भीतरे अमी कितले कलाकार भाई मन संग बले भेट घाट बले करते ची रहूँ। कलाकार मन ले उन मन जो कला और हुन मन जो हुनर के लेख करत रहे और सीख तो रहे और पिला मन के बल सिखात रहे, असनी काई बले कला सीखलो भाई बहिन मन जो जीवना काजे अच्छा चले दी। मानतर निजान लो भाई बहिन मन दूसर कलाकार भाई मन ले बले सीख तो राय, काम बुता काई बले बुता हो हुन मन बले गोटो कला है। जान लो भाई बहिन तो कर दे, नी जान लो भाई बहिन मन कहाँ ले कर दे। कला सपाए लोग लगे काई ना काई कला रहे से ची, उन कला ले आम चो जीवना चले से। भाई बहन मन, आम चो जीवना जीवना का जे मेहनत मशागत तो करु पड़े से ची। एबे आमी मेहनत मशागत नी करुआ तो आम चो पिला मन के पाचे परेशानी हो दे। काई ची बले काम बुता ईमानदारी ले करुआ और सीखुआ तो सीखू खोई दे ची। उन्हीं का जे उन बुता के मौके नी होए मुख सिकुक नहीं होए बोल तो बोलून ओगाय रले कहाँ ले सिकुक होए दे। भाई बहन मन, घर जो जोन सियान मन आत हुन मन जो आगे ले करते ऐसो, हुन काम बुता के भूलोक तर नुहाए हुन काम के सीख तो राय। बेड़ा खड़ा बुता हो नोले कई बले घर जो सियान मन करते ऐसो, बड़े ही बुता होली मूर्ति ए आजकल हाट मन ने टाकरा टुकना ए सियान मन आगे ले बनाते ऐसो, उन कला मन के बले सीखत रहे। और गाड़ी बना तो फटफटी ए मन के बले जोन घर मन ने आगे ले सियान मन करते ऐसो, तुम काम बुता के भुलक तर नुआ है। आगे जो सियान मन करते ऐसो तुम बुता के तो पीला मन के बले सिखात तो रहा है। और आजी जो कलाकार भीतरे आए ए कला मनु पार्क वाराणसी बनारस ले, मनु पार्क श्रृंखला नाम ने प्रसिद्ध आसे, सार्वजनिक पर्यटन आसे। और हुता चो पार्क मन चो नाव बोनिया पार्क, आनंद पार्क, शहीद पार्क, सारनाथ चो हिरण पार्क ए मनासे। हुता चो घाटी श्रृंखला बनारस चो गंगा चो रेटे 84 घाट चो गोटो खूबे बड़े लाइन ले आसे। और हुता 6 किलोमीटर ने फैल ली से। और हुता 10 मेघ घाट सबले प्रसिद्ध आसे। और भगवान ब्रह्मा 10 ठन बलि देवन रहो हुता गंगा आरती रोजे हुआ है। और हुता बाबा भोलेनाथ चो मंदिर बले प्रसिद्ध आसे। और हुता चो लोग पवित्र गंगा चो रोजे नहावात असन बोलुआत कि नहालो लोग पाप सपाय दुख दंड और सपाय खंडन हो गए। मने असन जगह मन ने बले आमचो देश ले एता दख्तो काजे दूसर देश ले बले ऐसो। तो भाई बहन मन, ए तो रली गोट अदाय फिर बले नगद गोटा से आले एके बले सुनो।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
5: इत बदले मत्तांक अच्छा मानेड़ा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्तांक जानवर किन इलाज तकवेंट राहत तोरकना दुम्मीद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दोरकिता जीएसटी तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे।
6: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाए समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाए सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
7: जीएसटी चो दर के कम करलो ने सोझे मनुख जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से बल्कि जानवर मंचो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे। जीएसटी ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से नुआ कीमत ले सामान बना तो लोग और घेन तो लोग दोनों के लाभ मिरे दे। ये नुआ जीएसटी दर 22 सितंबर 2025 ले लागू होए दे।
0: हाँ तो भाई बहन मन ये तो रली नगद गोट ये गोट केवल तो सुन लू अदाए गोट नगद गोट संगे अदाए गीता से ए गीत के गावला से मेघनाथ पटनायक अरुण मंचो संगवारी मन अदाए सुनू।

हाँ तो भाई बहन मन, ए कितरो अच्छा गीत के तो सुन लू। ए गीत के गाउन रोत मेघनाथ पटनायक और हनुमंचो संगवारी मन। भाई बहन मन, गीत सुन ले तो सुनुक ची भाई से मानतर फेर बोले ए छत्तीसगढ़ी गीत आसे अले। ए गीत के गावला से ममता चंद्राकर और हनुमंचो संगवारी मन, अले ए गीत के सुनू।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला और कलाकार। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार।

0: हां बहीन मन, मैं तो अमर ले घर द्वार कार्यक्रम सुन तो सप्पा बहिन दीदी मन के मैं रत्नी करे से जुहार और नानी नानी पिला मन के बले मोच बाटले खूबे खूबे मया बहिन मन आमच बहिन मन घर परिवार चो दखा रखा तो कर सोची पिला मन और सियान मन चो बले रोजे दिन कर सोची मानतर आमचो बहिन मन अदाय आमचो बूता संगे संगे अदाय आमचो बहिन मन बड़े बड़े काम मन के बले कर सोत आगे चो बहिन मन घर चोई ची बूता करते रहोत और खिनी कादक बेड़ा खड़ा बूता के करते रहोत मानतर अदाय आमचो बहिन मन नेताले धरून जहाज तक बल चला सकोत ए बहिन मन पढ़े लिखे बहिन मन घर चो बूता के तो बले कर सोत ची और हुन मन बड़े बड़े काम मन बले कर सोत आगे चो बहिन मन घर चो बूता करून बाती ओगाय रहोत और घर ले बाहर बल नी निक रुक देते रहो और घर चो लोग बोले बाहर नी जाऊक देते रहो मानतर अदाय आम चो बहिन मन निडर होन बाती घर ले निकर निकरून बाती काई बोले काम बुता के करुक सकत और कहाँ बोले जाऊक सकत बहिन मन पढ़े लिखे बहिन मन काई ना काई बुता तो कर सकत घर चो बुता संग संगे अदाय बाहर बोले काम बुता ने बोले जाए सोत आमचो बहिन मन घर परिवार चो सब बूता के सारून बाती दूसर बूता के बले करतो राय आजकल असन बाढ़ती चो समय आए कि एकला कमालेन तो नी फूरे आजकल चो पीला जिला मन चो पढ़ाई लिखाई और कहीं बले घेनले बले खूबे मोल होई से और आम के पैसा नी फूरे बहिन मन आमचो बेटी नोनी मन के बले खूबे पढ़ाई लिखाई आम के अच्छा करतो राय बहिन मन आम चो बेटी मन बड़े आम चो देश ने नाम कमान सकत गांव चो बहिन असन बोलुआत बेटी नी पढ़ाऊ बेटा पढ़ावा असन नी बोलत रहा बेटा मन केवल पढ़ा तो चियाए मानतर बेटी मन के बले अच्छा पढ़ात रहा नौकरी नी कर ले बले आप लो परिवार चो लोग के बले अच्छा शिक्षा देव सके आम चो बेटी मन दका अस्पताल और सब जगह आमचो बेटी बहिन मन काम मन कर सो बहिन मन असन नी सोच तो राय कि बेटी घर नी घर ची रहो बोलून आमचो देश चो बेटी मन बड़े बड़े जगह मन ने बोले आप लो नाव कमाए सो बहिन मन आमचो बेटी मन के अच्छा ले अच्छा पढ़ात राय आमचो घर परिवार चो और आमचो देश चो देश चो बले ना कमाए सोत गांव चो खिनी बले बहिन बले आज आजकल स्व सहायता समूह बलान बाती बले काम बुता के करू सको तो बहिन मन ए तो रली गोट फेर बले नगद गोटा से आले एक बले सुनु
1: सो बेड़किन बिड़िया राहत तिंदनत उंडाना सामान तलाय दरकता डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे

0: सस्ता दुर किता।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: हाँ तो बहन मन, ए नगद गोट के बल तो सुन लू अदा भेटवार्ता आसे। स्व सहायता समूह चो अध्यक्ष ए बहिनात भगवती देवांगन अरु एमन संगे भेट कर सोत बलबीर सिंह कच आले एमन चो गोट बात के बले सुनू।
4: घर द्वार सुन तो बहिन मन जसन के आपन मन घर द्वार कार्यक्रम ने सुन सास के आमी कई क महिला स्व सहायता समूह बनान बाती काम करतो बहिन मन संग गोट बात करूँ से जेचोले हुन मन के बल्ले ने आर्थिक उन्नति होतो कारण ने हुन मन चो परिवार ने बल्ले ने खेनिक सुख है से मतलब सुविधा होए से तो असनी मैं फिर गोटोक बहिन संग गोट बात करे से। बहन तू सब ले आगे तोर नाम आरु गांव नाम संग
5: जो सब के जुआर
4: जुआर।
5: मर नाम श्रीमती भगवती देवांगन है, मर गांव नाम मंगना राय, मर समूह नाम प्रगति महिला स्व सहायता समूह है, मर समूह तानर में अध्यक्ष है।
4: अच्छा तुम्हार समूह ने कतक लोग आसा?
5: अमर समूह ने 12 लोग आछु।
4: अच्छा 12।
5: हाँ।
4: अच्छा कतक दिन से होला जाले बना ले बार?
5: अमर समूह तो 2016 जुड़ला, 7 साल होइ से छे।
4: अच्छा
5: हाँ
4: हाँ हाँ। तो बल्ले ने ये समूह बनाए बाका जे तुम के कौन सांगला कौन सन बनाए बार समूह है बोलते?
5: तो आनी ले राउंड बलू आता है दीदी मनाए लाए चारा माँ काय काय बाटर आई दीदी मनाए लाए आम के समूह ने जुड़ ला आज कसन बलते पूछ लाए तो आम इना इना जुड़ लू आचे बल्लू तो कसन कसन आई सांगा बलते गलू गुनु काम पेर आए लग बस आए लाए पूछ लाए सांग लाए असन असन स्थिति है ये सब बलते बल लाए और पाचे आम समूह ने जुड़ लू।
4: अच्छा बोले ने शुरू ले 12 जन जुड़ लो?
5: हाँ हाँ शुरू ले 12 जन जुड़ लो है।
4: अच्छा है तन कहीं मतलब कहीं कागज वगैरह कहीं फार्म वगैरह भर के पड़ू है?
5: हाँ आधार कार्ड और फोटो कापी मांग लाए और इन्हें लाया है मन।
4: अच्छा हाँ फिर शुरू ने तुम पैसा वगैरह बोल जमा कर लो?
5: हाँ हम 10-10 रुपया जमा कर लू, जमा करी गोटोक सील गिन लू पहले और समूह लोग 10-12 लोग ग्रुप ने गोटोक आमी खाता खुलाए लू और आई तन 10-10 रुपया हफ्ता ने जमा करते रहू आई पैसा का मैं बैंक ने कर जमा करू।
4: अच्छा हाँ हाँ फिर बाद में सरकार बाटले कहीं सहायता मिल ला?
5: सरकार बाटले आरे पैसा बलुआ 15,000 आरे पैसा मिलला और CIF बलुआ 6 महीना बाद ने CIF पैसा मिलला और 1 साल बाद ने हम 1,00,000 पैसा दलू और 12 लोग आमी बैंक नामी अपना उठाई करी बैंक ने हमें पटाई सार लू।
4: अच्छा
5: हाँ हाँ
4: बोले ने सब ले पहल बोले ने काय काम की तुम्हें मूर कर ला साले?
5: पहले तो समूर काम चल ला पाचे 2020 ले आमी गोठान काम कर लू।
4: अच्छा समूह ने काय काम करते रहला?
5: समूह ने मैं पशु सखी काम करवाए
4: पशु सखी।
5: हाँ अच्छा। गाय बैला कुकड़ा चिमड़ा असनी काय मरनी बले हुआ है माथा हाँ। बोलू ताय बले हुआ है गाय बैला के असनी गलगोटा ये सबर हाँ। तो बड़े बड़े डॉक्टर मन के आग दे बार कारीगर असनी बीमार सीमार आए बलते
4: हाँ।
5: और खुद छोटे छोटे बीमार होल तो मसीबल करवाए।
4: अच्छा हाँ। अच्छा तो ये पशु सखी काज बोलते हो तो के ट्रेनिंग धर के लाग सी?
5: हाँ पशु सखी काज ट्रेनिंग धर के लागला हम के
4: कहाँ?
5: बकावंड।
4: अच्छा बकावंड।
5: हाँ
4: अच्छा बोले कतक लोग कहते हैं ट्रेनिंग दिला जाले?
5: तो हर गांव ने तो आई लगे 27 पंचायत ने हर गांव ने एक लाले का पशु सखी बलवाद तो आती सब लोग जाई कर हम सीख लू और सीखी कर आई कर हम गांव ने भी कुकड़ा चिमड़ा के इंजेक्शन लगावा।
4: अच्छा तो है तन पूरा इंजेक्शन लगा बीती बोले सब सांग लगा
5: आओ कसन मार बारा है कसन कतक मार दवाई दर बारा है कसन मार बारा ये सब और सीखा है लाए तो सीखी करी आई लू और ये गांव ने आमी कर बुआ चे।
4: अच्छा तो हाँ तो मतलब दवाई वगैरह बोल कहीं है सरकार बाटले?
5: हाँ दवाई बोल सरकार बाटले देवा।
4: अच्छा बोले तुमके खुद घेनुक ना पड़े?
5: नहीं।
4: हाँ हाँ तो ये जैसन की पशु जानवर वगैरह बोले कहीं सर्वे वगैरह तुम कर सास की कहीं हाक दिले ने लगा सास?
5: नहीं हर घर ने तो दिन भर तो कुकड़ा चिमड़ा तो दिन भर बुलुआ संजो ले हलुआ तो हाँ। हर घर ने हमी तो जावा तो हर कुकड़ा के हम इंजेक्शन लगावा छोटे बच्चा के अलग लगाए बराय और बड़े टाके अलग लगाए बराय।
4: अच्छा
5: हाँ
4: बोले सबका अलग अलग?
5: हाँ अलग अलग आवा।
4: तो बोले ने कहीं विशेष समय रही से आज का जैसे कि पशु टीकाकरण वगैरह बोले लगावत बोलवा तो असन बल

0: लगा हुआ?
1: गाय बैल के?
0: हाँ
1: गाय बैल के तो बदमाश माँ बैल मन के लगाए ना हो असनी कि नहीं, सावधान माँ बैल मन के लगावाऊ
0: अच्छा
1: असनी बकरी और बैल मन के।
0: अच्छा हाँ हाँ बोलने जोन तुम्हें मतलब इलाज करके सकास बोले
1: हाउ
0: हो
1: हाउ
0: हाँ अभी तक तुमका। अच्छा ये तो अच्छा है बोले तू पशु सखी चो बोले काम कर सी ये बोले आए पशु सखी बोले काम कर
1: हाँ
0: सी।
1: ये भी बोल कर भी अच्छे।
0: अच्छा हाँ। तो बोले ने ये चुकाज कहीं जैसे कि रजिस्टर वगैरह कहीं मेंटेन कर पड़ू है कहीं
1: नहीं कहीं ना लगे
0: कहीं ना लगे?
1: आओ।
0: अच्छा नहीं कहीं रिपोर्ट वगैरह कहीं
1: हाँ
0: बना?
1: तो जसन आमी तो गाँव ने कतक घर ने कतक कार घरे कतक कुकड़ा आछे ये
0: हाँ
1: सबर आम के जानकारी इधर के लागू आए। तो
0: अच्छा
1: आई दीदी घरे अतक कुकड़ा आछे, तो आई दीदी घरे अतक कुकड़ा आछे, तो गाँव ने अतक लेकर आछे ते सब के आम के तो दर के पर लिखे लागू आए। और आगे सर मन के कोनी बले पूछ ले आके आम के सांग के लागू आए कि अमर गांव ने ए दीदी घर तक कुकड़ा आचे, तो गांव ने तक आम के अतक मुर्गी जनसंख्या आचे बलते
0: अच्छा हाँ हाँ तो हाँ हिसाब में तो हमको दवाई बोले मिर्ची आज बोले
1: आओ।
0: हाँ। तो ये जैसन कि पशुपालन विभाग ले कई ने कुकड़ी बकड़ा गाय भैंस पोस्तो योजना मन रही आज हर मन के बल तुम्हें संग गाँव और लोग से?
1: हाँ पारम भर बाराए बलते सांगुआ।
0: अच्छा
1: तो आदिवासी लोग के तो 350 रुपया लागू आए, और असनी पिछला वर्ग आए मन के 750 लागू आए असनी
0: अच्छा
1: कुकड़ा काज पारम भर बार ले।
0: हाँ। तो अब तक कोनी के अमरा लासा से ऐसा नई योजना में लाभ को की दिला सास
1: हाँ दीदी मन के कुकड़ा लाभ दिलाई लुआ
0: दिलास?
1: ची। हाँ
0: अच्छा हाँ। तो ये तो अच्छा काम है ये तो तुझो बोले ने खुद चुकर तो भी थी पशु सखी आस मानतर जसन की अभी हम गोट बात करते रहू तुम चो समूह
1: ओ
0: ये समूह बोलने अभी काय बनाए सा
1: एब समूह ने आमर समूह ने भी तो खूबे काम आछे आमर गोठान ने तो चीज
0: हाँ।
1: चलसी सबू। एबे तो आमर समूह ने बकरी पालन करबू आछे, 11 टा पशु विभाग ले आम के बकरी देलान ताके चरावा दिन भर संजो ले डापवा। और आछी गोट की काम तो ना होए बलते रीपा बोलुआ, रीपा काम आछे
0: अच्छा
1: तो आती आमी तो लाई ए अचार ए पेपर कप प्लेट और गिलास ये सब ले आमी दूसरा दुकान ले या सर ले को लग ले आम गेनी आनते रहूं।
0: हाँ हाँ
1: तो हाई बीती मशीन आम के केंद्र सरकार ले आम के
0: मिर्ला
1: मिरला आचे, तो आई खुद आमी बनाए करी आम तो आमी बिक बुआ छे दे।
0: अच्छा
1: हाँ
0: हाँ हाँ भले भी मतलब चालू आसे
1: आओ
0: काम।
1: चालू आचे।
0: अच्छा अच्छा इतलो अच्छा तुम काम कर सा तो ये बिक तो भी थे कहाँ बिकवा जाले?
1: तो आइटा मन के तो काय तो कोई बटन हुआ है सब काय तो वही बटन हुआ है। तो गांव ने तो पेपर कप काय काय गांव ने शादी ब्याह बल हुआ है सट्टी गरे बल लागू है लाई चना ये
0: हाँ
1: सब आई तन तनी बिकवाऊ।
0: अच्छा तो बलहाँ खुद गोठान निचान के बात कहें
1: हाउ हाउ
0: असन कहीं हाट वगैरह बोले ने
1: नहीं को लगना नहीं हूँ।
0: नानी यस।
1: हाँ
0: अच्छा तो जैसन कि गोठान ने काम करवा पूरा 12 लोग संगे आसु आस की कहीं अलग अलग पारी बना हुआ जाए?
1: नहीं सब संगे आछुआ।
0: अच्छा हाँ हाँ बोले दिन ने कतक समय संगला साथ जाल कहीं कोनी दिन आए कि रोजे दिन आए?
1: नहीं डेली रोज जावा आमी सक्रिया 9 बजे टिफिन दरी कर जावा, 5 बजे छुट्टी करवाऊ अति कवाऊ और दिन बराती काम करवाऊ।
0: अच्छा बोला रोज दिन है?
1: हाँ रोज देना।
0: अच्छा हाँ। ये तो अच्छा काम है जैसन कि मशीन भी थी तुम बोले दोना पत्तल गिलास कप वगैरह बोले बनाते ये काज तो प्रशिक्षण जरूरी है?
1: हाँ तो प्रशिक्षण ना धरलू आम के सर जोन सीखी रहे तो आयलाम के और असन के बटन के असन करवा रहा है असन ले असन करवा रहा है ये सब के सांग लाए आय तान ले पेराम बले खुद तिकरी रला दाए चालू कर लू और देख लू सीख लू सीखी करे भी खुदा में बनाए बुआ चे।
0: अच्छा
1: आओ
0: हाँ। कसन असन बाहर ही नहीं गेला साज बोले बे?
1: नहीं
0: अच्छा और कहीं दूसर काम ने कोनी बाहर ही दख के गेला सा?
1: बाहरे तो आमी रायपुर तक मैं 2 यार गलिया चे
0: अच्छा
1: चारा मा जाई रे तो सनी काय
0: अच्छा
1: काय काम कोन कोन जगह ने बनाए बात ये सबर
0: हाँ
1: दख के
0: अच्छा रायपुर ने काय दख ली जल तो?
1: रायपुर ने काय समूह लोग काय कर बात ये सब के दख के गलू असनी ये बिसांग भी है तुम्हें तो दोना पत्थर ये सबर तो आई बाटले दखी आई कि रामी बले सब के करबू बलते आईलू और रामी ये कि सीखलू और अम्बल खुद करबू आजे।
0: अच्छा हाँ। तो ये तो अच्छा बल्ले ने कहा कि बल्ले कसन लागली रायपुर जाऊं दगबा के?
1: अच्छा लागला।
0: अच्छा लागला
1: हाँ
0: हाँ मतलब मन ने तो कहीं आमी बोला सन नहीं ऐसा नामी करूं दे ऐसा तो हो ले बती नहीं
1: हाँ तो हाँ। आमी बोले दख लू दखिच कर दख ले तो आम के काम ना आता ये के खुद खरी कर दख बारा ते बे आम बल करबू की ना करबू बलते ये सोच लू और आम बल खुद कर लू और ये बे करबू आचे
0: अच्छा हाँ अच्छा देवांग ने तू इतलो अच्छा गोट के सांगलिस काम के बल सांगलिस गवर में कंपोस्ट तू खुद बोले न कहा कि पशु सखी बोले आस जसन की ये चो लाभ बोलू बे पैसा कौड़ी वगैरह मिर लेने तुम चो बारा जन आसास तो कसन बाटा करू आसाले
1: असनी आजरी बरुआ तो कौन जाओ आए कौन के काम बल पड़ू आए ने को दुख आए सुख आए गांव ने कौन गांव गुड़ा बल जाओ आजरी उनसार ने आजरी बरुआ आजरी उनसार ने बाटा करुआ
0: अच्छा हाँ ये तो अच्छा अच्छा ये सांग तू कितलो पढ़ा लिखा कितलो असन पढ़ ली
1: मैं आठवीं पढ़ लिया
0: आठवीं पढ़ लिया अच्छा तो ये तो अच्छा आठवीं बोले कुछ काम है ऐसे भी पशु सखी बोलिया बोले ने समूह संग बोलिया तू पशु सखी बोले तुझ दुठान काम है आई कि नहीं तू दक पशु सखी बनलो बेराले और महिला स्व सहायता समूह ने जुड़लो बेराले घर परिवार का कहीं दखा दे से अच्छा उद्यम हिसाब ने का कसन लागे
1: नहीं पहले तो आमी के नी ना जायत रू गाँव ने कुली बुती जाऊं तो दारू काचे जाऊं तो बरसात बेरा बेड़ा ने बुती जाऊं तो जोन दिन ले आमी 2016 ले आम जुड़लू आचे आई दिन ले बल्लासन मैं शुरुआत ले पशु सखी काम कर भी चार दिन ले के नी कुली बुती के नी ना जाऊं तो पाचे फिर 2020 ले फिर गोठान होयला गोठान हो बाकी हमार आर्थिक सहायता अधिक अच्छा लागला कि घर द्वार बल खूब अच्छा होयला पिला जी लाग बल पढ़ा लिखा अच्छा करायलू अपना घर द्वार के बले आगर ले दूसरा बदल लू ये भी आम के बल खुद अच्छा लाग सी अच्छी
0: बल्ले ने कहा कि बल्ले ने खिनिक पैसा कोड़ी हिसाब ने खूब सुविधा होली
1: हाँ। नोनी बोले बारहवीं तक पढ़ाई ली ऑनलाइन पढ़ाई होते रहे अर्धा मोबाइल ना रहे तार का मोबाइल धर दे ली और फिर बारहवीं पढ़ी कर छाड़ ला चार बाग फिर एक ठन टेलर धर दे लिया चेबे नोनी टेलर करवाए काम
0: अच्छा हाँ हाँ ये तो अच्छा है टेलर बोले गोटो हुनर आए समझो है कि नहीं बोले कहीं बोले काम करून करून उन असली खाली समय है ना उन बल काम कर सके अच्छा तुम जो समूह जो लोग एबे आगे बोले असन उन्नति बढ़ती का काय सोचला सास काय करा से
1: तो एबे आवरी हम काय करू हां तो आई आवरी बोले कहीं काम होइले हावरी बोले करबू
0: अच्छा असन मन आसे बिचारा से बोलू हां हां तो आले दीदी तू इतलो अच्छा बोले तुम जो सोसाइटी समूह तू जो पशु सखी बनलो सफाई गोटके इतलो अच्छा नंग सांगली साल खूब खूब जुवार
1: जुवार
2: हां तो ए भेटवार्ता सुनलू ए बहिनात भगवती देवांगन कितरो अच्छा एमन पशु सखी और सोसायता समूह चो अध्यक्ष बल्यात एक कितरो अच्छा गोट के सांगला तो बहिन मन एमन चो गोट बात के बल तो सुनलू अदा फिर गोटो गीता से ए गीत के गावला से लकेश्वर खुदराम और हुन मन चो संगवारी मन अले एमन चो गीत के बले सुनू

तो बहन मन ए गीत के गाउन रहो दिलीप कुमार पांडे और हुन मंचो संगवारी मन। तो बहन मन फिर समय बलास्ता आले फिर गोटो गीत आसे ए गीत के गावला से लखेश्वर खुदराम और हुन मंचो संगवारी मन आले ए गीत के बोले सुनू।

तो बहन मन ए गीत के गाहुन रो लकेश्वर खुदराम और हुमन चो संगवारी मन। तो बहन मन आजकल बल्लेन घाम चो समिया आए मंतर मचो जात तो समिया बले होय से घर द्वार कार्यक्रम सुन तो सब पाए बहन दीदी मन के मैं रत्नी करे से जो

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों ने निर्धनों और वंचितों के जीवन में आशा, अवसर और स्वावलंबन के नए अध्याय लिखे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमा सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
2: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
1: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से ईरान के मिसाइल हमले पर जवाबी कार्रवाई न करने का आग्रह किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि इससे शांति समझौते तक पहुंचने के प्रयासों में बाधा आ सकती है। उन्होंने ईरान से फिर वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। भारतीय शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट आई। सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 73,809 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि समय की बेड़ा खड़ा चकोट।
1: सूरजमुखी चो बीज चो छोलका मांद रहे से एक आजे अकर तो बेरा भूई ने नंगत ओलकमा रतो रहा है। भूई के नंगत गड़िया जपुनवाती लगड़ा मांद तो रहा है और पाछे देसी नांगर ले दुई हार असन जपुनवाती बकर चलान देतो रहा है और बुन तो लाइक चो बनातो रहा है। सूरजमुखी चो बीज नंगत किस्म चो बीज होले ने 6 से 8 किलो और संकर किस्म जोन के हाइब्रिड किस्म बोलसो हुन होले ने 5 से 7 किलो अड़े एकड़ चो हिसाब ने लागे से। बुन तो समिया सूरजमुखी चो बूटा घाम खुबे भाए से जुगे सीत की छाणुन बाती आमी सपाई समिया ने एचो कमानी करूक लाए सकू। जेट बेरा काजे जनवरी चो तीसर हफ्ता ले धरुन बाती फरवरी महीना चो सरासरी तक आमी के कमानी करूक लाए सकू। बुन तो पहिल बीच के 12 से 14 घंटा पानी ने भिजान बाती संगातो रहा तेबे निकरान बाती बुन तो रहा। बीज ने हो तो रोग काजे 1 किलो बीज के थायरम 2 ग्राम नहाले वाविस्टिन 1 ग्राम के मिसान बाती उपचार करून बुन तो रहा। पाउडरी मिल रही जोन थाने खुबे दखा दे से जाले बीज के 6 ग्राम मेटालिक्स 1 किलो बीज जो हिसाब ने उपचार करतो रहा। शीत बेरा बुनतो होलो ने धाड़ी ले धाड़ी 60 से धरुनबाती 70 सेंटीमीटर और चमास और जेट बेरा बुनतो होले ने 45 से 50 सेंटीमीटर ओसार रतो रहा और बूटा ले बूटा चो जोन ओसार आए 25 से 30 सेंटीमीटर रतो रहा और बीज के 4 से धरुनबाती 5 सेंटीमीटर गड़िया नसन रपतो रहा। असनीची सूरजमुखी ने पहल सिंचाई बुनलो 30 से 35 दिन और दूसर सिंचाई फूल एतो समय ने करतो रहा है। पानी देतो बेरा जुगे होली जाले भूई चो ओलकमा के दकुन बाती तीसर हर पानी देते रहले जोन फूल फूलुन बाती सूरजमुखी चे जोन फूल भीतर दाना मन बनते रह दे उसन समय ने देते रहे से। संगे संगे सूरजमुखी कमानी कर लेने खत और उर्वरक बल लागे से। सूरजमुखी काजे 80 किलो यूरिया 250 किलो फॉस्फोरस 33 किलो म्यूरेटा ऑफ पोटास 20 किलो सल्फर अड़ी एकड़ चो हिसाब ने लागे से। सफाई खत के 2 भाग करुन बाती पहल भाग के बुनतो समय ने देतो रहा और जो बाचलो बीती दूसर भाग आए उनके फिर 2 भाग करुन बाती 30-30 दिन चो आड़ ने देतो रहे से। संगे संगे अमी कई बोले फसल कमानी कर लेने लाटा बूटा होए से। अकर तो पहल एलाक्रोल नहाले एडी मिथाइल 1.50 बोले ने 1.5 किलो असन दवाई के 600 लीटर पानी ने घोरुन बाती अड़ी एकड़ चो हिसाब ने छिछले ने लाटा बूटा कम हो दे। सोयाबीन संगे सूरजमुखी बल्ले ने 2:1 और राहर संगे सूरजमुखी 3:3 बल्ले ने बराबर बराबर कमानी करूक लाए सकू। असन कर लेने काय हो दे कि आमके अच्छा उपजन बल्ले मिरे दे और संगे संगे 2 फसल चो लाभ बल्ले मिरे। फूल फूल तो समय कहीं बोले कीटनाशक दवाई के नीचे तो रहा है कसन बल्ले ने फूल ने ओंडार मोसी नहाले दूसर पिलपिली नहाल जो दूसर बल्ले कीड़ी उन बाती ये फूल ले धरुन बाती उन फूल ने बसे से उसन बेरा फूल चो पराकरण होए से और बीज बनुक लाए मुरियाए से। तो असन समय ने ध्यान दे तो रहा कि आमी कहीं बोले कीटनाशक दवाई चो उपयोग नहीं करूँ। असनी चीज सूरजमुखी चो सूरजमुखी के जुगे करून तेल काजे कमानी कर सो और आम के अच्छा किस्म के कमानी कर लेने उनके बीक लेने अच्छा तेल बोले मिरे दे। कोटोक किस्म आए CO2 ये जो पाक तो समय 90 से 95 दिन आए और ये जो उपजन मिरे से अड़ी एकड़ जो हिसाब ने 16 से 18 क्विंटल और ये जो किसान ने तेल जो जो मात्रा रहे से बल्ले ने 38 से 40% असन रहे से। देखे एक किस्म के आमी सितकार और चमास बेरा कमानी करूक लाए। बोटोक किस्म है मार्डन पाक तो समय 80 से 90 दिन हो से और ये जो उपजन बल्ले 12 से धरुन बाती 15 क्विंटल असन अड़ी एकड़ जो हिसाब ने मिरे से और ऐसे थाने बल्ले तेल जो जो मात्रा रहे से जो बीच ने 38 से 40% असन और एक आमी तीनों समय ने बल्ले ने चमास बेरा सितकार बेरा और जेट बेरा कमानी करूक लाए। उसनी ची गोटोक DRS F108 ये जो पाक तो समय बोले 90 से 95 दिन है और ये जो उपजन बोले अड़ी एकड़ जो हिसाब ने 12 से 15 क्विंटल असन मिले से और ये जो थाने जो तेल जो मात्रा रहे से 40 से धरुन बाती 42% तेल रहे से जो बीचा ने और ये जो जो कमानी आए आमी सफाई समय करूक ले सकू जेट बेरा शीतकार बेरा और चमास बेरा। उसने ची संकर किस्म जो उनके हाइब्रिड किस्म बोलो से पोटोक हो से ज्वालामुखी ये 95 से 100 दिन जो भीतरे पाकुन बाद तैयार हो से और उपजन दे से 24 से 30 क्विंटल असन और ये जो बीच ने तेल जो मात्रा रहे से 40 से 42% असन रहे से आरे के बोले आम शीतकार बेरा और चमास बेरा कमानी करुक लाए सकू। उसनी ची गोटो को से के बी एस एच एक किसम बोले 90 ले 95 दिन ने पाकुन बाती तैयार हो से और ये उपजन हो से 24 ले 30 कुंटल तक अड़ी एकड़ हिसाब ने और ये बीच ने तेल चो मात्रा रहे से 42 ले 45 प्रतिशत और एक बोले आम तीनों समय ने बल्ले ने शीतकार बेरा जेड बेरा और चमास बेरा कमानी करुक लाए सकू।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि सामयिक की बेड़ा खड़ा चुगोट। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 1:10 हुए हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी शीबा सिंह का स्नेहिल अभिवादन, नमस्कार। कागज के इन पन्नों पर जज्बात बहुत गहरे हैं। आपकी फरमाइशियों के ये खत कितने प्यारे हैं। चलिए इन शब्दों की खुशबू को महसूस करते हैं। और आपके भेजे हुए इस खत को पढ़ना शुरू करते हैं। आइए श्रोताओं, इन्हीं बातों के साथ हमें सबसे पहला खत लिखा है, ये है ग्राम लुहेंडी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। आप हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, दिव्यांशी, रिया, रेनू, रेनिका और समस्त यादव परिवार के सदस्य। अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से आप हैं चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर, तन्वी गौहर। धान मोहला पन्ना मध्य प्रदेश से आप हैं कौशल किशोर मट्टू, संगीता हर्षित एवं वैभव मट्टू। भटिंडा रोड डबवाली से आप हैं राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित। अंडगांव से आप हैं किशोर धूले, वंदना, शिवानी, आशीष धूले। बुलंदशहर से आप हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज फरदीन। दरभा से रामधर कश्यप, मनीष कटरम, उदय नाग, उदय ठाकुर। तोकापाल से विश्वेश्वर भुआर्य, चारामा से नरसिंह थापा, बीर सिंह थापा, सोनूराम ठाकुर। लोहंडीगुड़ा से आप हैं मोतीराम मौर्य, दुखुराम, चंदन नाग, हरीश, मनीष, रामधर। धमतरी से रामचंद माखीजा, शंकर लाल माखीजा, राहुल माखीजा। उज्जैन से आप हैं विनोद मुड़त, नेहा मुड़त, दीपक, मयंक, चेतन नाहटा, दीक्षा, कुश, दिलीप सिंह। खंडवा से अनिल विचुलकर, मंगला विचुलकर, शोभित विचुलकर। मोहदी से आप हैं नारद साहू, हेमलता साहू, पवन, खुशबू। नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश, दीपेश। महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मनीष, सतीश वैष्णव, रीचा, गायत्री, वैभव। महोबा से ही आप हैं उदयभान पाल, दीक्षा पाल, जय हिंद, प्रतीक्षा, विमलेश। दिल्ली से मदन चक्रवर्ती, राजेंद्र चड्डा। बंदरकत से आप हैं जगदीश जोहरी, पूजा जोहरी, जैनिश। गाछी से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। कैदीमुड़ा रायगढ़ से आप हैं पुरुषोत्तम सिंह, उषा, प्रियंका, पूजा, लीलू, रितु, ऋषभ। मोवा से गोपेंद्र कुमार साहू, मंजू साहू। भंडार सिवनी से आप हैं सुभाष सिंह चक्रधारी, कविता, मुस्कान, अनुष्का। रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा, विविधा। भाटापारा से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला। हमीरपुर से आप हैं रामशरण, विश्वकर्मा, साहिल, संजू, रंजना, वंदना, प्रियल, दिव्यांशी, विश्वकर्मा। सरगुजा से आप हैं रामचंद गुप्ता, पांडे राम, राजवाड़े। बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन, परवीन, हिना, रोजी, परवीन, बिट्टू। दुबिहा से प्रतीक राय, रोशनी, प्रांजल। रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत, परवीन, मोहम्मद, हसनैन, रजा। दुर्गापुर से आप हैं गजानन येले, नवदीप येले। पंडरिया से दरिया नामल, अनीता मोटवानी। राजनांदगांव से गुलशन साहू, ग्वाला प्रसाद। दलीराजरा से ललित यादव, श्रीनिवास, सुरेश नागवंशी, पुनीत सेन। कातियापारा जूना बिलासपुर से आप हैं सुशील देवांगर, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, मोनू, सोनू, कान्हा, आदित्य। चाटीडी से आप हैं गंगा देवी, देवांगन पूनम, धनेश्वरी, मिल्की, मीनाक्षी, निधि। लोरमी गोल बाजार से आप हैं संतोष कुमार सोनी, खिलेश, सुनीता, पीहू, दानिश, छोटी, दीक्षा, नेहल, संजय, पूजा, रमा रावी। टीकमगढ़ से इंद्रपाल सिंह राजपूत, देवी नारायण, चंद्रपाल सिंह, उम्मेद कुंवर। भाटापारा से अमृता यादव, पार्वती, ईश्वरी, लक्ष्मी, प्रेरणा, डिम्पी। खंडवा से अब्दुल रहमान डाबर, अब्दुल कादर, अब्दुल रशीद खत्री। बिलाईगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्पल देवांगन। धमतरी से कोमल सेन, तोषण सेन, पिंकी सेन, रीमा सेन। अकोला महाराष्ट्र से आप हैं सदानंद मधुनकर, सुशीला। रानीगांव नगरी से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा, शुभम सेजल साहू। खंडवा से विजय महोबिया, संजय, विवेक, कविता, सपना, विशाल सलोनी। बाड़मेर से बलदेव दामोदर, अरुणा, अनामिका। भाटापारा से बचकामन, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर। राजनगर मधुबनी से आप हैं नवीन सिंह, ज्योति, श्वेता, ख्याति, चुलबुल रानी। भटिंडा से आप हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक। सूरजपुर से मानिक्रम प्रजापति, जानकी, घनश्याम, रत्नेश। संबलपुर से आप हैं फागुराम यादव, ज्योति, ओजस्वी। धनोरा से इसी गीत को सुनना चाहा है पूनम नायडू। श्रोताओं, आप सब ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आरजू का ये गीत। गीत लिखा है हजरत जयपुरी ने और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने। तो लीजिए सुनिए, पेश है आपकी पसंद का ये गीत।

नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में आप सबने सुनना चाहा है समीर का लिखा गीत। आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की। फिल्म का नाम है राजा और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सब। ग्राम छिंदडी पुजारीपारा जिला कोंडागांव से आप हैं सेतुराम यादव चक्रधारी, मंगतीन चक्रधारी, आशीष कुमार चक्रधारी, अस्तिका चक्रधारी, बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश से आप हैं संतोष कुमार राव, भारती बेलाबाई, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह, शुभम विश्वकर्मा, अरुण विश्वकर्मा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं आप सब। डोंडी लोहारा संबलपुर से आप हैं गौतम, उर्वर्षा, डामीन, अक्की, डोमनलाल कोठारी, अर्जुंदा बालोद से हैं दिनेश यादव, साधना यादव, मंचुआ से आप हैं रिंकू रावटे, अयांश रावटे, जामठी से आप हैं ग्राम जामठी, अमरावती से आप हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री वैष्णवी, चंचल, अर्जुन, धीरज, बालोद से आप हैं भंतुराम यादव, चित्ररेखा, साहिल, शिवम, केशव, माधव, राकेश, रितेश, पोषण, नेत्राम, संतुराम एवं परिवार के सभी सदस्य। मयंक रेडियो श्रोता संघ से आप हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। मेघापारा से आप हैं कृष्ण कुमार साहू, धनंजय, मनोज कुमार साहू। उत्तर बस्तर कांकेर से आप हैं प्रकाश तिरसुनिया, विकास तिरसुनिया, मनोहर निषाद। डूमरगांव से आप हैं वली अल्लाह अंसारी, अरमा अंसारी, नाज अंसारी। खंडवा से श्रवण सिंह गिनारे, श्रीनिवास खंडले, सुभाष, राजेश कुमार, मंदा, अंजलि, संदीप। खंडवा से ही आप हैं दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता, गौरव, राधिका, दीपिका। राजनांदगांव से छग्गर राम साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम साहू, पूजा देवी, लल्ला, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से आप हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, मनमीत जीएस रामगढ़िया, मनविंदर पांधा, गोलू काकू। खरगोन से आप हैं ध्रुवास सोनवाड़े, सुनीता, आशीष, खुशी, प्रियांशी, पूनम, कृष्णा, शुभम। हिंगोली से आप हैं रामचंद इंगोले, सिद्धांत इंगोले, रिंकू, रमाबाई, सुरेंद्र, मयूरी, सुरभि, मंजूषा, गौतम। अशोकनगर से आप हैं पार्वती, सखाराम, दीपाली, राजू, रोहित, सोनू, मोनू। भाटापारा दतरेंगी से आप हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। मोवा से आप हैं भाईकारी राय, मीनाकारी, पुंजराज, आर्यन, आरती, आकर्षण, जयश्री, पिंकी, रिंकी, नीतू। महोबा से देवीदीन अहिरवार, सुनीता अहिरवार, दिनेश, कपिल, पूजा। हटरी चौक बिलाईगढ़ से आप हैं खीकराम देवांगन, रेनू देवांगन, योगेश शारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि। आप सब हैं राजनांदगांव बनभघेरा से। बेलरगांव सिहावा से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु, अंकित देवांगन। लवन से भूधर प्रसाद वर्मा, घनश्याम, गुलशन, शिवकुमारी, हेमलता, वेद किरण। पन्ना से कौशल किशोर मट्टू, हर्षित, वैभव मट्टू। जालौन से दीपक गुर्जर, सत्यम गुर्जर, अंशराज गुर्जर। उदयनगर से मोहित रत्न पारखी, स्वाति मिष्टी, मनस्वी रत्न पारखी। हमीरपुर से आप हैं मनीराम पाल, मलखाल सिंह पाल, सुधांशु, नवेदिता, प्रांशी, ज्योति, मानसी, सुदीपा, सुशीला। अकोला से आप हैं रमेश कटनकर, वैशाली। उमरखेड़ से अभिजीत गंवाड़कर, सरिता, सिद्धांत। दौलतबाग से आप हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम, जुनैद अब्बासी। कांकेर से नरसिंह थापा, बीर सिंह थापा। दिल्ली मेरीगेट से आप हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। महोबा से शिवनारायण, अनुज गुड्डी, देवनारायण, अंकुश, लक्ष्मी, मोहित, प्रीतु, नीतू, विनय, सत्या, मोहिनी, पवन। मलोट से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर। देवास से प्रकाश चंद जसवानी, पंकज जसवानी, सनी जसवानी। नवागढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। लोरमी से राजकुमार साहू, लवकुश गौरी साहू। झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसू तासू, अनरव आनंद, सत्यंत आनंद।
खंडवा से ही संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र, सनमति पंचोलिया। बिलासपुर से आप हैं छनूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा, रजन साहू, सुशील देवांगन, शशिकला शायर। सोनीडीह से आप हैं सुब्रत चौधरी, अनीशा, नीलू, मेघ, वंदना कुमार। तो लीजिए सुनिए आप सबकी अनुरोध पर फिल्म राजा का ये गीत।

इसी गीत को सुनना चाहते हैं। सोनाडीह से आप हैं सुब्रत चौधरी, अनीशा, नीलू, मेघ, वंदना कुमार। उमरिया से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई। इंदौर से आप हैं संतोष, रघुवंशी, शोभा, भूपेंद्र, बबीता, विक्की। फतेहपुर से आप हैं रोहित सिंह यादव, बेटा यादव, अंगद, आयुष, आर्यन, आदर्श। महोबा से आप हैं सुरेश कुमार सैनी, प्रीति राज, दिनेश कुमार सैनी। बुल्ढाना से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मंजू बाबा, आरएस, आयज, अनम। अमरपुर पेंड्रा से हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा, लवी श्रीवास्तव। इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले। सुपई से आप हैं देवेंद्र ताती, राकेश ताती, निशा प्रकाश, देबेन जीत।

गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, स्वर दिया है लता मंगेशकर ने और फिल्म का नाम है शारदा। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी। गन्नौर से आप हैं हरवेश कश्यप, अरजीत, दिव्यांश कश्यप, गायत्री। भाटापारा से देवेंद्र कुमार साहू, लक्की, हर्षित, सुमित्रा। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, नवनीत, पप्पी भाटिया। साकरगांव से आप हैं रघुनाथ नारे, पुष्पाताई नारे, श्रीधर नारे, मीनल नारे। पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य, लाडो, कोयल, कुनिका, जानकी। पणत से आप हैं गोपाल पाटिल, मंगला बोचे, विष्णु संकेत बोचे। नेवधा से आप हैं सेवक राम यादव, टूपेंद्र कुमार, तुलेंद्र, देव कुमार। खंडवा से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला, गायत्री धंजे। देवास से नवीन वर्मा, बबलू वर्मा। हरदा क्रमांक दो से कमलेश साहू, जितेंद्र, पायल। इंदौर से पूजा, बबीता, शोभा, रेखा, रघुवंशी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, परी, ललिता, गणेश, कार्तिक, नारायण। अनूपपुर मध्य प्रदेश से आप हैं जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी, कृष्णा केवट। मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहनी, सोनी। तरपोंगी से आप हैं संतोष गुप्ता, हितेश, होमेश गुप्ता, लक्ष्मी, प्रतिभा गुप्ता। आदर्श नगर मलोट से आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, सौरभ शर्मा। पिपरिया कबीरधाम से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता, रिमझिम गुप्ता। बनियापारा धमतरी से सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, माही छुटकी। शिवाजी चौक राजीम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य, कृष्ण श्रीवास्तव। सुदामानगर से आप हैं हर्षित, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, मनोहर, सत्यन, सत्यनारायण, प्रभुलाल, बागरी। औरंगाबाद से प्रकाश बोरकांवकर, सुषमा, प्राजक्ता, प्रांजलि, सोहम, सुवर्णा, योगिता। मुंगेली से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता, नितिन, वंशिका दिवाकर। हमारे ये श्रोता हैं लक्ष्मण कुर्राम, प्यारीदास मानिकपुरी, मनोज कुमार साहू, कोमल सेन, राजेश साबले पाटिल। सारंगपुरी उमरगांव से आप हैं दीपक कुमार साहू, अश्विनी बाई साहू, उमाशंकर, ठामेश्वरी रागनी। नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल नीति। फतेहगढ़ से विनोदपुरी, वीपी, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बी के कौशल्या, अनीता, गायन कपूर। सनावत से आप हैं यूनुस खत्री, शफी खत्री, इर्दीस खत्री, नूर मीना, इरफान, काशिफ मीना। नागपुर से आप हैं कैलाश प्रसाद शर्मा, किरण शर्मा, आशीष कुमार, अमृता। दतरेंगी से विश्राम, यदु, पार्वती, प्रतिमा, रीना, लक्ष्मी। महासमुंद से जीतू ध्रुव, केवल, छोटी, किरण, खेमू। नांदूरा महाराष्ट्र से आप हैं श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे। देवकी विहार सारनाथ से आप हैं बाबू यादव, मंशा यादव, दुर्गेश, सीमा, अनु, अरुणेश। रायगढ़ से रोहित, जयलक्ष्मी, रिसम, अंश, लक्ष्मी। इंदौर से प्रयाग चौधरी, मालती, गणेश, कार्तिक, संजना परी, ललिता। देवरिया से उदिता विश्वकर्मा, सुजीता। रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। कुरावली से आप हैं रशीद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ। तो लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत।

इसी गीत को सुनना चाहते हैं शांति नगर वार्ड से आप हैं श्रीमती लतिका जॉन, क्षितिज जॉन, श्वेता, रजनीश, मनीषा, ललित यादव, महक यादव, मोहित यादव, जिया, लिया, शारुन। शांति नगर से ही आप हैं श्री जी बी वेस्ट।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
2: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
3: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला पत्र फिर पढ़ते हैं। कार्यक्रम में आप सब ने सुनना चाहा है मोहम्मद रफी का गाया ये गीत, फिल्म है उपहार। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सब। भाटापारा से आप हैं दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी, शुभम सौरभ, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर, आप सब हैं जसपुर उत्तराखंड से। पाठर कावड़ा से आप हैं अनिल बुराडे, उषा, प्राची, धनुश्री, धनश्री। वलरशा से आप हैं सूरज जनी, प्राची, एकलव्य। चुड़ी लाइन मुगेली से आप हैं मोहम्मद ईसा, खातिजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, फातिमा, आफरीन बेगम, अल्ताफ, नीलोफर। हरपुरा टीकमगढ़ से आप हैं उर्मिला, नेहा, प्रेम कुंवर, अंकिता देवी, अविता, आरुषि, अभी, राजपूत। गांधीग्राम से आप हैं प्रवीण सोनी। खंडवा से अब्दुल कादर डाबर, मोहम्मद हमजा डाबर, अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर। नई दिल्ली से रविंद्र छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। नागपुर से नाना डोंगरदीवे, रमाताई डोंगरदीवे, सीमाताई, रीमाताई, राहुल डोंगरदीवे। उज्जैन से गोपाल बागबान, गोविंद सालग्राम,

दशरथ, निजामाबाद से आप हैं, शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, रहीम मुन्ना, शेख वाहन, नूर जहां, शेख इकबाल, कुम्हार हेड़ा सरहानपुर से आप हैं, सैयद मशरूर, अजहर हसन, इब्राहिम नाजिया आफिया, पुणे से पंकज कुमार आर्या, प्रियंका वाड़ोदे, बाबा साहब वाड़ोदे, चंद्र प्रभा वाड़ोदे, बाड़मेर राजस्थान से कृष्ण कुमार डाभी, भूबत डाभी, राधा विक्रम अर्चना डाभी, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, टिकरापारा चारामा से आप हैं, हरिशंकर सलाम, भगवान सिंह सलाम, चैतराम नेताम, शिवराज जैन, राजाराम नगर से आप हैं, राजूलाल अग्रवाल, मधु महाजन, राकेश अग्रवाल, कानपुर से पूनम सिंह प्रांजल, जालौन से आप हैं, सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया, मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा नीतू, धनबाद से अमित कुमार सिंह, प्रियंका सिंह, बेबी समृद्धि, पहलगाम से आप हैं, पीरजादा निजामुद्दीन, कैसर उद्दीम, बालोद से आप हैं, चिंताराम साहू, नर्बदिया साहू, दिनेश कुमार दुलार, उर्वशी साहू, भिलाई से सुशील जैन, कल्पना, सौरभ, शुभम, किशनपुर से आप हैं, आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान, इमरान रजा, चांदनी नाज, रोपड़ से आप हैं, हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, चैतिक बीरक, मीका बीरक। तो लीजिए सुनिए आप सबकी अनुरोध पर मोहम्मद रफी का गाया फिल्म उपहार का ये गीत।

0: तुझको कैसे समझाऊं, तू दीवानी है।
1: इसी गीत को सुनना चाहते हैं मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से आप हैं सोपान तायडे।

अगला गीत आप सबने सुनना चाहा है सलमा आगा की आवाज में, फिल्म है निकाह। गीत लिखा है कमल हसन ने और संगीत रवि का। सुनना चाहते हैं आप सब। मलोट पंजाब से आप हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू जाजोरिया, देवास से मुरालीलाल वर्मा, मनीष, शिवम, सरहानपुर से आप हैं सुरेश नारंग, अंजू नारंग, पथिक सोनाली, किशव, बिसवा से नारायण भाऊ खड़से, ललिता स्वाति चौधरी, प्रयाग चौधरी, तिलदा से हरीश कमल सेतपाल, भूमिका सुशीला दादी, बिहार से संजीव कुमार सिंह, पूजा सिंह, रवि आरती सिंह, अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ज्योति, रियांश गुड़िया ठाकुर, भाटापारा से एमएल यादव, अजय कुमार, अनीता अमीन, गिरीश युवान, ढावेश, डोंडी लोहारा से आप हैं देवशंकर तामुरिया, अजय तुषार तामुरिया, डॉली बेबी पूजा, प्रभा देवी तामुरिया, सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, मंतसा, रमेश गौड़, शादा, बुल्ढाना से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति, आकांक्षा, आकाश, रायगढ़ से शिवकुमार चौहान, संक्रांति चौहान, कोर्दालवन से कलीराम यादव, खेड़ावाही हिंगोली महाराष्ट्र से आप हैं शाहजी वोड़खे, नंदा वोड़खे, बालोद से मंतुराम यादव, चित्ररेखा, शिवम, साहिल, राकेश, रितेश, पोषण, केशव, माधव, नेत्राम, औरंगाबाद से आप हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुदामा, प्राजक्ता, प्रांजिल, सोहम। तो लीजिए सुनिए आप सबकी अनुरोध पर फिल्म निकाह का ये गीत।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में आप सबने सुनना चाहा है फिल्म यादों की बारात का ये गीत। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत आरटी बर्मन का, और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सब। सीतागढ़ी बिहार से आप हैं अकरैन हुसैन, इशरत वसीम, अकरम रुबीना वसीम, आरिज मुजम्मिल, हुमैरा सुमैरा नाज। गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल निशा। हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, सौरभ डूडी। रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम बेगम, परवीन बानो अब्दुल, मोहम्मद अलीम असीम। मगरलोड से पुनुराम साहू, राज तेजस्वरी साहू, राजश्री राजवीर साहू। हरिद्वार से आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। इसी गीत को सुनना चाहते हैं बाजार भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, श्रेया जैन, सौरभ जैन, शौर्य जैन, शुभम जैन। पोषण बंछोर, चंद्र किरण, प्रीति, छाया बंछोर, आप सब हैं ग्राम पहारा अहिरवारा, जिला दुर्ग से। बालोद से आप हैं शिव कुमार, अंगारे, अंजलि, त्रिंबिका, लीना, अंशुमाला, आशुतोष अंगारे। तो लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर फिल्म यादों की बारात का ये गीत।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी के गाए इस गीत के साथ ही आज के फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम श्रोता सुमन से मुझे यानी शिबा सिंह को दे अनुमति नमस्कार। दूरियों को मिटाने का एक पैगाम आया था, दूरियों को मिटाने का एक पैगाम आया था, आपकी फरमाइशों का ये खत हमारे पास आया था। इन्हीं बातों के साथ श्रोताओं आज के कार्यक्रम से मुझे दे अनुमति।

0: उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधान मंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में सीबीएसई द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धनशोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
3: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
5: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।
3: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
7: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है, 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है, आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
1: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं, इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
8: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, अपनों के बिना अधूरी लगती है।
3: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
2: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
3: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
3: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
2: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
3: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
2: जी।
3: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
2: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
2: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
3: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
3: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाए जा सकते हैं?
2: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
3: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
2: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं, जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
3: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के किस गांव में पड़ता है?
2: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
3: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
2: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
3: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी

प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: कौए को यूं बुद्धू बनाया, रोटी खोकर कौआ बड़ा ही पछताया।
1: बेचारा कौआ अपनी रोटी गंवा बैठा ना, क्यों भला? क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
4: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: अरे अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवारी गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
1: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
2: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई। उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
3: मंगला
4: हाँ?
3: आह देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
4: ठीक है।
3: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना?
4: हाँ हाँ।
3: उठाकर मुझे दे।
4: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
3: हाँ।
4: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
1: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
3: ये हाँ ऐसे, ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
4: अरे वाह।
3: और ये इसकी पूंछ।
4: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
3: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
4: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
3: अब बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
4: ठीक है।
3: अब बना।
2: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
4: भाई
3: हा?
4: अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
3: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
4: ठीक है।
3: चल चल चल चल, चल।
4: हाँ,
3: हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
4: हाँ, ठीक है,
3: चल,
4: ठीक है।
3: चल, चल, चल, चल, चल, चल।
1: कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
5: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने। देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
2: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी, इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
6: कहाँ है कोच्चू और मंगला है?
7: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था। आप उन पर नाराज होंगे,
0: ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोचू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई, विद्वान नीलकांतन भट्टातिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं। समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।
2: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामास्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
0: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। यह हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
3: रामास्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामास्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
0: रवि
4: जी,
0: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
4: जी।
2: रवि वर्मा यही करने लगे, तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेनसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
0: मिस्टर जेनसन,
5: यस,
0: जब आप चित्र बना रहे हों, तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
5: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा, मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
0: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
3: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेनसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
5: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी, अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
3: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली, लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
2: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा, और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। मोबाइल ऐप पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी हैं। शाम 5 बजे सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज और कल की सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। आज शाम 5:05 पर आप सुन सकते हैं समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल्बी बोली में। शाम 5:10 पर आप सुन सकते हैं युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:30 पर लोकगीतों के कार्यक्रम में सतुलाल और साथियों के गाए गोंडी गीत सुने जा सकते हैं। शाम 7 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम बस्तर के स्वर। शाम 7:21 पर होगा ग्रामीण श्रोताओं का अपना कार्यक्रम आम चुकाओ। रात 8 बजे नानोली कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं रामेश्वर और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत। रात 8:30 पर पीलामन का जिगोट कार्यक्रम में सुन सकते हैं कल्पना चावला पर कार्यक्रम। प्रस्तुति होगी फूल सिंह कश्यप और साथियों की। रात 9:15 पर जीवना जो सोर कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं भेंट वार्ता सोनमती घोष से। इनसे बातचीत करेंगे बलबीर सिंह कच्छ। रात्रि 9:30 पर भेंटघाट कार्यक्रम में राजू राम बघेल और से भेंट वार्ता सुना जा सकता है। भेंट करता होंगे बलबीर सिंह कच्छ। और रात 10 बजे कोदो माली कार्यक्रम में कहरू राम और साथियों के गाये गोंडी गीत सुने जा सकते हैं। कल के कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको दे दें। कल सुबह 8:30 पर छत्तीसगढ़ी साहित्य पत्रिका मोर भुइयां आप सुन सकते हैं। सुबह 10 बजे आप सुन सकते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 6:05 पर वंदना में आप सुन सकेंगे भक्ति संगीत। 6:20 पर चिंतन सुना जा सकता है। सुबह 6:25 पर श्री रामचरित मानस का गायन सुना जा सकता है। गायिका होंगी वाणी जयराम, संगीत संयोजक होंगे सतीश भाटिया। 6:35 पर आप सुन सकते हैं कृषि सामाई की बेड़ा खड़ा चुगोट। यही कार्यक्रम दोपहर 1:05 पर पुनः प्रसारित किया जाएगा। 6:40 पर हुलहुली कार्यक्रम में गंडई देवपाड़ आप सुन सकते हैं। वादा कलाकार होंगे रामदास और साथी। सुबह 7:05 पर नमस्कार जगदलपुर के आकर्षण होंगे कार्यक्रम पत्रांकन। प्रस्तुति होगी चंद्र ऋषि ठाकुर की और इस कार्यक्रम का संपादन होगा रूपाली पारई का और होगी फिल्म गीतों की मधुरिमा। सुबह 9 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे रूपक मुंद्रा मांझी। इस रूपक के लेखक होंगे सुभाष पांडे। प्रस्तुति होगी बलबीर सिंह कच्छ की। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से। सुबह 10:30 पर लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में आप सुन सकते हैं नीलू और साथियों के गाय भद्री लोकगीत। दिन के 11 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। 11:30 पर पाड़ में लोकवाद्य धुनों के इस कार्यक्रम में कल आप सुन सकते हैं गणपति कड़ियारी और साथियों के बजाय वाद्य धुन। दोपहर 12 बजे कला और कलाकार कार्यक्रम सुना जा सकता है। 12:30 पर ग्रामीण महिलाओं का अपना कार्यक्रम होगा घर द्वार। दोपहर 1:10 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। दोपहर 2:30 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। शाम 5 बजे हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी। 5:05 पर समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में आप सुन सकते हैं। शाम 5:10 पर युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी सुना जा सकता है। शाम 6:35 पर सुखराम बघेल और साथियों की गाय ध्रुवी गीत आप सुन सकते हैं। शाम 7 बजे कार्यक्रम होगा बस्तर के स्वर। शाम 7:21 पर कल आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। रात 8 बजे शिक्षकों के लिए कार्यक्रम में बाल अवस्था में शारीरिक पोषण और स्वास्थ्य विषय पर वार्ता सुना जा सकता है। वार्ताकार होंगी स्नेहलता दीवान। रात 8:30 पर पीलामन का जिगोट कार्यक्रम में सरदार उधम सिंह पर कार्यक्रम सुना जा सकता है। प्रस्तुति होगी सुकरूराम यादव की। रात 9:15 पर होगा कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। रात 9:30 पर मोचो मंचो गीत कार्यक्रम होगा। ये पत्रों का फरमाइशी कार्यक्रम होगा। इसमें आप सुन सकते हैं विभिन्न बोलियों के लोकगीत। रात 10 बजे पाड़ लोकवाद्य धुनों के इस कार्यक्रम में लोहंडी गुणिन
मातापाड़ और हिंगलाजिन मातापाड़ आप सुन सकते हैं। वादा कलाकार होंगे कालिदास और साथी। ये थी श्रोताओं हमारे केंद्र से आज और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम की 5:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल्बी बोली में।

0: जुहार संगवारी मन, आप मन सुन साथ आप मंचो मन पसंद कार्यक्रम मिघवाणी, और मैं आए आप मंचो कंपियर दोस्त चांदनी पांडे,
1: और मैं आए ममता साहनी। तो संगवारी मन, आज जो आमचो विषय आए खूबे दिलचस्प बीती, मोबाइल गेम्स और युवा मंचो रचनात्मकता।
0: मतलब मोबाइल गेम जो आजी हर युवा चो हाथ ने दखा दे हुआ है, कौन कार रेस खेलते रहुआ है तो कौन टेबल गेम, और कौन तो दिमागी पहले अभी थी गेम मन।
1: लेकिन सवाल ये है चांदनी कि मोबाइल गेम सिर्फ मनोरंजन का जाए क्या कसन, या फिर ये युवा मंचो सोच और रचनात्मकता के बल बढ़ावा है?
0: आले जो ममता, ये विषय ने आजी मूर करवा आमचो गोट बात मन की।
1: हाँ चांदनी, आगे जो पीला मन मैदान ने क्रिकेट कबड्डी पिठूल खेलते दका देते रहोत ने,
0: हाँ
1: अदा एवे जो पीला मन के दख सबले ज्यादा मोबाइल गेम खेलते दखा दी बात।
0: हाँ ममता, समय तो बदलते जाए से मंतर हर बदलाव पूरा तरीका ले गलत नु है। कोनी कोनी मोबाइल गेम असन भले आए जो दिमाग के तेज कर तो काम करवाए।
1: हाँ जसन पजल गेम, रणनीति गेम और का बोलो थन के बिल्डिंग गेम ने,
0: हाँ
1: ये गेम मन ने खिलाड़ी के सोचन समझन फैसला थरू पड़ुआ है।
0: हाँ और यही चीज मन युवा मन चो रचनात्मक सोच के बले मजबूत बना हुआ है।
1: सत्य बोलिस चांदनी,
0: हाँ
1: कितलो गेम ने आप लोग दुनिया बनाक पड़े से,
0: हाँ
1: नया योजना तैयार करुक पड़े से, डिजाइन बनाक पड़े से, और हुंचो ले कल्पना शक्ति युवा मंचो बड़े से।
0: हाँ ममता,
1: हाँ
0: तू के बे मोबाइल गेम खेली सी इसका सन?
1: हाँ हर एक में भात रांत भी थी खेलते रहे जाननी।
0: फिर काय होली?
1: इतलो झपके झपके आर्डर पूरा करते बीते रहे कि निशांग मैं सत्य होटल चलाए ससन लागते रहे।
0: हाँ अच्छा है ममता, कम से कम ती मोबाइल ने तो होटल खोलू रहीस।
1: हाँ सत्य मात्र मजाक ली गुचुन बल्लो ने तो असन गेम मन ध्यान और तेजी के निर्णय धरत क्षमता के बढ़ावा ने।
0: हाँ संगवारी मन, आज कितरो युवा मन मोबाइल गेम ले प्रेरित होन एनिमेशन ग्राफिक डिजाइन और फिर कंप्यूटर कोडिंग बले सीख सोत।
1: हाँ और कितलो पिला मन गेम खेलते खेलते खुद छोटे गेम बनाक सीख सोत, मतलब गेम सिर्फ खेल तो चीज नु आए काई काई सीख तो चो माध्यम बले आए ने।
0: हाँ मांतर हर चीज चो असन एचो बले दूसरा पहलू बले आसे।
1: हाँ सत्य, अगर कोनी युवा घंटों भर लगातार गेम खेले पढ़ाई और परिवार ले दूर हो जाए तो नुकसान भले हो सके।
0: हाँ कोनी कोनी लोग मन रात रात भर गेम खेलते रुवात, हुंचो कारण हुन मनचो नींद स्वास्थ्य और पढ़ाई ने बले खूब भी असर पड़वाए।
1: हाँ और हुंचो कारण रीस और चिड़चिड़ापन बले बढ़ते जावाए ने।
0: हुसन काय?
1: हाँ
0: हुसन आए जाले तो मोबाइल गेम बुरा आदत आए थे ममता।
1: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं चांदनी, असल गोट ये आए कि हुंचो उपयोग कसन करुक सकवा आमी।
0: मतलब अगर आमी सीमित समय तक और सही गेम खेलवा तो फायदा भले हो सके ने।
1: हाँ चांदनी, जसन दिमागी खेल भाषा खेल सीख तो बीती गेम विज्ञान गणित ले जुड़ लो गेम पिला मंचो सोच के बेहतर बना सके ने।
0: हाँ और सबले जरूरी गोट समय तो संतुलन है।
1: हाँ चांदनी, आजकल छोटे पिला मन के दख ने
0: हाँ
1: इतलो तेज होन गेला से कि मोबाइल चो पासवर्ड हारक दकुन सुरता संगक मुरिया सोत।
0: हाँ ममता, और फिर बुलवात कि माँ सिर्फ 5 मिनट 5 मिनट, मंतर हुनी चे 5 मिनट की दल दाए 2 घंटा हो उन जवाय पता ची नहीं चले।
1: हाँ संगवारी मन, मोबाइल गेम के दुश्मन मान तो जरूरत नहीं है, जरूरत आसे तो समझदारी और संतुलन चू।
0: आया बाबा मन के लागे से कि हुन मन पीला मन ले गोट बात करवा और हुन मन के अच्छा सीख मिर तो बीती गेम मन डाउनलोड करवा।
1: हाँ और युवा मन के बले ये समझुक पड़े दे कि असली जिंदगी मोबाइल स्क्रीन ले खूबे ज्यादा खूबसूरत है।
0: हाँ मैदान चो जो दौड़ दोस्त मन चो हसी और परिवार संगे बीतलो समय, ये बले जिंदगी चो जरूरी हिस्सा है।
1: हाँ तो संगवारी मन, आज हमी जान लू कि मोबाइल गेम युवा मन चो रचनात्मकता के बढ़ा सके ने।
0: हाँ मानतर ते भी जब हुंचो उपयोग सही तरीका और सीमित समय तक कर लो ने।
1: तकनीक आमचो मदद का जाए, आमी हुंचो गुलाम बनतो का जे नाई।
0: हाँ तो संगवारी मन, गोड बात तो होते चिरे दे अंदाए बढ़ू आमचो आगे चो कार्यक्रम बाटे।
1: आज जो कार्यक्रम में आमी आप मन का जी धरु नीलू से नए तरह ने चो नया नया गीत ज्ञान ध्यान चो गोट सामुदायिक गीत और वार्ता।
0: तो ममता,
1: हाँ
0: मैं बलते रही कि अंदाए बेर नहीं करूं और मूर करूं आमचो आगे चो कार्यक्रम जोन थाने तुम्हें सुना से नया नया गीत मन।
1: तो संगवारी मन, आज जो आम जो पहल गीता है फिल्म टाइगर जिंदा है ले, ये गीत के आप लोग सुंदर स्वर दिला से आतिफ असलम, संगीतकारात विशाल आव शेखर, गीतकारात इरशाद कामिल, तो या सुनो ये गीत के।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है, जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: काय सुंदर गीत रली ने ममता।
4: हाँ।
3: संगवारी मन असनीची अंदाय तुम्ही अगला गीत सुना से फिल्म भारत ले। ममता।
4: हाँ।
3: ये कुटुक असन गीत आय जोन मया की अलग ही अंदाज ने सांगे से, जोन थाने लफ्ज कम पड़न जाए दे और मया दिल के छून जाए दे।
4: हाँ। संगवारी मन के बदले सुना उन्हें।
3: हाँ।
4: ये गीत के जोन धन स्वर दिला से अभिजीत श्रीवास्तव, संगीतकार विशाल शेखर और गीतकार इरशाद कामिल। तो यह सुनो ये गीत की।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: संगवारी मन एवी तो तुम्ही सुनते रहला जहाला मन तर जहाला ली पहले तो काय सुंदर गीत चलते रहली ने ममता।
3: हाँ चांदनी,
2: तो संगवारी मन गीत गोविंद तो होते चिरे दे मन तर अनायामी सुनवा वार्ता।
3: हाँ तो संगवारी मन आज आमी आप मन का जे वार्ता बले धरु नीलू से ये जो विषय आए पारंपरिक खान पान एवं फास्ट फूड और ये की तुम्ही सुना से पुण्यराज सिंह संगे।
4: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुण्यराज सिंह है और मेरा आज का विषय है पारंपरिक खान पान बनाम फास्ट फूड। भारत के हर राज्य की अपनी अलग संस्कृति, पहनावा, भाषा और खान पान होते हैं। छत्तीसगढ़ भी उनकी अपनी समृद्ध संस्कृति और पारंपरिक भोजन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों का जीवन प्राकृतिक और खेती से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ का भोजन भी प्राकृतिक और पौष्टिक होते हैं। पुराने समय में लोग घर का बना सादा और स्वास्थ्यवर्धक भोजन खाते थे, लेकिन आज के आधुनिक समय में फास्ट फूड का चलन तेजी से बढ़ रहा है। खासकर युवा पीढ़ी पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, मोमोस और कोल्ड ड्रिंक जैसे खाद्य पदार्थ की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में पारंपरिक खान पान और फास्ट फूड दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। एक और पारंपरिक भोजन हमारी संस्कृति और स्वास्थ्य से जुड़ा है, वहीं दूसरी ओर फास्ट फूड आधुनिक जीवन शैली का प्रतीक बन गया है। इन दोनों बीच तुलना करना आवश्यक है ताकि हम समझ सके कि हमारे स्वास्थ्य, समाज और संस्कृति के लिए कौन अधिक लाभदायक है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ धान की खेती बहुत अधिक होती है। यहाँ के भोजन में चावल का विशेष महत्व है। पारंपरिक भोजन सरल, पौष्टिक और घर में उपलब्ध सामग्री से बनाया जाता है। पारंपरिक भोजन के प्रमुख प्रकार हैं। पहला, बोरो भासी। यह छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक भोजन है। इसमें रात के बचे हुए चावल को पानी में भिगोकर सुबह खाया जाता है। इसे प्याज, हरी मिर्च, अचार या चटनी के साथ खाया जाता है। गर्मी के दिनों में यह शरीर को ठंडक देता है और पाचन के लिए अच्छा माना जाता है। दूसरा है चीला। इसे चावल और दाल के घोल में बनाया जाता है और भाप में पकाया जाता है, इसीलिए इसमें तेल कम होता है। यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। इसे लोग नाश्ते के रूप में खाते हैं। तीसरा है फरा। फरा चावल के आटे से बनने वाला व्यंजन है। इसे भाप में पकाया जाता है, इसीलिए इसमें तेल कम लगते हैं। चौथा है अलंकार रोटी। यह मोटी रोटी होती है जिसे मिट्टी के चूल्हे में पकाया जाता है। इसे दाल, सब्जी या चटनी के साथ खाया जाता है। पांचवा है ठेठरी और खुरमी। यह छत्तीसगढ़ के पारंपरिक नाश्ते हैं। त्यौहार और विशेष अवसर पर इन्हें बनाया जाता है। छठा है आमता। यह बस्तर का एक विशेष खट्टा सब्जी है जिसे बांस के कोपलों और स्थानीय मसालों से बनाया जाता है। सातवां है देसी सब्जियां और चटनियां। छत्तीसगढ़ में लाल भाजी, बुहार भाजी, करमत्ता भाजी, अमारी भाजी, खेक्सी, कोचई पत्ता, रखिया बड़ी, सहजन आदि देसी सब्जियां खाई जाती हैं। पारंपरिक भोजन में प्रोटीन, विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह शरीर को ऊर्जा देने के साथ बीमारियों से भी बचाता है। यह भोजन सस्ते होते हैं क्योंकि इनकी सामग्री स्थानीय स्तर पर उपलब्ध रहती है। यह भोजन छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दर्शाता है। इससे मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियां कम होती है। वहीं फास्ट फूड वह भोजन है जो जल्दी तैयार होते हैं और तुरंत खाया जा सकता है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोस, फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स, चौमीन, कोल्ड ड्रिंक और पैकेट वाले स्नैक्स। आज शहर के साथ साथ गांव में भी फास्ट फूड की दुकानें तेजी से बढ़ रही हैं। पहले छत्तीसगढ़ में लोग अधिकतर घर का भोजन खाते थे, लेकिन अब आधुनिक जीवन शैली के कारण फास्ट फूड लोकप्रिय हो गया है। इसके प्रमुख कारण हैं, शहरों के विकास के साथ लोगों की जीवन शैली बदल गई है। लोग जल्दी बनने वाला भोजन पसंद करने लगे हैं। काम और पढ़ाई के कारण लोगों के पास खाना बनाने का समय कम होता है, इसीलिए वह फास्ट फूड की ओर आकर्षित होते हैं। फास्ट फूड मसालेदार और स्वादिष्ट होते हैं, इसीलिए बच्चे और युवा इसे अधिक पसंद करते हैं। टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया पर फास्ट फूड का प्रचार युवाओं को प्रभावित करता है। युवा पीढ़ी इसे फैशन और आधुनिकता से जोड़कर देखती है। आजकल जन्मदिन, पार्टी और घूमने फिरने में फास्ट फूड का प्रयोग अधिक होने लगे हैं। फास्ट फूड के नुकसान। फास्ट फूड में तेल, नमक और चीनी की मात्रा अधिक होती है। इससे मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, पाचन संबंधी समस्या, मधुमेह और हृदय रोग जैसी समस्या बढ़ती हैं। फास्ट फूड में पोषक तत्व कम होते हैं। यह केवल पेट भरता है, शरीर को सही पोषण नहीं देता। बच्चे घर का खाना छोड़कर जंक फूड खाने लगते हैं, जिससे उनका शारीरिक विकास प्रभावित होता है। आज के युवा फास्ट फूड की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं। स्कूल और कॉलेज के आसपास फास्ट फूड की दुकानों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे पारंपरिक भोजन का महत्व कम होता जा रहा है, लेकिन कुछ युवा अब स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। कई लोग बोरोबासी, चीला और फरा जैसे व्यंजनों को सोशल मीडिया पर लोकप्रिय बना रहे हैं। फास्ट फूड पूरी तरह गलत नहीं है। यदि कभी कभी सीमित मात्रा में खाया जाए तो यह नुकसानदायक नहीं होते। समस्या तब होती है जब लोग रोजाना इसे खाने लगते हैं और घर का पौष्टिक भोजन छोड़ देते हैं। इसीलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। स्कूल में बच्चों को पारंपरिक भोजन के लाभ बताए जाना चाहिए। त्योहारों और कार्यक्रमों में देसी भोजन का महत्व देना चाहिए। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक खान पान उसकी संस्कृति, परंपरा और स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरी ओर फास्ट फूड आधुनिक जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम आधुनिकता के साथ अपनी परंपराओं को भी बचाकर रखें। अंत में यह कहा जा सकता है कि स्वस्थ जीवन के लिए पारंपरिक भोजन सबसे अच्छा आधार है, जबकि फास्ट फूड केवल स्वाद और सुविधा तक सीमित है। धन्यवाद।
2: संगवारी मन एबी तुम्ही सुनते रला स्वार्ता पुण्यराज सिंह संगे और इचो विषय रली पारंपरिक खान पान और फास्ट फूड। ए थाने तुम्ही सुनलास कि ये कितरो अच्छा ले छत्तीसगढ़ चो पारंपरिक खान पान मन के सांगला और फास्ट फूड ले हो तो बीती नुकसान मन के सांगला।
3: हाँ चांदनी, जैसे नाम चलगे बे मंडिया पिच खूबे हो इसने।
2: हाँ तो संगवारी मन अगला गीत तुम्ही सुना से फिल्म केदारनाथ ले। ये फिल्म केदारनाथ ने 2013 ने होरो बीती त्रासदी चे उपले बनली से।
3: और ये गीत के स्वर दिला से अमी सब जो पसंदीदा गायक अरिजीत सिंह और निकिता गांधी, संगीतकारात अमित त्रिवेदी और गीतकारात अमिताभ भट्टाचार्य। तो यह सुनो ये गीत की।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: संगवारी मन, आमी आप मन का जे ज्ञान ध्यान चो गोट बले धरुने लुसे, हुनके बले सुनो, और ज्ञान ध्यान चो गोट ने धर लुसे अंतरिक्ष।
3: हाँ, सूर्य, सूर्य गोटुक तारा है, आमी जोन बेर के रोजी दखु से हुन गोटुक बिकट बड़े तारा है, हुन चो लगे पृथ्वी चो उजर अमरतो का जे लगभग 8 मिनट 20 सेकंड चो समय लागू है।
2: और चांद, चांद ने हवा नी रहुआ है, चांद ने वातावरण नी आए, हुनी का जे हुता हवा नी चलुआ है, हुनी कारण ले हुता आवाज।

0: बोले सुनाई नहीं दे हुआ।
1: बृहस्पति बृहस्पति सबले बड़े ग्रह आए। आम जो सौरमंडल जो सबले बड़े ग्रह बृहस्पति आए। हुन थाने लगभग 1300 पृथ्वी समाक सके।
0: अंतरिक्ष अंतरिक्ष ने गुरुत्वाकर्षण खूबे कम रुआ है। हुनी का जे अंतरिक्ष यात्री हवा ने पोहर लो असन दखा दिवा।
1: शुक्र शुक्र ग्रह सपाले गरम गरम ग्रह आए। सूर्य जो सपाले लगे बुध ग्रह आसे। मंत्र सपाले गर्म शुक्र ग्रह आए।
0: लेकिन हुंचो कारण ये नु आए कि हुंचो वातावरण गर्मी फैलून जावे।
1: हाँ तो संगवारी मन ये तो रली ज्ञान ध्यान चुगोट अदय आमी आगे बढ़ू सामुदायिक गीत वाटे।
0: सामुदायिक गीत ने तुम्ही सुना से कन्नड़ भाषा ने और एचो बोलाए डोडास रंगे गौदा तो इया सुनू ये सामुदायिक गीत के।

संगवारी मन एबे तुम्हें सुनते रहला सामुदायिक गीत कन्नड़ भाषा ने अदाय फिर बढ़ू आम चो गीत गोविंद बाटे। अगला गीत तुम्हें सुना से फिल्म सिंग इज किंग ले, स्वर दिला से राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल, संगीतकार प्रीतम और गीतकार मयूरपुरी। तो या सुनू ये गीत के।

संगवारी मन, अगला गीत तुम्ही सुना से फिल्म शादी में जरूर आना ले। स्वर दिला से यासर देसाई और आकांक्षा शर्मा, संगीतकार आत और संगीतकार और गीतकार आत आर को, तो या सुनुए गीत के।

0: संगवारी मन आज आमी गोठियालु मोबाइल गेम्स और युवा मंचो रचनात्मकता चो बारे ने।
1: हाँ चांदनी, आजकल तो सपाए चीज मोबाइल ने ची होइसे ने।
0: हाँ
1: तो संगवारी मन आम जो जातो समय बोल होली से अदाय आम के दिया बेबीदा मैं आए ममता साहनी
0: और मैं आए चांदनी पांडे। आमी दोनों करु से युगवाणी सुन तो सपाए संगवारी मन के जुहार।

0: आप सुन रहे थे युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: सशस्त्र कैडरों से भिड़ते हुए उन्होंने जैसे ही कैडर को रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर के साथ लैस खतरे को देखा तो वे रेंगते हुए आगे बढ़े और सशस्त्र कैडर को मार गिराया। असाधारण वीरता एवं अद्वितीय नेतृत्व के लिए मेजर अर्शदीप सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर अर्शदीप सिंह
2: अद्वितीय वीरता और असाधारण नेतृत्व के लिए मेजर अर्शदीप सिंह इस वक्त राष्ट्रपति के सामने अपना कीर्ति चक्र ग्रहण करते हैं।
3: Moments like these will be remembered by one and all present here and around the country. Group Captain Prashant Balakrishnan Nair.
1: Air Commodore Prashant Balakrishnan Nair एक योग्य उड़ान अनुदेशक तथा एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हैं। ये भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक है। इनको एक्सियोम 4 मिशन में एक स्टैंडबाय मिशन पायलट के रूप में चुना गया था।
4: केंद्र बिंदु में रहा।
5: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
5: गरीब और वंचित के उत्थान का सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
4: भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर खेद व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर

0: सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। बम्बई शेयर बाजार का समिति सूचकांक आज 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 244 अंक की गिरावट के साथ 23,123 पर आ गया। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्डिफ में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 180 रन का लक्ष्य दिया है। वेस्टइंडीज ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 75 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6:05 हुए हैं।

0: मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6:10 होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ी में समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार, प्रधानमंत्री है गरीब मन के हित में सरकार के 12 बच्छर के विकास यात्रा ला करे है रेखांकित। गरीब कल्याण और वंचित वर्ग मल्ला ए बदलाव के केंद्र बिंदु में राखेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में जवान मल्ला दिन वीरता पुरस्कार, छत्तीसगढ़ के 3 जिन जवान घलो शामिल। और मौसम विभाग हवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कोनो कोनो जगह में जोरदार हवा गरेर के संग वर्षा होए के देहे चेतावनी। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है गरीब मन के हित में सरकार के 12 बच्छर के विकास यात्रा ला रेखांकित करे है। प्रधानमंत्री है आज गिन कि ये दौरान देश है कतकोन बदलाव के साक्षी बने के संगे संग गरीब कल्याण और वंचित वर्ग मल्ला ए बदलाव के केंद्र बिंदु में राखे गये है। उमन किहिन की अंत्योदय जम्मू बेरा सरकार पर प्रेरणा स्रोत रहीस और प्रयास रहीस कि विकास के फायदा पाछू छूटे लोगन मन तक पहुंचे। प्रधानमंत्री हकीन की जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसन हर पहल के उद्देश्य लोगन मन पर गरिमा और मौका देवाना हवे। प्रधानमंत्री हकीन कि गरीब और वंचित मन के उत्थान के संकल्प सबका साथ सबका विकास के मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब के सेवा ओकर जिंदगी में बेहतरी के संगे संग देश के विकास यही सब सरकार के सबले बड़का प्राथमिकता रहीस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हां आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में जवान मल्ला वीरता पुरस्कार दिन एमा छत्तीसगढ़ के 3 जिन जवान घलो शामिल है। असम राइफल में पदस्थ जवान भोजराम साहूला मणिपुर में आतंकी मन के संग मुठभेड़ में साहस और वीरता पर शौर्य चक्र ले सम्मानित करेगी। तो उन्हें छत्तीसगढ़ में नक्सल अभियान के दौरान बड़का भूमिका निभैया पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर देशमुख लखलो शौर्य चक्र ले सम्मानित करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए है 21 जून के हुआ नीट यूजी पुनर्परीक्षा पर परीक्षा मन के शहर के सूचना जारी कर दे है। पंजीकृत उम्मीदवार मन आधिकारिक वेबसाइट में लॉगिन करके अपन परीक्षा शहर के जानबा ले सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 बच्छर पूरा होए के मौका में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है काली ले राष्ट्रव्यापी समारोह के शुरुआत करी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा है उद्घाटन समारोह के अध्यक्षता करी। ए मौका में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मन में जागरूकता और जनसंपर्क अभियान चलाया जाही। जानबा के मुताबिक प्रधानमंत्री है 9 जून 2016 के ए अभियान के शुभारंभ करे रहीन। एमा गर्भवती माई लोगिन मल्ला मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा दे जाते। देश के विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी है आज अपन 90 बच्छर पूरा होए के उत्सव मनावत है। बच्छर 1936 में आजे के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस के नाव बदल के ऑल इंडिया रेडियो राखे रहीस। बच्छर 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के नावला बदल के आकाशवाणी करेगी। आकाशवाणी हां आज 591 रेलवे स्टेशन मन के संचालन करत है। समाचार एक बार सुन लो। आकाशवाणी हां आज 591 रेडियो स्टेशन मन के संचालन करत है। आकाशवाणी के प्रसारण 23 ठिन भाषा और 146 बोली में करे जाते। आकाशवाणी के ध्येय वाक्य हवाए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह के मौका में रायपुर में आज विशेष प्रदर्शनी और व्याख्यान कार्यक्रम हुई। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय के 8 गैलरी में एक विशेष प्रदर्शनी में ऐतिहासिक दस्तावेज और अभिलेख मन के छायाचित्र दिखाएगी। प्रदर्शनी रोजे बिहनिया 11 बजे ले संझा 5 बजे तक आम लोगन मन पर खुला रही। तो उन्हें 9 जून के अभिलेख मन के संरक्षण और ओखर महत्ता ऊपर विशेष व्याख्यान राखे गये है। कार्यक्रम के उद्देश्य ऐतिहासिक धरोहर मल्ला सहेज के राखे के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। प्रदर्शनी 12 जून तक चली। संस्कृति विभाग डहर ले सरगुजा संभाग के उदयपुर और लखनपुर में आज ले आकार 2026 पारंपरिक औ शिल्प और कला शिविर आयोजित करे जाते। 14 जून तक चलैया ए शिविर में युवा मल्ला 14 ठिन पारंपरिक कला विधा के प्रशिक्षण दे जाही, जेकर उद्देश्य लोक कला और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण के संग नवा पीढ़ी मल्ला सांस्कृतिक विरासत ले जोड़ना है। प्रशिक्षण अनुभवी कलाकार और कला गुरु मंडहर ले दे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
2: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगु बढ़बो बाजे समाचार को थी। धमतरी पुलिस ने 480 किलो गांजा के संग 5 जिन तस्कर मल्ला गिरफ्तार करे है। जब्त गांजा के कीमत 2,45,00,000 रूपया ले ज्यादा के बताए जाते। पुलिस के मुताबिक मुखबिर ले सूचना मिले के बाद बस्तर ले रायपुर आवत एक ठिन कार और पिकअप गाड़ी के जांच करेगी। इस दौरान ये गाड़ी मन में अब्बड़ मात्रा में सफेद बोरी में ले जात गांजा बरामद करेगी। पुलिस बताइन की आरोपी मन गांजा ला रायपुर और उत्तर प्रदेश में बेचे बर ले जात रहीन। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में हाथी के हमला में 2 जिन लोगों के मौत हो गए है। मिले जानबा के मुताबिक गुरु घासीदास तमोर पिंगला रायगर रिजर्व के देवसील गांव में रद्दा बनाए के काम चलत रहीस। पाछू रतिहा ए मजूर मन काम सिराए के बाद आराम करत रहीन। इस दौरान हुरहा ए हाथी मजूर मन ऊपर हमला कर दिन। हमला में 1 जिन मनखे के मौकच में मौत हो गए तो उन्हें 1 जिन आने मनखे के मौत अस्पताल ले जात खानी हो गए। वन विभाग मामला की जांच करत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काली रायपुर में 36वां राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर काया किंग केनोइंग प्रतियोगिता के मस्कट पहाड़ी मैना के विमोचन करीन। ये प्रतियोगिता 12 ले 14 जून तक नवा रायपुर के सेंध लेक में होही। मुख्यमंत्री विश्वास जतैन कि ऐसा आयोजन ले खिलाड़ी मन ला नवा प्रेरणा दीही और प्रदेश के खेल पहचान ला और मजबूती मिली। हाथी मन के मौत के कारण के वैज्ञानिक जांच, वन्यजीव अपराध के पहचान और संरक्षण जैसन प्रयास ऊपर रायगढ़ में 2 दिन के विशेष प्रशिक्षण रखेगी, जिसमें प्रदेश के 78 वन अधिकारी और पशु चिकित्सा विशेषज्ञ मन भाग लीन। शिविर में विशेषज्ञ मन बताइन कि छत्तीसगढ़ में ए बेरा करीबन 450 हाथी घूमत हुए। रायगढ़, जसपुर, कोरबा और सूरजपुर जैसन जिला में हाथी मन के बाढ़त गतिविधि ला देखत ए प्रशिक्षण रखेगी। विशेषज्ञ मन बताइन कि हाथी मन के मौत के सही जानकारी मिले ले अवैया बेरा में ऐसा घटना मन ला रोके और वन्य जीव संरक्षण के प्रयास मन ला और ज्यादा प्रभावी बनाए जा सकी। ए मौका में वन मंत्री केदार कश्यप कहिन कि आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के माध्यम ले हाथी के संगे संग जम्मो वन्य जीव मन के सुरक्षा ला बने ढंग के राखे के प्रयास सरकार करत है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कोती ले काम करत डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर चेयर शोध पीठ के स्थापना के प्रस्ताव ला मंजूरी दे दी है। डॉक्टर अंबेडकर चेयर के स्थापना ले विश्वविद्यालय में शोध प्रकाशन, राष्ट्रीय संगोष्ठी, कार्यशाला, जन जागरूकता कार्यक्रम और PhD कार्यक्रम ला नवा दिशा मिली। मौसम के हाल। मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कोनो कोनो जगह में जोरदर्धा हवा गरेर के संग वर्षा होए की चेतावनी दे है। इस दौरान करीबन 50 ले 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार ले तेज हवा चल सकते। उन्हें कोनो कोनो जगह में गाज गिरे की संभावना बताए गए है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अवैया 3 ले 4 दिन के भीतर छत्तीसगढ़ में पहुंच सकते, जखर बाद 12 जून ले प्रदेश में बने ढंग ले वर्षा होए की संभावना है। इस बीच आज राजधानी रायपुर के संगे संग कुछ एक जिला में हुरहा मौसम बदलिस और तेज हवा के संग हल्का वर्षा होइस। अब थोरकुन समाचार सार मा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक का काली बिहनिया 11 बजे नवा रायपुर अटल नगर के मंत्रालय में होगी और उप मुख्यमंत्री अरुण साव अपन बस्तर प्रवास के दौरान आज सुकमा में अमृत मिशन ले बनाए जात वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कामकाज के निरीक्षण करीन। संगे संग सबरी नदी ऊपर बनत इनटेक वेल के काम लघलो देखीन। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। प्रधानमंत्री गरीब मन के हित में सरकार के 12 बच्चर के विकास यात्रा ला करे रेखांकित। गरीब कल्याण और वंचित वर्ग मल्ला ए बदलाव के केंद्र बिंदु में राखेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में जवान मल्ल दिन वीरता पुरस्कार छत्तीसगढ़ के 3 जिन जवान घलो शामिल। और मौसम विभाग है भैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कोनो कोनो जगह में जोरदार हवा गरेर के संग वर्षा हो के देहे चेतावनी। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
3: थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।
4: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। इदानीं मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् अन्त्योदयस्य भावनया प्रेरितानां निर्धनजनानां कल्याणम् एव गत द्वादशवर्षेष् शासनस्य नीतिनिर्माणस्य आधारः। पश्चिम बंगाल राज्ये आयुष्मान प्रधानमन्त्री भारत जन आरोग्य योजना प्रवर्तिष्यते। दिल्ली उच्च न्यायालयेन सीबीएसई बोर्ड इत्यस्य द्वादश कक्षायाः उत्तर पुस्तिकानां आंकिक मूल्यांकन प्रणाली विषये अनियमितता सन्दर्भे केन्द्र सर्वकाराय तथा सीबीएसई बोर्ड इत्यस्मै सूचना पत्रं प्रदत्तम्। भारतेन पश्चिम एशिया क्षेत्रे पुनः प्रवृत्तानां आक्रमणानां विषये गभीरा चिन्ता प्रकटिता। आकाशवाणी सेवायाः 90 वर्ष प्रपूरणम्। अपि च क्रिकेट क्रीडायां भारत दलम् अफगानिस्तान दलम् एकेन वारेणैव 300 धावनांकैः पराजित्य स्वस्य बृहत्तमं पञ्चदिवसीय विजयम् अभिलेखितवत्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् अन्त्योदयस्य भावनया प्रेरितानां दरिद्रजनानां कल्याणम् एव गत द्वादशवर्षेष् शासनस्य नीतिनिर्माणस्य आधारः अभवत्। तेन उक्तं यत् अस्मिन् काले भारतदेशः बहूनि परिवर्तनानि अनुभूतवत्, येषां केन्द्रे निर्धनाः वञ्चिताश्च जनाः आसन्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् जनधन योजना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरणम्, स्वच्छ भारत अभियानम्, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन इति तथा आयुष्मान भारत योजना इत्यादीनां मुख्योद्देश्यम् अस्ति यत् जनानां कृते गौरवपूर्णं जीवनम् अवसराणां सुनिश्चयं कर्तुम् अपि आसीत्। निर्धनजनानां जीवनस्तरे स्थितस्य उन्नयने प्रौद्योगिक्याः अपि महत्वपूर्णा भूमिका अभवत्।
5: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
4: अद्य आरभ्य पश्चिम बंगाल राज्य आयुष्मान प्रधानमंत्री भारत जन आरोग्य योजना प्रवर्तित।

मीडियम वेव 396 8.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6:30 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए संतुराम और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत।

आप सुन रहे थे संतुराम और साथियों के गाए गोंडी विवाह गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
4: बंधु, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
5: रुक जा बुद्धू।
6: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
4: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
7: पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
6: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
8: कूल रहो।
9: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
10: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
9: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
10: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
9: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
10: क्यों?
9: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
11: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
12: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
13: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
12: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
13: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
12: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
13: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
11: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
14: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
13: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
14: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
13: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
14: आकाशवाणी से।
11: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
15: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के भोजराम साहू को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल से राष्ट्रव्यापी समारोह की शुरुआत करेगा। और धमतरी पुलिस ने करीब 2.5 करोड़ रूपये के 480 किलो गांजा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
15: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में जवानों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इनमें छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डोरीठेमा गांव के रहने वाले भोजराम साहू भी शामिल हैं। भोजराम साहू असम राइफल्स में राइफलमैन के पद पर हैं। उन्होंने मणिपुर में आतंकियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया था। राष्ट्रपति ने आज उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया।
0: राइफलमैन भोजराम साहू, तीसरी बटालियन आसाम राइफल्स, 15 नवंबर 2024 आप भारत म्यांमार सीमा रेखा के समीप तैनात घुसपैठ विरोधी दस्ते के स्काउट की भूमिका निभा रहे थे। अपनी टुकड़ी को अचानक एक सघन विस्फोट की चपेट में आया देख व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए आप निडरता से आगे बढ़े तथा सटीक निशाने से दो विद्रोहियों को घायल कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच गोली लगने से जख्मी होने के बावजूद आपने एक और विद्रोही को घायल करते हुए उन्हें भागने के लिए मजबूर कर दिया। बाद में तीनों विद्रोहियों के मारे जाने की पुष्टि की गई एवं भारी मात्रा में हथियार तथा गोला बारूद भी बरामद किया गया। अद्भुत वीरता तथा कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। राइफलमैन भोजराम साहू।
15: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल 9 जून से राष्ट्रव्यापी समारोह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता और जनसंपर्क गतिविधियां आयोजित की जाएंगी ताकि गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को अभियान के अंतर्गत उपलब्ध निःशुल्क सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस अभियान का शुभारंभ किया था। इसके तहत गर्भवती महिलाओं और निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूची जारी कर दी है। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हाथियों की मृत्यु के कारणों की वैज्ञानिक जांच, वन्य जीव अपराधों की पहचान तथा संरक्षण संबंधी प्रयासों पर रायगढ़ में 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश के 78 वन अधिकारियों और पशु चिकित्सा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। शिविर में विशेषज्ञों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लगभग 450 हाथी विचरण कर रहे हैं। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि आधुनिक तकनीकों, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के माध्यम से हाथियों सहित सभी वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इस मौके पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण कुमार पांडे भी मौजूद थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। धमतरी पुलिस ने 480 किलो गांजा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 2,45,00,000 रुपए से अधिक आंकी गई है। पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिलने पर बस्तर से रायपुर आ रही एक कार और पिकअप वाहन की जांच की गई। इस दौरान इन वाहनों में भारी मात्रा में बोरियों में ले जाया जा रहा गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी गांजे को रायपुर और उत्तर प्रदेश में खपाने की फिराक में थे। मनिन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में हाथी के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के अंतर्गत देवसील गांव में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। बीती रात श्रमिक काम खत्म करने के बाद आराम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक एक हाथी ने श्रमिकों पर हमला कर दिया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल व्यक्ति ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। वन विभाग मामले की जांच कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह के अवसर पर रायपुर में आज से विशेष प्रदर्शनी और व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय की आर्ट गैलरी में इस विशेष प्रदर्शनी में ऐतिहासिक दस्तावेजों और अभिलेखों के छायाचित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। प्रदर्शनी प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आमजन के लिए खुली रहेगी। वहीं 9 जून को अभिलेखों के संरक्षण और उनके महत्व पर विशेष व्याख्यान आयोजित होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना। यह प्रदर्शनी 12 जून तक चलेगी। संस्कृति विभाग द्वारा सरगुजा संभाग के उदयपुर और लखनपुर में आज से आकार 2026 पारंपरिक शिल्प और कला प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। 14 जून तक चलने वाले इस शिविर में युवाओं को 14 पारंपरिक कला विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य लोक कलाओं और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण के साथ नई पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। प्रशिक्षण अनुभवी कलाकारों और कला गुरुओं द्वारा प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत डॉ अम्बेडकर फाउंडेशन ने दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में डॉ अम्बेडकर चेयर शोधपीठ की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। डॉ अम्बेडकर चेयर की स्थापना से विश्वविद्यालय में शोध प्रकाशन, राष्ट्रीय संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, जन जागरूकता कार्यक्रम, क्षेत्राधारित अनुसंधान और पीएचडी कार्यक्रमों को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर में 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायकिंग केनोइंग प्रतियोगिता के मस्कट पहाड़ी मैना का विमोचन किया। यह प्रतियोगिता 12 से 14 जून तक नव रायपुर के सेंध लेक में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह आयोजन खिलाड़ियों को नई प्रेरणा देगा और प्रदेश की खेल पहचान को और मजबूत बनाएगा। और मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बारिश होने की चेतावनी दी है। इस दौरान करीब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिर सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के अगले 3 से 4 दिनों में छत्तीसगढ़ में दस्तक देने की संभावना है। इसके बाद आगामी 12 जून से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होने के आसार हैं। इस बीच आज राजधानी रायपुर सहित कुछ जिलों में आज दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक कल 9 जून को सुबह 11 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में होगी। उप मुख्यमंत्री अरुण सावंत ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान आज सुकमा में अमृत मिशन के अंतर्गत बनाए जा रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही शबरी नदी पर निर्माणाधीन इंटेक वेल के कार्यों को भी देखा। दुर्ग पुलिस ने जामुल थाना क्षेत्र से एक महिला को गिरफ्तार कर उसके पास से 10 लाख रूपये का मादक पदार्थ बरामद किया है। और राजनांदगांव जिले के ईरा गांव में एक नाबालिग बालिका के स्वास्थ्य परीक्षण में गंभीर लापरवाही बरते जाने के आरोप में राज्य शासन ने खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ एन के टंडन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के भोजराम साहू को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल से राष्ट्रीय समारोह की शुरुआत करेगा। और धमतरी पुलिस ने करीब 2.5 करोड़ रुपए के 480 किलो गांजा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
4: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
5: रुक जा बुद्धू।
6: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
4: तू समझ गई ना, रिलैक्स।
7: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
6: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
8: कूल रहो।
5: थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम होगा।
8: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: हाँ राम राम मिटकी, राम राम।
1: राम राम धर्मु दादा, राम राम।
0: हाँ अमरलीस ने,
1: हाव अमरलेकर।
0: अरे दक आम्ही तो अमरलू ने,
1: हाव
0: याच्या संग संगे आमचो रेडिओ सुनतो दादा दीदी मन बल अमरला होती,
1: हाव
0: तो हुन मन के बल जुआर भेट करू ता। तो बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुनतो सब पाए दादा दीदी श्रियान सजन बूढ़ू बुढ़ाए और माय माता मन के और संग जरूरिया संगवारी मन के मैं धर्मू
1: और मैं मिटकी।
0: आम्ही दोनों करूं से राम
1: राम राम।
0: राम।
1: तो ये गांव चो बड़ू मन के थम जुआर भेट कर लू ने, मांतर पीला मन के बल भूल की नहीं होए।
0: नहीं भूल कम।
1: तो रेडियो कटा कटा बस लो सपा नानी नानी पीला मन के बल हमें दोनों चो बाटले खुब्बे खुब्बे मया ने।
0: तो दक मिटकी
1: हाँ
0: आम्ही दक रोज दिना काई ना लो काई असन ज्ञान ध्यान चो गोट मन के धरून येते रहूं से।
1: हाँ और हम चो रेडियो सुन तो काज का है हम दादा दीदी मन बल टाकू रसोत।
0: टाकू रसोत का है। तो दक असनी कई कसन गोट मन रू आए जेके धरू नाम येते रहूं से।
1: हाँ
0: उसनी आज चो गोट आए कि आम चो जो गांव कारी दीदी माय माता मनासोत
1: हाँ
0: हुन मन चो बाढ़ती काजे असन कई वाट मन रह से हुन काम के आमी करून कसन आपलो उपजन के बढ़ाव सकूं आम चो आपलो आमदनी के बढ़ाव सकूं हुन गोट के आमी आज गोट हाउं दे।
1: हाँ तो जसन की हम चो माय माता मनात ये मन का है कि आज कल का हो से समूह मन हो से ने हुन समूह मन ने काय भिड़ून भाती 10 लोग 12 लोग बल्लो महा आप लोग काई काम बूता करून भाती हुनके बल करुक सकोत ने।
0: सत्य गोट के बल्लिस मिटकी काया कि ये समूह मन के बल सोत एस एस एस एच जी ग्रुप स्व सहायता समूह ने।
1: हाँ
0: तो उसन ग्रुप मन ने काया है कि असन 10-10 मेहरार मन जो ग्रुप बनवाए और होता सरकार बाटले आप लोग विभाग बाटले असन कैक उट मन चले से जोन था ने कि उन मन के लोन बल मिरे से लोन मिरे से और हुन जो लोन के धरून हुन मन आप लोग कायक असन रोजगार के बढ़ोक सको।
1: सत्य बंदिश मातर ये गोट बाट मन तो होते रह दादा ने असने हम चल लगे और नगद गोट मन बले आसे आले एक बल हम चल दादा दीदी मन लगे अमरा दो।
2: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे। एचएस कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा करलो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपरे एवर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेनतो लोग अरु सप्लायर्स चो चीपा गुचे दे एचए संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम भले सरल होए दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर लागे दे ए मन ने काही बदलाव नहीं होली से। बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी 2 चक्का बीती गाड़ी अरु 3 चक्का बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे असन ले ये मन सपाय कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनू रह दे।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और वन सरल बना की तोड़ बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोई लेकिन 18% टैक्स की सी तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता एचएस कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी ना सामान तपोरो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सी तोड़ इत बुताते यू सामान पाड़नोर और सामान तच इयनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओया ना बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी न पर्रो मुन्नीटा लेकिन 1% टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मुंड चक्का ना गाड़ी 1% जीएसटी मौला देने दोर किता अदेन के और सोबेर कम टैक्स ता गाड़ी बने मास मंता।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
0: तो मिटकी
1: हाँ।
0: नगद जाला मन के अभी सुन लू ने
1: हाँ।
0: तो देख आज ही आए भेंट वार्ता दिन
1: हाँ।
0: और ये भेंट वार्ता ने हमचो डॉक्टर साहब डॉक्टर चेतन मरकाम और एक भेंट करता आत
1: जयराम कवासी
0: हाँ। तो ये मंचो कोट के बाले आमी अमरावंत
7: रेडियो किन जन लोड उनकेर दादा दीदी लोड किन नायक जो हार नेंड ना मुन्ने डॉक्टर चेतन मरकाम वत्तोर वेन नन पूछ कीनो ना मलेरिया बीमारी बात लायना तेना लक्षण बाता और तेना उपाय बाता। तो डॉक्टर चेतन मरकाम नि मावा आकाशवाणी तक बात ती तीन में लेनी किन के स्वागत अभिनंदन जोहार
8: मेरे कोंडेड किन ना रेडियो कौन जन लोड किन मी है ना धन्यवाद ये करंगल है नाक नेंड मलेरिया बीमारी तीन के तले के करंग तो मलेरिया बीमारी और पेरासाइट मलेरिया इन दोनों तीन नालू प्रकार का मलेरिया आता मलेरिया पेल्सिपेरा मलेरिया मलेरी मलेरिया ये वाइवेक्स और मनक बस्तर तक मेन कारण है मलेरिया वाइवेक्स और मलेरिया पेल्सिपेरा और पेल्सिपेरा मलेरिया जो है सबले ज्यादा खतरनाक ये बेटे मन कोई तोड़ मलेरिया के तल तक तर कचो नहीं बेटे डोलना बेंडा आता तो मलेरिया बाले वाला आते जो कहते कचो ने अद उन नुल्ले कच के मना के थी तो नुल्ले कच के अग नुल्ले तक मन नो अद बीमारी एर दगाई बेगा याद मलेरिया पेरासाइड मन तयो अद पेरासाइड तीनों मलेरिया माने तक तचीता अस कचन मल लेकिन मलेरिया आता हाँ आज बंडे साइकिल चले मासो मन तक कि उन वहीं माने बेन और बीमारी आता आज बीमारी आत कचने अग वोन मन वोन मलेरिया कच्ची था आत कच कचन बंडे बीमार माने तीन मलेरिया कच तो बो अगटन आज मल आधे नुल्ले गले आवर तो नेलोटन माने तीन एबीसीसी था नुल्ले तक काम आद अच्छोर है पेर के मना और कहती तो नुल्ले कच के बीमारी है तो नुल्ले मतलब कच के कच्ची तो वो माता कटी ना ताना काम है उन माने थी ना और माने था बीमारी थी पहला के लिए
7: हाँ मलेरिया बीमारी आता है
8: मलेरिया बीमारी आता है अच्छो ने आस पास ते बेगेवन कचरा बात बात मत कचो ने एर जम मत कचो ने मन नुल्ले आगे फुटीता गले बीमारी माने था बंडे एबीसीसी था
7: इले तो कोनी मलेरिया बीमारी आयना दिन जो निम कचित्ते डॉक्टर मरकाम अंजे नन्नी किन पूछ की तनिंगा मलेरिया बीमारी आतें जो बाले पुना
8: मलेरिया बीमारी आतें जो कहत कचन सब लोग मुने मने की ना एड़क पैती तो कहीं के नहीं हो तलन होता हाँ पूरा शरीर मतलब मन मेंदुल नो होता उल्टी दस्त आता पोटन होता सुडला पिलाए जो कहत कचन बेहोशी आता हो मन कोई तो कहती तो पूरा टट ले ने रे तिंजोड़े आज बेहोशी आता है अगर सुगर तीन कम किसी तो मलेरिया कच कचन सुगर कम मायना तो अथल तक तरी तुटो मन माने सीध तान ई दिन पुनवला सो
7: सीध
8: पोरोटा रे तिंजोड़ के लिए वेडेड़ा गोतड़ो ई दिले इंजो कहत कचन पुनः आते सीध मलेरिया हिंजोड़े
7: मतु अवर वेंड बीमारी ते इले ते नेड़ की बात बात पोई तता इदिन लेकिन बाले ते सीता की ना आते
8: एक मलेरिया के आत के दिन जो केत के चुन कसुम पुना आता माने वाड़ की तोड़ एड़क पच्चा चुन पेर के इले वाड़ की तोड़ गले एड़क कौन मन ते नके तेजो हाँ बाते तीन और हाँ तीन दवा हो पेयूर कहती था मन कोई तक इंजो कहत कह चुन पेयूर कहती था हाँ पेयूर कहती था डोड तीन दवा हो हाँ ईद ही लेता
7: ईद इले मतलब बीमारी तल लक्षण तोंद कह चुने मलेरिया बीमारी आते जो
8: पुना आता आर मनग सब ल मुनें अगे क्योंकि मन बस्तर तक है मलेरिया सब ले ज्यादा मन मेट नौला मंदन उला बे आई खेती बाड़ी नावन काम की तले आदि सब ते मलेरिया बेगेवन मतलब आओ आए परत आदि सब ते मतलब पुनः आते मलेरिया है जड़े और वन लक्षण आलते तो दे तो मत मलेरिया बेन उन आता उन पुनः आता और सब ले ज्यादा इंजे मितानी नागवन कीट मन ते मलेरिया कीट आज मलेरिया कीट ते उबे मनल चेक कीवन पर तल मलेरिया ते क्या यन जा कीट तक नेगेटिव तो कचन अब उरते जो पुना आते
7: हां मनल मेटना आतुर कचन मेटना केटा नुले निक कचता अड़ू नार दा केटा नुले कचता तो मेरा ताकि नूले कचके मलेरिया आता कि बा सजनार दा नूले कचकच मलेरिया बीमारी आता
8: मलेरिया ई लेके तो परना यो कि मेट तत्कच तो या दिन बीमारी आता न और लो तत्कच तत बीमारी आता नहीं ई ले के तो परना यो आद नूले तक पीटक मन ठीक है आद बीमारी पेरासाइड कि अब नूल कौन बेग गई बेलिए पर देता है सबले ज्यादा लेकिन मन लोत तक मन तब अब नूल ने ज्यादा बीमारी आयन इना पुना आता हाँ क्योंकि बीमार व्यक्ति ने आगटिना के आद नूल होता है बीमार व्यक्ति ने माने तो बेनर दुखम आसमन मतलब मलेरिया आसमन
7: बीमारी
8: ओन पोस मनता क्योंकि माने कौन लोन मन तोड़ मेटता कौन मन आदि सप्ते आग नूल टबंडे माने नूल कच कचन बीमार है यो मुत्ते नूल कच तोड़े आदि न बीमारियां आता जो मुत्ते इस हफ्ते मनते अब नूल वेंडा और प्रकार था ओंडो गोगो उदिता ओन समझ ने पट्टीता एर दगा यो कन गोगो उदि इले तलत तेज मनता नूल ते बीमारी आना आता नूल ना वेंडा अलग अलग प्रकार मिलने
7: हाँ तो निम्को नीवों के माटा किन कत्ती चेतन मरकाम ननिंज निकिन पूछ की तनेगा मलेरिया बीमारी तीन मेले बच्चे माले बात बात किए वही तो था
8: हाँ सब ले ज्यादा नेलोटक प्रश्न पूछ की तीना को मन कोई तो सीध बाहर इंजो कत के चंद सीध वेडर आगे दातोड़ सब लोग मुन्ने न मना किन जो मिता नहीं नहीं मिंदे अगर टक लोक लोक है अगर तीना कीट की ना मलेरिया तक अगर निगेटिव बत्ता इंजो कत कचन है और बीमारी यहाँ था लेकिन मलेरिया कीट तो पॉजिटिव बत कचन है मनल अगर मिता नहीं नाग मनता है मलेरिया बीमारी अगर अगटीना में पहुंच पाता लेकिन नेक का ज्यादा बीमार रहता क्या चोने सीधा अस्पताल होना था मलेरिया था दो ही प्रकार था उपाय मिलते मलेरिया फेल सी पेरामिन तोड़े अब मून दिन आते ना दवाई तीन दवाई तना था तान में था नरको मूल पे गले है आड़ों वाई वैक्सीन तोड़ मना कौन रेंडे रेंडे प्रकार मलेरिया मिलते मन बस्तर रहता लेकिन मलेरिया तो वाई वैक्सीन तोड़ा अच्छा दिन दवाई तीन दवाई हाँ चौदह दिन मन अदेर ओंडो दिन तितक अद बीमारी बद दवाई ओंडो दिन तित के चन निकुबे एड़क विरसी तक सब कुछ लेकिन मन माने आगे विरसी तो हो आ लेकिन दयो अद डोज मिन दे
7: अद वेंट तिन अद मिन दे अद तिन
8: अद तिन अद तिन दवाई देता तो अद वेंट मलेरिया अब दवाई की तीनों का चन है वेंट बात
7: वेंट
8: मार मन अगोन लीवर इन जो ऑन मिंदे माना शरीर तक है आज मलेरिया मन आगे लोप बंधन चिपके मास मन था आज इन साफ सफाई किले मम ऑन प्राइम आके मैंने जो ऑन दवाई जिनो में आज दवाई कित का जो पूरा साफ आता तो आज इन के बेन बेनो माने मन कोई तोड़े ने तीन और गले आठ दिन तो वेंड मलेरिया आता मल्स मल मल्स मल्स मलेरिया का चुने अद दवाई बन पेर के काम की वो रजिस्टेंस है रजिस्टेंस मतलब अद दवाई पेर के काम के लिए बंद आता आता तो मना मलेरिया में दे हाल तीन तीन तीन रजिस्टेंस आता मतलब
7: हाँ और तीन में ले वंडे और बातें उपाय में दे
8: हाँ मन इत दवाई कौन तीन दन दे तान तीन सांग सांग मन लोट आस पास कुंडन आ गई मन कौन आगे नोर्दितर एयर नोर्दितर कोदर मंता है तारी बत की नोर्दन आगे अगेर दिन आयो जमीन आ दायो जमीन आ दिस लायो क्योंकि आगे एयर नित्ता नूल्ले पुट्टी था नूल्ले पुट का चन अब नूल्ले पे बीमारी की था अचन मन लोत तीन आस पास तीन मन साफ सफाई की ना और मन बेनर दुखा मत्तर उड़कन कुंडे अस्पताल बना था
7: मच्छरदानी बात
8: मच्छरदानी सरकार ता के टीम ता दिन मच्छरदानी बांटना बेन बेनो यू बात थोड़ा अद मन मन दिन में मच्छरदानी तो नल मूल पे पटम पे मच्छरदानी तो बाटी पटना खास कर पिल्ला की नो हाँ बुढ़िया माने की ना था लेकिन पिल्ला की नत का चौन मलेरिया उब्बे आधे मन के तन हो रहे तला तक अत्यं जो कत का चौन है इले पिल्ला तीन मतलब बेहोशी आता गले मन कोई तोड़ समझ मा तोड़ की पुरोटल रे तीन जो सीधा बेडा हो तो मलेरिया मन था हाँ ना गया था उच्च का पिल्ला हुआ था इंजन में नारदार आगे पुनः आता की हाँ एक दिन मलेरिया है जो मन जो शरीर तक है मन शरीर तीन में जरूरी आयल जो ग्लूकोज मन अद ग्लूकोज तीन कम की सी मलेरिया ग्लूकोज तीन कम कित कचोन साथ साथ खून मन नेतुर मन नेतुर तीन तोड़ा की था नेतुर तीन तोड़ा कित कचोन खून की कमी आता ले है मून कारण नहीं आता मतलब मन शरीर तीन है खून कमी की था ಆರ್ ಮನಕ್ ಶುಗರ್ ತಿನ್ ಕಮ್ಕೀತ ಪೊಟ್ಟ ತಗೊಂಡೆ ಒಂದು ಇಸ್ಪ್ಲಿನ್ ಜೊಕೆತ ನೋಡ್ ತಾನನ್ ಬುಡಿಯತ್ ಕೀಸೀತ ಮಲೇರಿಯಾ ನೆಕ್ ಆಗರ್ ನೆಕ್ ಬಡೆ ಮತ್ ಕಚನೆ
7: ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಮರಕಾನ್ ನಿಮ್ಕನ್ ಉಂಕೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಬಾತತ್ಲೆ ಪುಟನಾದ ಇದ್ ಬಾತ್ ಬಿಮಾರಿ ತೇನ ಬಾತ ಕಾರಣ ತೇನ ಬಾತ ಲಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ತೇನ ಬಾತ ಉಪಾಯ ಮಂದಿ ಇವ್ ಉಂಕೆ ಮಾಟಾಕಿನ್ ಮನ್ ಮಾನೈಕಿನ್ ಕೆಚಿತ್ತಿ ಸರ್ಸರಾತೆ ನನ್ ಇಂಜೆ ಅವ್ರ ವೆಂಡ ಮಾಟನಿಕ್ ಪೂಜಿಕೀತನು ಇದು ಮುಸುಕಾಲ ಆತೆ ಬಾತ ಬಾತ ಬಿಮಾರಿ ಆತ ಇವಿಗಿನ್ ಕೆಚೋಡ್
8: ಇಂಜೆ ಕೊಂಡೆ ಪುತ್ತಿಡಿ ಮುಸುಕಾಲ ಮುಸುಡ ವಾಯಂತ ಇಂಜೆ ಮನ್ ಮುಸುಕಾಲ ಕೆತ್ ಕೆಚನ್ ಮನ್ ಕೋಯ್ ತೊಡಕ್ ಸಬ್ಲೆ ಜಾದ ಉಲ್ಟಿ ದಸ್ತ್ ಬಾತ್ ಕಾರಂತ ಒಂದ್ ಕೊನ್ ಹೇರೆ ಬೆಕಟೈಟ ಏರ್ತದಿತಲ್ ಕೂವತ ಗಟೈಕಿ ಮುಸು ಸಬ್ಲೆ ಜಾದ ಉಲ್ಟಿ ದಸ್ತ್ ಏರ್ ಕಾರಂತ ಏರ್ ಸಾಫ್ ಸಫಾಯಿ ಮನ್ನು ಆಡ್ ಉಡ್ ಅದ್ ಹೇರ್ ಬಂಡೆ ಆಡ್ ದೂಸರ ಕಾರಣ ಇಂಜೆ ಮನ ಕೂಕ್ ಮಿಂದೆ ಕೂಕ್ ಐ ಬೆಗಿಟ ಗಿಟ್ಟಿತ ಟೀಕೆ ಕೂಕ್ ಬಂಡೆ ಹಲಗ್ ಅಲಗ್ ಪ್ರಕಾರ ತಮಂತ ಮಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಾಸ್ ತಿಂಜೋಕತ್ ಕಚನ ಅದ್ ಏಕ್ ಪ್ರಕಾರ ತ ಪಂಗಸ್ ಪಂಗಸ್ ಹತ್ ಕಚನೆ ಅಗಟಿನ ಕೂಕ್ ಪುಟಿತ ಕೂಕ್ ಬಂಡೆ ಬೇವ್ ಬೇವ್ ಬಾಲೆ ಕಿ ಪುತ್ ಕೂಕು ಈದ್ ಕೂಕು ಮುನ್ನುಡ್ ಕೂಕ್ ಇವು ಮತ್ಲಬ್ ಮುನ್ನೆಟ್ ಕಿ ತಿಂದ ಬಾದ ಅವ್ ನೆಲ್ಲೆ ಹೇ ಆದಾದ ಬೇಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಮನ್ ತೊಂಡೋ ಬೇನ್ ಕೂಕ್ ಅತ್ ಕಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅತ್ ಕಚನ ಅದ್ ಉಲ್ಟಿ ದಸ್ತ ಕಿಸೀತ ಅದ್ಕೊಂಡ್ ಟೀಕೆ ಅದ್ ಬಂಡೆ ಮನಲ್ ಮನ್ ಕೋಯ್ ತೊಳಗ ಹಾಗೆ ನೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ ಸಫಾಯಿ ಬೇನ್ ಕೀಬೋಡೆ ಹಾಡ ಹಾಡ ಅಟ್ಟನದ್ ನೆಲ್ಲ ಅಟ್ಟೋಡೆ ಅದ್ ಅದ್ ಕಾರಣತೆ ಕೂಕ್ ಬಂಡೆ ಹೇರ್ ಬಂಡೆ ಹಾಡ ಮನ್ ಸಾಫ್ ಸಫಾಯಿ ಬಂಡೆ ಅದ್ ಕಾರಣತೆ ಉಲ್ಟಿ ದಸ್ತ ಆತ ಇದು ಉಲ್ಟಿ ದಸ್ತ ತಿನ್ ಏ ಬಚ್ಚ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೆಚಿತಾನ್ ಮತ್ಲಬ್ ಮನಗ್ ಆಲತ್ ಕೆಚನ್ ಏರ್ ದಿನ ಕಮ್ಮ ಆತಿಂಗ ಪಿಪಿ ತೀತಿ ಪುಟ್ಟವೆಂದ ಆತಿ ಸರಿ ತಗ ಬೇಗ ಏರ್ ಮಂದನ ಏರ್ ಮನ್ನು ಪೇ ಪೂರ ಲಸ್ ಲಸ ಆತ ಅದಿ ಸಪ್ತ ಮನಗ್ ಸೀದ ಆಸ್ಪತ್ರ ತಯನ್ ಬಿಡಿಸಿ ಸೀದ ಬೇಡಾಗೋತ ಮೀಡವೆನ್ ಪುನ್ನುಟು ಏರ್ ಕಮ್ಮ ಅತ್ ಕಚ್ಚನೆ ಸರಿ ತಗ ಏರ್ ಕಮ್ಮ ಅತ್ ಕಚ್ಚನೆ ಬೆಡ್ ಮೂರ್ ಕಚನ್ ಬಹಳ ಅದ್ ಪುನಃ ಆತ ಏರ್ ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ತಾನು ಏರ್ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಕಿನ್ನದ್ ಮಿನ್ನಗ ಅದ್ ಹಿಸಾಬ್ತೆ ಮತ್ಲಬ್ ಆಲ್ತೇನ್ ಉಲ್ಟಿ ದಸ್ತತ್ ಬಹಾತ್ ಕೇಟೆ ಸೀದಾ ಹಾಸ್ಪತಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪತಲ್ ತಗ ಜಾಲೆ 108 ತಗ ಸುವಿಧಾ ಮಿಂದೆ ಹಾ ಮಿಯಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರ ಮಿತಾನಿನ್ ಮಿಂದೆ ಆಸ್ಪತಲ್ ಮಿಂದೆ ಆಗೋಯ್ಬಿಟ್ಟು
7: ತೋ ಮನ್ ಕೋಯ್ ಮಾನೈಕೊಂಡು ಬಾತ್ತೆ ದುಃಖ ಪುಟ್ಟ ಖಾಲಿ ವೆಡ್ಡೆಡಗೆ ಹೋಯ್ ನೋಡ್ ಇದ್ ವೆಡ್ಡೆಡಗೆ ಹೋಯ್ನದ್ ಬೆಚ್ಚರ ನಾನೆಲ್ಲ ಮೆಂದೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಕೆಚೋಡ ಇದು ನೀ ಯಾಕೆ ನೆಲ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ ಬಾ ನೆಲ್ಲ ಆಗ
8: ಮಾ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ ನೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಕ್ಯೋಂಕಿ ಈ ದಿನ ಬಾತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ ಈಗಿನ ಬಾತೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ ಆಡ್ ತಮ್ಮ ಮುನ್ನೆಟ್ಕೆ ಮತ್ಲಬ್ ವೆಡ್ಡೆ ಕೀ ಬಾತ್ ಬಾತ ಕೀಸು ಮತ್ ತೊಳೆಂಬ ಮತ್ ಅದ್ ಅಲ್ಲಗ್ ಸೀಜು ಹೇ ಲೇಕಿನ್ ಈ ದಿನ ಬಾತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ ತೋ ಈ ದಿಸ್ ನನ್ ಸೈ ಇಂಜೋ ಕೆಲ ಹೋ ಇದಿನ ಬಾತೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲಿಂಗ ಅದ್ ಹಿಸಾಬ್ತೆ ನನ್ ಮನ್ ಕೋಯ್ ತೊಡ್ಕಿ ನನ್ ಕೆಚಿತಾನ್ ಬಾ ತಲ್ಲ ನೋಯ್ ಮಾಯ್ಕಿ ಪೊಟ್ಟ ನೋಯ್ ಮಾಯ್ಕಿ ಪಿಲ್ಲ ತಿನ್ ಪೈಕಿ ಬಹಾಯ್ಕಿ ಸಬ್ಲೆ ಮುನೇನ್ ಮನಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರ ಹೋಯ್ ಬೈತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಗಟ ಹೂಡನ ಪೇರ್ ಕಾತ್ ಕಚನ್ ಮನಕ್ ಕೊನ್ ಎಡಿತಿ ನೋಡ್ ಬಾತ್ ಬಾತ್ ಆಕೇತ ನೋಡ್ ಆ ಪೇರ್ಕೆ ಆ ಊರ್ ಸಂಬಂಧಿ ಲೇಕಿನ್ ಸಬ್ಲೆ ಜಾದ ಆಸ್ಪತ್ರ ಹೋಯ್ ಬೈತಿತ್ತಲ್ಲ ಆಗ ಪೇರ್ಗೆ ಕಾರಣ ಬಾಯ್ತಿಕ್ ಬಾತ್ಗೆ ಪುನಃ ಆತ ಕ್ಯೋಕೆ ಮೀಡ ಆಗ ಕಾರಣ ಪುನ್ವಲ್ಲ ಆಸೋ ಮುನ್ನೆ ಸೀದಾ ಬೆಡ್ಡೆಡ ಹೊತ್ ಕಚನೆ ಮೀಕಿನ್ ಬೆನ್ ನುಕ್ಸಾನು ಕ್ಯೋಕೆ ಮೀ ಕೂಡುವೆ ಆಡ್ ದಿನ ರೆಂಡ್ ಆಟ್ಕು ಲೇನ್ ಮೆನ್ ಬೇನ್ ಬೇನ ದುಃಖ ಮಾಸ್ ಮನ್ ಬೆಡ್ಡೆಡ ಗೇಮ್ ಅಂತೋಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅತ್ತ ಪೇರ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರ ಹೋತೋಡ್ ಅಚುಟ್ ಬೇ ಡಾಕ್ಟರ್
7: ಅಚುಟ್ ಕಾನ ಬಿಮಾರಿ ಬಡೆ ಮಾಸ್
8: ಬಿಮಾರಿ ಬಡೆ ಮಾಸ್ ಮಂತ ಅಚುಟ್ ಬೆಂಡೆ ಆತ್ಕಿಲೆ ವೆಂಡೆ ಒಂದ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಿಲೆ ನೆಕೆ ತಕ್ಲೀಫಾನ ಆತ
7: ಬೇನು ತಾಡಸ್ ಕಚ್ಕೆ ವೆಂಡೆ ಬೆಡ್ಡೆಡೆಗೆ ಹೋಯ್ ನೋಡ್ ಇದ್ದು ಬೆಚಾರ
8: ತಾಡಸ್ ತದ್ ನೆಲ ಟಮಾಟ ಕೆತ್ತಿ ತಾಡಸಿ ಮನ ಗಿಂಜೋ ಕೆತ್ ಕೆಚೋನೆ ನಾಲ್ಕು ತಾಡಸಿ ಮಿಂದೆ ಮನ್ ಕೋಯ್ ತಿಂಜೋ ಕೆತ್ ಕಚೋನ ಒಂದ್ ನೈ ತಾಡ ಒಂದ್ ಆದ್ರಾಂಡ್ ಒಂಡ್ ಮೆಟತಾಮಂತ ದೊರ ತಗಮಂತ ಉಜುಜೆ ಮೂಂಡ್ ತಾಡಸ್ ಉಡ್ತ್ಲೆ ಉಡ್ಲೆ ಮೂಂಡ್ ತಾಡಸ್ ಕಚ್ ಕಚನ್ ಮನ ಡೊಲ್ನಾ ಆತ ಬಾತಾಯಿ ಕಿ ಗೊರಸ್ಕೊಂಡ ಸುಡೂಲ ಬಾತಾಯಿ ಪೂಸಿ ತಾಳ ಡೋಂಡು ಬಾತಾಯಿ ಕಿ ಕಚ್ಚಿತ ಟೀಕೆ ಅವು ಕಚ್ ಕಚನ್ ಮನ ಡೊಲ್ನಾ ಇಯೋ ಕ್ಯೋಕೆ ಆಗ ಜೇರ್ ಮನ್ನು ಆಡ ಮನ್ ಮಾನೆ ಬಾಲೆ ಕಿ ತೋಳ ಉಡ್ತಾ ತೋವ ಬಾತಾಯಿ ಕಚ್ಚಿಕಿ ಅದಿಲ್ಲ ತಾಡಸ್ ಮಿರ್ತ ಇಬ್ಬ ರಿಕ್ಕ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಟೇನೆ ಆಡ್ಬಡಾತೆ तो बाले समझ में तो नाकिन के कच दिन दो गले सी तो बेगोर तो वेडेरा वेडेरा अगूर तब और ताड़ांच पुन वा बात ले कट पुन वा वेडेरा या बात आई दवाई तोड़ आर दवाई तोड़ गले आप बात आई फेर के किधी तोड़ के हाँ नन सही की सीतन अरे भाई अगर कच ते की कचो की उड़ता तो वन है अगर नहीं तारण जो अंडे जब तक मन किन अच्छोर पर्याप्त माँ मेडिकल ते इंजो कहते क्या चलते हैं 60 ml 60 ml अगर जहर अब तर इंजो कहते कर मन माने वंडोली तोर नहीं तारांस कच के वंडे इच्छोर वंस प्रूफ मिलते अच्छोर तारास मत कहते चन डोलना आता इलो कहते चन अति ने कम मत कहते चन मन शरीर कूद रिकवरी के इता नना चके ती तन मून तारास कहते कर चन वरी नही तारांस आदरान और दौर तक मन तरूज तरह था आज कच कचन घर डोलना था और सोचे सोचे तब तारा सी कच कचन डोलना है और तारा सी कत जो कत कचन सीधा अस्पताल तक नो वेडेरा मन मार
7: तो डॉक्टर चेतन मर काम निम्कुन नेलोटा माटा किनके चित्ती ಇವ್ ಮಾಟ ಕಿನ್ಕೆ ಜಿ ಮಂಜು ರೇಡಿಯೋ ಕೇಂದ್ರ ನೋಡಿ ಬಿತ್ತಲೋಡ್ ಇದಾತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಓತೊಡಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಕಾಶವಾಣಿ ತಿನ್ ಮೇಲೆ ಸಮಯ ಇತ್ತಿ ತಾನ್ ಮೇಲೆ ನೀವ ನೆಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಕೆ ಸೇವಾಮಾನ್ ಈಗ ವತ್ತಿ ನಿಖಿನ್ ಧನ್ಯವಾದ
8: ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಧನ್ಯವಾದ
7: ಜೋಹಾರ್
8: ಜೋಹಾರ್
0: तो मिटकी कितरो नगद गोट के सांगला ने डॉक्टर साहब ये हाँ। रहोत डॉक्टर चेतन मरकाम और भेंट करता रहोत जयराम कवासी तो मैं बोलते रहे कि दक अदा जसन समय मिलूस तो समय जाओग बल लागे से
1: हाँ,
0: तो मैं मोटर कट रख सकले से तो ही बिदा धर
1: हाँ। तो जातो पूरे बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुनतो सपाए गाँव कारी दादा दीदी सियान सजन और संगजोरिया संगवारी मन के मैं मिटकी
0: और मैं धर्मू
1: आमी दोनों करूँ से राम राम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम बस्तर के स्वर, मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 7:23 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए ग्रामीण भाइयों का अपना कार्यक्रम आम चौगांव।

0: जुहार धर्मु दादा, जुहार
1: हाँ जुहार मिटकी जुहार।
0: अमर लिसने।
1: हाँ अमर लुकाय।
0: तो असने आमचो गाँव कार्यक्रम सुनतो सपाय गाँव कारी दादा दीदी सियान सजन और बोड़ू मन के हमी मैं मिटकी
1: और मैं धर्मू
0: आमी
1: दोनों
0: दोनों करूं
1: करूं से
0: जुहार।
1: जुहार। और देख रेडियो कटा कटा बस लो नान नान पीला मन के बले आमी दोनों जो बाटले
0: खूबे
1: खूबे खूबे
0: खूबे
1: मया
0: मया
1: और लाड बले।
0: हाओ
1: हाँ तो मिटकी
0: हाँ
1: दक आमी तो अमरलू ने
0: हाँ अमरलू
1: और आमचो जुहार बेटबल होली।
0: हाँ
1: मैं बोलते रहे कि आमी समय समय नसनी काई ना काई।
0: गोड बात के धरो
1: हाँ
0: नमरू आउने
1: अमरू जी आऊ
0: हाँ
1: तो असनी आज चो जोन गोट है दक मैं लेख करते रह ले कि आमचो जोन एता चो कला बोलुआ था आमी आमचो संस्कृति बोलुआ आमी आमचो नाचा डगा होली ये सब आमचो कितरो गोटुक जरूरी तीज मनाए ने।
0: हाँ
1: और एके आम के बचा तो काज बले ए चो संरक्षण बोलू आज उनके
0: हाँ
1: कर तो काज बले आम के ही पूरे ये तो रहे।
0: हाँ हामी चे के बचाउन संगाले काया के बाचुन रहे देने जसन कि नहीं ले फिर लोग मन चो दखुन दखुन लोग मन मा होले फिर हम चो जोन संस्कृति आई कौन बढ़ जाए थे
1: हाँ कौन बढ़
0: लुके
1: जाए।
0: देने
1: आए का और देख आजकल काया है भारतीय जो युग है और भारतीय जो युग ने काया है असन कई कसन नुआ नुआ तीज मने से
0: हाँ
1: जसन की आगे जुग ने सोजे बाजा मोहरी बाजते रहे
0: हाँ
1: अदाचो बिया दक से बैंड बाजा बोल बाजे से और उनका डीजे बोलवा तो सन
0: हुन बोल बाजे
1: बोल
0: से
1: बाजे से।
0: पहले बिना मोहरी जो कई नहीं होते रहे
1: हाँ तो हुन चीज के आम के बले थोड़े लेख कर तो रहा है और ध्यान दे तो रहा है कि आमचो संस्कृति बले आमचो बाचू रहो और
0: हाँ
1: आमचो ये बले संगे संगे जाओ।
0: हाँ और असने जसन बिया ध्यान बल होते रहे नहीं बाजा मोहरी सन और हुन थान फिर बाजा मोहरी संग से गीत बल गाओ तो रहे नहीं
1: हाँ गीत बल रहो का और गीत बल तो मके सुरता है लिमिट की
0: हाँ
1: कितरो नंगत लागे ने एबे बल होए से कौन कौन गांव मन में देखे से कि जसन की दीदी मन मेहरार मन रुआ तो ता रोपा लगा तो बेरा
0: हाउ
1: कितरो नंगत गीत मन गाते रुआ
0: हाउ
1: है उनके सुनन बल का रसिया लागू जाए से।
0: हाउ ने कान को ने बले झुमक ना लागू आए ने सुन
1: और
0: ले
1: उसनी बिया होली कोनी मड़ी होली कहाँ जत्रा होली होता बले कितरो अच्छा लोग मन असन समूह बना बुना नाच सो ने।
0: हाउ नाचते संग संगे बल्ले मकसूरता पड़े से गावते संग संगे नाचते बल हो से ने जसन की हम चो जिन बस्तर ने होली जिन झेला डांस बुलवा दी ने हुन फिर का एकदम फेमस हो इसने
1: और ये तो उन बला है कि आमचो ये आमचो संस्कृति चो गोटोक हिस्सा बला है ने।
0: हाँ।
1: और ये के दखुन भाती लोग मन बल सीख सोत और उनको जान सोत काय काज के आमी जोन चीज के दखाऊं दे सुनाऊं दे तब आमचो ये तो जोन पीढ़ी आए हुन
0: हाँ।
1: मन बल दखुन सीख दे
0: हाँ,
1: आए कसन।
0: सत्य है
1: और देख आजकल जसन के बिया टीका होली ने जगार जतरा मंडे येता होली कितरो नंगत नंगत असन बाजा मोहरी एता चो देव पाड़ मन बास्तर हुआ है उनके सुनन बले का रस्य एकदम मन बले एकदम अस्थिर सितर लागू जाए।
0: हाँ सत्य है दादा
1: तो मिटकी
0: हाँ
1: ये गुड़ तो होली होली संगे मैं बोलते रहे कि आमचो लगे नंगत जाला मन बला से उनके बला में सुनो
0: आले फिर एक बल हमें सुनो और हम दादा दीदी मन को सुनाऊं।
1: हाँ
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी काउंसिल बुधवार नेटेन घोषणा की तकी सरकार सीमेंट तपोर्रो जीएसटी मोला 28% तुन कम किस इंजे 18% की सित्ता टैक्स तगा कमी कित्ता आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम आयना दुमिद मिंदे ई लेकिन संगमरमर इंदनद और ट्रेवकिन ट्रेवटिन ब्लॉक इतके ओंडले कटा बंडाकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% की सित्तोड़ ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% जीएसटी लगे माता इदेन संगेन उसका चुन्नाम ताव ईटा और बंडाकल तीन जोड़ाई की अनबूता तेवेंट मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड़।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
0: हाँ तो ये हमी नगद गोट मन के तो सुन लो ने तो असने आज दिन हिसाब में है सोमवार ने।
1: हाँ।
0: तो और हम जो मुंड्रा में से भेंट वार्ता।
1: हाँ।
0: ये भेंट वार्ता है श्रीमती डालेश्वरी पांडे चो।
1: हाँ।
0: और एमन सन भेंट कर सो सी आर कश्यप आले एमन चो भेंट वार्ता के बोले हमें सुनो।
6: रेडियो सुन तो सपाए दादा दीदी के जुहार। तो भाई बहन मन ऐसा ना है कि आमी तो आमचो ए बस्तर ने आसू बस्तर ने बोले बे कहे कसन कलामन बल होय से जेके गीत आए नहाले नाचा डगाए बजा तो राय नहाले कोनी कहनी जानत कोनी कविता जानत उन बोलतर और लिखतर असन बोले कहे कसन कला मन आसे असन लोग मन संगे आमी गोडबात करून एथाले सुनाते रहू से जानाते रहू से। तो असनी ची आज ही आमचो लगे अमर लासोत ये दीदी मन तो ये मन चो नाव गाँव के आगे पूछे था। तो दीदी तू के सब ले आगे जुहार
7: जुहार दादा।
6: तू चो नाव और गाँव चो नाव के आगे संगे
7: सब सबसे आगे तो सफाय दादा दीदी मन के जगदलपुर चो मचो बस्तर चो सफाय दादा दीदी मन के संग साथी मन के मैं जुहार करे से। मचो नाम श्रीमती डालेश्वरी पांडे है।
6: हाँ हाँ।
7: मैं आसना गांव चो बेटी है।
6: अच्छा।
7: इंद्रावती नदी संगे
6: लगली से गांव बोलो
7: गांव आया बुआ चो गांव है।
6: हाँ हाँ।
7: आसना गांव चो बेटी है और उतरो ने भिया करुन भाती मरेठा गांव नी।
6: अच्छा। हाँ।
7: पुत्रों ने फिर टोकी पिलामन सफाई था ने रसोत।
6: हाँ, हाँ।
7: पढ़ोन लिखुन कर सो।
6: अच्छा।
7: तो आना जाना लगुन रहे।
6: हाँ हाँ। तो दीदी ये सांग जसन बल्लीस की तो ये बोलो बे कहानी बोले लिखुक जानिस और पढ़ बोलू आस बोले सुना बोले आस और कविता मनोबल जानिस।
7: हाँ।
6: तो उन्हीं हिसाब ने मैं ये पूछुक चाहे से कि जसन तुझो लिखतो बीतिया जोन कविता पाठ जोन लिखतो बीतिया उन केवले तुझो मूर होली कितक बरक असन होली जाले
7: मूर तो असन पीला दाएले रही।
6: हाँ, हाँ।
7: पीला दाएले असन रली बोले आया बुआ बोले गातो रहे।
6: अच्छा।
7: हुन के गातोर सुन लेका है मन भीतरे मग बोले।
6: हाँ, हाँ।
7: गातोर सीखतोर।
6: हाँ, हाँ।
7: मन भीतरे बोले
6: इली बोलो भी मन लागली तो
7: मन लागे।
6: अच्छा।
7: घर ने बोले शुरू दाएले माहौल रली।
6: हाँ हाँ।
7: उतरो बाद जसन स्कूल गली मुझ 6वीं क्लास ले लिखुत
6: मुर कर। हाँ हाँ।
7: उड़ता टूटतो फूटतो हम ती सांग शुरू लिखते रली।
6: हाँ हाँ।
7: पछे पछे जसन समय होते गली अपन लिखतो भी तिक थोड़े निखार ने आनते गली।
6: हाँ हाँ। तो उसनी तु लिखते लिखते बे बोलो बे कविता मन लिखसी
7: लिख ली।
6: हाँ हाँ।
7: और एबे एक आध महीना पहले मोर गोटोक पुस्तक ली।
6: अच्छा।
7: पुस्तक चो नाम है जगत जननी।
6: हाँ हाँ।
7: हिंदी ने आए हूँ।
6: अच्छा।
7: उनचो एबे विमोचन होली।
6: हम्म।
7: माननीय किरण देव जी।
6: अच्छा।
7: संजय पांडे जी।
6: हाँ, हाँ।
7: मन विमोचन कर ली।
6: अच्छा।
7: सब पुस्तक के खूबे मन करला।
6: हाँ हाँ। तो देख ये जो पुस्तक जो लिख ली बलसी ते हिंदी ना से बोल लीस तो ये थाने तो लिख लो भी थी खिनिक आदक खिनिक पढ़ाउन हम चो रेडियो सुन तो भाई बोले सुना पाठ
7: असन थी खुबे कविता मन आसे।
6: हाँ हाँ।
7: मानतर एथी गोटो कविता से मुई विमोचन दिने बल पढ़ून रले।
6: अच्छा।
7: हुन दिने खुबे लोग मन करून
6: कर रले। हाँ हाँ।
7: हुन बस्तर चोपे रहे।
6: अच्छा अच्छा।
7: दुई लाइन सांगे से।
6: हाँ हाँ।
7: बस्तर वासियों का हृदय है बस्तर। हाँ हम सबकी अस्मिता है बस्तर। नदियों की कलकल पशु पक्षियों की हलचल झरनों की सुरमई सांझ है बस्तर। आस विश्वास आस्था का धाम है बस्तर। लहलहाती धान की खेती गीत राग संगीत है बस्तर। घाटियों का अद्भुत दृश्य चित्रकूट की अनुपम छवि है बस्तर।
6: हाँ। ये इतनी लाइन ने बोले हाँ। जो जनाम जो बस्तर जो है पूरा गुणगान होता
7: है खूबे लंबा है।
6: और इस संग संगे दीदी ये सांग की जैसा नहीं हिंदी भी थे होली हाँ। तो ये संगे संगे कहीं असन आम चो जो बस्तरिया बोली भाषा से हाँ। कहीं कविता मन बोला से हाँ,
7: कविता मन सो आसे असन आम के लघुन लंग जसन बोलते रहूं हाँ। एक तो आमे बस्तर ले जुड़लो लोग हल भी तो आमर रग रग ने आसे तो हल भी लिख तोर बोल खूबे अच्छा लागू है गातोर बोल खूबे अच्छा लागू है। एबे तीन चार महीना पहले तो मैं रायपुर में जाऊन रले हुता हलवी में गोटो भ्रूण हत्या
6: अच्छा।
7: लेकी मंच ऊपर गोटो गीत गाउन रले
6: अच्छा।
7: ता फिर बादल ने बोले एक दिन आसना चो बादल में हुता बोले गाउन गाना चो एथी बोल प्रसारण हो रहे
6: अच्छा
7: एथाने प्रसारण हो रहे सुरता तो उतरो नहीं है मान तो थोड़े असन सुरता करे
6: ले जो बोल सुरता से खिनिका सुना देस हम चो रेडियो सुन तो लोग का जो
7: बेटी मंच ऊपर है उर्दुना बोले फटुन जाए से मोचो मन रे दुख काके सांगे दे आया आप लो मनर गोट के सांगे से उर्दुना बोले फटुन जाए से मोचो मन रे गोट काके सांगे दे

0: मतलब अच्छा ई तो छो ई गीत अच्छा लाग लिया और दक आई छी एबे जसन बल्लिस तो ई कन्या मंचो
1: एबे बले कोनी कोनी गांव भितरे असन
0: हाँ
1: जगह मन आसे कि जोन लोगे फेरले किर पाठर ले कि ओले आया बीतिक बले खूबे डंड होए से चिंता
0: हाँ,
1: बल
0: हाँ.
1: होए से तो हम ऊपरे मैं एक दिन लिखून रले
0: तो असनी दख फेर और कहीं
1: हाँ.
0: तुझो लगे कहीं कविता अगर तैयार यहाँ से जलखी निकाल और
1: और
0: सुनाओ
1: एथी सबसे बड़े गुरु कोनी नोल तो कोनी रोच यार
0: हाँ हाँ
1: लेकिन देखा जाए तो आया बुआ सबले बड़े
0: सबले बड़ा
1: गुरु
0: हाँ
1: आत
0: हाँ
1: तो हुनी चो दिशा मार्गदर्शन घरे बसुन सुना तोर ने है हुन अच्छा लागे
0: हाँ हाँ
1: दुई लाइन नाम चो एवे जसन अयोध्या ने राम चो मूर्ति स्थापित होली
0: हाँ हाँ
1: हल्पी में मुई दू चो लाइनर लिखून रले
0: अच्छा
1: हाके
0: अच्छा
1: गुनगुनाए से
0: आले

0: ये तोरे लेका चो बोलतो भी
1: बोलतो
0: थी
1: भी थी हाँ हाँ
0: हुन चो काय बोले से रंग रंग र चूड़ी घेनी देवी बरन बरन साड़ी ब्यूटी पार्लर ने बीरे धनी खोई भी भेलपुरी आजिकाली चो झगड़ा चो
1: झगड़ा चो
0: हवा
1: आई थी
0: आजिकाली चो लेका लेकी चो
1: हाँ हाँ उन लेका बोल बोले से उनके शहर ने दे बोले से और उन जो जो मेहरा रहा है उन बोल बोले से
0: तो टाक,
1: दो दिन टाक
0: धान पान बोल बिकुन देश ए बे हाथे पैसा कौड़ी कहीं नहीं आए बोले
1: हाँ,
0: से
1: हाँ, हाँ.
0: रंग रंग रा चूड़ी घनी देवी बरन बरन साड़ी ब्यूटी पार्लर ने बीरे धनी खोआई भी भेलपुरी धीरज धरी रे नोनी धीरज धरी रे नोनी ने भी सिनेमा हाल के एबे तुई फुलाओ नाई गाल के तो किटाउन ने भी काल के लाउ धरे मोर खपरा छानी लाउ धरे मोर खपरा छानी तुई तो मोर मनर रानी आनी देवी तो के आनी बानी बड़ विचित्र तोर माया जाल बुझी न पारे विधाता।

बैले मनुख डोकरा डोकरी पीला जिला सफाई ठान ठान के तुम चो महिमा गा सुत सुनाए दाए। बैले मनुख डोकरा डोकरी पीला जिला सफाई

0: काय होयसे की पढ़ा लिखा हो सोत मांतर यसन नानी नानी चीज मन के भूलकते जा सीखुक बल नहीं चाह आय कसन तो आई बोल पीला मन चोटो सीखे आसन बोले आय की जोन बोले पीला मन लिखुक जानत असन कहीं कविता आए कहानी आए तो उनके आगे बड़ा तो काचे आमचो जोन दादा दीदी मन आसन चो माए बाप बोलू बे उन मंचो बोल साथ होतर खूबे जरूरी आय कसन
1: खूबे जरूरी आय घर जो जब तक साथ नहीं मिले खूबे तकलीफ
0: आई तो आई छी
1: घर लोग साथ दिलो ने ई आगे बढ़तो सरल सहज होए
0: हां हां हाँ तो डालेश्वरी दीदी तुझो दक इतलो अच्छा जोन कविता पाठ मन के धरन एवं रहीस इतलो अच्छा तुझो कला के तुझो लिखतो बीती जोन कला ये सबके इताले सरसरा सांगली साले चोका चित्तु के खूबे खूबे जुहार।
2: हाँ तो ओ मिटकी
1: हाँ
2: तो जो मोटरा लिखी तो नगत भेंट वार्ता तो निकरालिस ने
1: हाँ।
2: और लोग मन पूरे अमरालिस बले और इदक ये जोन रहो श्रीमती डालेश्वरी पांडे और ये कितरो नगत ये कला से मन लगे कि गोटो गीत गाओक बल जानो लिखुक बल जानो तो और कितरो अच्छा सांग सोच बल एक चीज के ने
1: हाँ।
2: और दक ये ता भेंट करू बिता रहो सी आर कश्यप
1: हाँ।
2: तो मैं बोलते रहे मिटकी
1: हाँ।
2: तो मोटरा तबे बोले अच्छा बड़े दखा दे ऐसे ये भी समय बल आसे तो काई नगत गीत होले बोले
1: हाँ
2: नगत लागती और अच्छा लागती ने
1: हाँ तो हाँ मच मुंडरा ने आसे एक गोटो गीत और एक गीत दिलीप कुमार पांडे और उन मंचो संगवारी मंचो
2: आले
1: आले फिर एक गीत के बले आमी सुनो और हम चे दादा दीदी मन के बले सुनाओ।

0: तो मिटकी
1: हाँ
0: का है रसिया गीत को सुना ली सुबल ने जागा
1: हाँ
0: दादा मन। और गीत कुरिया मंचो नाव रहे दिलीप कुमार पांडे और उनचो संगवारी मन।
1: हाँ
0: और गीत के सुने तो उसने नाचुक मन कर ली। तो मैं बोलते रहे कि असन और कई बल गीत होती तो और बले नगत लागती।
1: हाँ आले दादा तुई बल सी साले गोटक और गीत के सुनान दे उन्हें और ये जोन गीत कुरिया मना ते मन के पाचे चीतावा
0: आले
1: आले फिर सुनू फिर गोटक और गीत के
2: की करिए का जो हम गाला।

0: हाँ तो काय रसिया गीत के सुनालीस मांतर मिटकी
1: हाँ
0: नाचुक नाचुक भाव तरह मांतर काय करुआ सभी मच बल पाए बल दुख तरह उनका मैं बल होगा होले
1: आले भी ये गीत के कौन गाऊ रहा चीतालीस का
0: मके
1: सान
0: तो चिताल चिताल लागे से मिटकी ये कौन जाने ये शिवराम ना गरुण जो संगवारी मन तो ना हाथ
1: हाँ सत्यवल्ली सुनी
0: हाँ
1: मंडला
0: चितालो तो लागते रहे और दक का रसिया चो बले कार्यक्रम रली ने
1: हाँ
0: और दक भी आमी समय में इलुस तो समय अंजाव बल लागे से
1: हाँ काय हो
0: तो
1: से कि आज समय आने के लिए ने फिर काली के समय आने आई
0: हाँ
1: हो दे
0: यू खोए दे का तो मैं बोलते रहे आल तू ही मोटर के सकल और मैं बिता धरें से
1: आले हाँ फिर
0: हाँ तो आम चो गांव कार्यक्रम सुन तो सब पाए दादा दीदी सियान सजन और संग जोरिया संगवारी मन के जातो पूरे मैं धर्मू
1: और मैं मिट की
0: आमी दोनों करूं से जुहार।
1: जुहार।

आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का अपना कार्यक्रम आम चुगांव। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। नानोली कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए रामेश्वर और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोकगीतों के कार्यक्रम नानोली में रामेश्वर और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत।

नानोली कार्यक्रम में आप सुन रहे थे रामेश्वर और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। पीला मन का जो गोट कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कल्पना चावला पर कार्यक्रम। प्रस्तुति है फूल सिंह कश्यप की।

पिलामन का जे गोट कार्यक्रम सुनतो सपाय पिलामन के मचो बाटले कुबे कुबे मया हाउर लाड दका पिलामन आमी रोज दिना महापुरुष मंचो हाउर कई महान योद्धा मन होसोत नाले मान भारत चो जुन महान बेटी मनात हुन मंचो जीवना के सांगुन से दका आजी बले मैं तुम चुका जे महापुरुष जसन माँ महिला होली बल्ले ने महान जुन बेटी मन होली उन मंचो जीवना के सुनाए दे मांतर उनचो पहल ए गोट के तुम्हें सुना। एकलो पीला जोन हाय उन पीला बेरा घर चो छत ने जाऊन बातीन बद्री के दकुन बलते रहे। मैं एक दिन ये तारा मन लगे जाएं दे पीला मन तुमन मन बले बद्री के दकुन केबे सोच विचार ऐसे होती कि ये तारा मन कितरो चमक सोत काय आमी बले उन तन जाऊक सकूं। पीला मन तुमन मन लेख कर लासोती ने कल्पना ए सपना दखली आउर उन्हीं सपना चो पाटे गेली एंदा सपना पीला मन जान लासोती कि आज चो गोट में हानले से कल्पना चावला चो जीवना चो उपरे। पीला मन गोट मैं सुनाएं दे हाले तुम्ही नगद बसुन बातें सुना। भारत चो महान बेटी कल्पना चावला हरियाणा राज्य चो करनाल नाचो जन सर ने जन्म दरुन रहोत उन मंचो जन्म जो है 17 मार्च 1962 ने होली। उनचो बाबा चो नाव श्री बनारसी लाल चावला और उनचो आया चो नाव संज्योति देवी रहे। कल्पना अपलो परिवार ने 4 भाई बहन ले सब ले नानी रली घरे उनके सफाए मयाले मोन्टू बलते रहोत। कल्पना चो शुरू चो जन पड़ी है उन टैगोर बाल निकेतन ने होली। कल्पना जब 8वीं ने हमर ली तो उनके इंजीनियर बन तो मन कर ली। उनचो आया उनचो बेटी चो मन विचार के समझुन बातिन उनचो बारती का जो खूब मदद करते रहे। मांतर उनचो बाबा उनके इंजीनियर नी बनुक बलते रहे उनके डॉक्टर नाले शिक्षिका बल्लने मैडम बनाऊक चाहते रहोत। मांतर कल्पना पिलाबेरा लेची अंतरिक्ष ने जातुर सपना दखते रहे। कल्पना लगे नंगत मेहनत करतो लगन हाउर काम करतो आदत असन गुण रली। कल्पना काम काजे टग हाउर आहार ओलन बले डर तो बीती नहीं रली। कल्पना छावला जो ना उनके ऊपरे उड़तो ने कुबे मन रहे और उन जे आर डी टाटा बल्लने जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ले प्रेरित रली। बल्लने रतन जोन जे आर डी टाटा रहोत उन भारत चो विमान चालक बल्ले ने जात चलातुर रहोत और भारत चो सब कुबे बड़े उद्योगपति बल्ले रहोत। कल्पना चावला शुरू चो पढ़े ही टैगोर पब्लिक स्कूल करनाल ले पढ़ ली और उनचो ले उन एरोनोटिकल इंजीनियरिंग चो पढ़े ही पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ ले कर ली। आई करते करते 1982 ने इंजीनियरिंग जोन अभियांत्रिकी बुलवात उनता ने स्नातक चो उपाधि दर ली। कल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका का जे 1982 ने गेली और 1984 ने MSc वैमानिक अभियांत्रिकी ने विज्ञान निष्णात चो उपाधि टेक्सास विश्वविद्यालय आर्लिंगटन ने धर ली और कल्पना 1986 ने दूसरा विज्ञान निष्णात चो उपाधि मिल ली और 1988 ने कोलोराडो विश्वविद्यालय बोल्डर ले वैमानिक अभियांत्रिकी ने PhD बल्लने विद्या वनस्पति चो उपाधि मिल ली। कल्पना के हवाई जहाज ग्लाइडर और व्यवसायिक जहाज के चलातोर लाइसेंस का जे प्रमाणित उड़ातोर प्रशिक्षक चो दर्जा बल मिरुन रहे। उनके एकल और बहु इंजन वायुयान जहाज उली पानी जहाज होली उनमन काजे बल व्यवसायिक जहाज मन जुन होसत उनके चलातुर काजे बल लाइसेंस मिलुन रहे। अंतरिक्ष यात्री बंतुर फैल उन नासा चो सुप्रसिद्ध जुन हाथ उन वैज्ञानिक मतलब खोजाकारी रला। 1988 चो सरासरी ने कल्पना चावला चो एम्स अनुसंधान केंद्र काजे ओवरसेट जोन मेथड्स इंक चो उपाध्यक्ष रहुन बातिन काम शुरू कर ली। कल्पना उनता ने VSTOL ने CFD ताने कोच करला। कल्पना मार्च 1995 ने नासा चो अंतरिक्ष यात्री कोर ने मिल ली और उन 1997 ने पहली बार उड़तर काजे उनचो नाव के चुनुन रहो। तो फिलामन जानुआ नासा खाया नासा जोन आय उनचो पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जोन के नासा बुलवात। ये संयुक्त राज्य अमेरिका चो सरकारी जोन है उनचो बाग है। ये संस्था अमेरिका चो अंतरिक्ष कार्यक्रम वैमानिकी और अंतरिक्ष ने कोच कर तोर जिम्मेदारी ये चो ऊपर रह से। तो उसने उनचो पहल जोन हाथ अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 के 6 अंतरिक्ष यात्री मन चो दल चो ईसा चो बाटले अंतरिक्ष सटल कोलंबिया ने STS-87 ने उड़तर शुरू होली। कल्पना अंतरिक्ष ने जतुर बीतीन भारत ने जन्म लो पहल मेहरार बल्लने महिला रली और अंतरिक्ष ने उड़ा तो बीतीन भारतीय मूल चो दूसरा माने रली। उनचो पहल राकेश शर्मा सन 1984 ने सोवियत अंतरिक्ष यान ने जाऊन रहे
है। कल्पना आप लोग पहला मिशन के 1,04,00,000 किलोमीटर बल्लो ने 65,00,000 मील दूर ले जाऊन बातिन 365 घंटा ले अधिक ने पृथ्वी चो 252 हार जोना है किंदरला। STS-87 चो बाटले स्पार्टन उपग्रह के संगातोर काजे बले जिम्मेदारी रेली। ये नस्लो उपग्रह के दर तोर काजे विंस्टल स्कॉट और तकाहो दोई के अंतरिक्ष ने जाऊ पड़ून रेली। 5 महीना चो जांच पड़ताल चो पाचे नासा ले कल्पना चावला के ये मामला ले एकदम दोष मुक्त करला। STS-87 चो उड़लो पाचे चो काम काज पूरा होतो के कल्पना अंतरिक्ष यात्री कार्यालय ने तकनीकी पद मन ने काम करला। उनके उनताने उनचो काम काज के उन संगवारी मन विशेष पुरस्कार देउन बातिन मान सम्मान दिला। 1983 ने उन उड़ान प्रशिक्षक और विमानन लेखक जीन पेरे एरिसन ले मिरली और उन संग बिया कर ली। बिया ओन 1990 ने उन संयुक्त राज्य अमेरिका चो नागरिक बन ली। भारत का जे कल्पना चावला चो भारत ने सबले आखिर जोन एतर रली उन रहे साल 1991 और 92 चो। नुआ साल चो छुट्टी चो समय रहे उन और उन चो जन मनुकात उन दोनों बुलू के उन रहो। सन 2001 ने उनके STS-107 चो चालक दल चो हिस्सा गाई ले उन चो दूसरा हार उड़ान उड़तो काजे चुनला। समय समय ने कई परेशानी विवाद और तकनीकी समस्या चो काजे हर बेरा जोन है बेर होते गेली। 26 जनवरी 2003 के कल्पना ये सपा परेशानी लेबल कोलंबिया ने चेगुनबातीन विनाशरत जोन STS-107 चो मिशन के शुरू करला। उनचो जिम्मेदारी मन ने रहोत स्पेस हब वाले फ्री स्टार जोन लघु गुरुत्व चो प्रयोग काजे कर्मचारी दल 70 आर प्रयोग करला। जोन चो गाइले पृथ्वी हाउर अंतरिक्ष विज्ञान उन्नत तकनीक विकास अंतरिक्ष यात्री मन चो दका रखा चो पढ़ी करतोर बल ने अध्ययन करतोर वैसे कोलंबिया अंतरिक्ष यान ने उनचो संगे आउर बल जातोर लोग मन रहोत जोन मंचो नाव है कमांडर रिक डी उजवन पायलट विलियम सी मेकुल माइकल फी एंडरसन इलॉन रामोन डेविड एम ब्राउन लोरेल बी क्लॉर्क। अंतरिक्ष अमरलो बीतीन पहल भारत चो जोन मेहरा बल्लने महिला कल्पना चावला के दूसरा आर चो अंतरिक्ष यात्रा ची उन चो आखिरी आर चो जातोर बीतीन होली। सफाई गई चो खोज गोड विचार चो पाचे वापस जोन आमचे पृथ्वी ने एतो समय ने पृथ्वी चो जोन वायुमंडल ने अंतरिक्ष यान चो एतो समय खूबे भयंकर घटना होली। उन घटना एवे तक इतिहास चो गोट होली से हल इतिहास ने उन घटना एबल सुरता हासे। नासा ची नहीं पूरा विश्व भर का जे एकुबे बड़े दुख चो घटना रेली। 1 फरवरी 2003 के कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी चो कक्षा ने ओलतो समय ची टूटून बातिन बिखर ली। दखते ची दखते अंतरिक्ष यान और उनता ने बसलो सातो यात्री मंचो।

सम्मान बल मिलन रहे जैसे उनचो पुरस्कार ने हासे कांग्रेस नल अंतरिक्ष पदक छो सम्मान बल्लो ने ये सम्मान संयुक्त राज्य कांग्रेस गाइले कोनी बले अंतरिक्ष यात्री जोन आप लोग कर्तव्य छो अच्छा काम करुन राष्ट्र और मानव जाति छो जोन कल्याण कजे खूबे नंगत खाम करतर लोग के देतर होए से और असनिन दूसर पुरस्कार आए नासा विशिष्ट सेवा पदक ये बले संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन गई मृत्युर सबले बड़े पुरस्कार है। ये पदक संघ सरकार चो कोनी बल सदस्य के देख सकोत जोन सैन्य अंतरिक्ष यात्री और नागरिक कर्मचारी दोनों शामिल हासोत। नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक ये राष्ट्र वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन चो सम्मान है। ये कोनी नागरिक नाले सैन्य अंतरिक्ष यात्री पायलट मिशन विशेषज्ञ पेलोड विशेषज्ञ अंतरिक्ष उड़ान मिशन और कोनी बल अंतरिक्ष यात्री के आपलो व्यक्तिगत जन बागदर लोर चो समयाने खूब अच्छा उपलब्धि और सेवा काजे देतर है से। कल्पना चावला चो सुरता ने भारत और अमेरिका ने कई संस्था और ठान मंच नाव संगाला से जनमहा जसन की 5 फरवरी 2003 के भारत चो प्रधानमंत्री घोषणा करला कि उपग्रह मंचो मौसम श्रृंखला मेटसेट जोन आए METSAT कल्पना चो नाव ले हो दे हाउर भारत चो पहला मौसम उपग्रह मेटसेट एक भारत गाइले 12 सितंबर 2002 के कल्पना एक नाव ले शुरू होली। टेक्सास विश्वविद्यालय चो आर्लिंगटन जोनता ने कल्पना चावला एरोस्पेस इंजीनियरिंग ने मास्टर विज्ञान चो डिग्री 1984 ने दरली उच्च सम्मान ने गोटोक सेनागार कल्पना चावला हाल चो नाव ले 2004 के नाव संगाला। टेक्सास विश्वविद्यालय एल फासो ने भारतीय छात्र संघ ISA गईले 2005 के मेधावी छात्र मंचो जोन स्नातक काजे कल्पना चावला यादगार छात्रवृत्ति कार्यक्रम बल शुरू करला। कल्पना चावला पुरस्कार कर्नाटक सरकार बाटले पुरस्कार गईले 2004 ने युवा महिला वैज्ञानिक मन काजे शुरू करला। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ने लेखी मंचो रतोर जोन ठान है बल्लो ने उन मंचो छात्रावास कल्पना चावला चुनाव ने आसे उनचो संगे संग INR काजे 25,000 रुपया गोटक पदक और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विभाग चो सर्वश्रेष्ठ छात्र काजे प्रमाण पत्र और पुरस्कार देतर शुरू करला। नासा ने कल्पना चो नाव ले गोटक सुपर कंप्यूटर के नाव संगाला से। फ्लोरिडा प्रौद्योगिकी संस्थान चो से उन अमर आसे काय असन नुआए की उन गोटक तारा है उन आसमान बल्लने अमचो बद्री ने अरमेसा रतोर तारा है उन अरसमिया ने उपांतर नुहाय और कल्पना चावला बोलून रहोत सपना ले सफल उतर तक गोटुक बात सुन तो संगे संगे गोटुक गीत बोलो नाम के कितरो अच्छा लागती ने तो आले सुना है गीत के।

हाँ, पिलामन एक गीत तो सुनलू तो जातोपुरे पिलामन का जे गोट कार्यक्रम सुन तो सपा बड़े नानी पिलामन के मजबाटले कुबे कुबे मया हौर ला।

पीला मन का जे गोठ कार्यक्रम में आप सुन रहे थे कल्पना चावला पर कार्यक्रम। प्रस्तुति थी फूल सिंह कश्यप की। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार संध्या और न्यूज़

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
3: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एंटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
2: R&D and innovation oriented businesses.
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co

0: www.radiomirchi.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
3: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
2: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
4: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
2: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
5: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय रात के 9:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए जीवना जो शोर कार्यक्रम में साई महिला स्व सहायता समूह लौंडीगुड़ा से सोनमती घोष से भेंटवार्ता। इनसे बातचीत कर रहे हैं बलबीर सिंह कच्छ।
1: रेडियो सुन तो भाई बहन मन सबके खूबे खूबे सेवा जोहार। जसन की आमी आपन मन के कई कसन बले ने महिला स्व सहायता समूह ने बले ने स्वरोजगार हिसाब ने काम कर सोत आरु बले ने आप लो जीवना का जी आर्थिक उन्नति करुण बाती परिवार के हरी कुदिम ने चला सो तो असने आमी गोड बात करूं से तो आज बले मैं महिला दीदी संग गोड बात करें से सब ले आ गए तो चुनाव आरु गांव चुनाव संग हाँ।
2: सब दीदी मन के जय बिहान। मच नाव आए श्रीमती सोनमती घोष और मचो समूह चुनाव आए सही महिला स्व सहायता समूह।
1: अच्छा
2: उन समूह ने मैं अध्यक्ष जो कार्यकर्ता करें मतलब कार्य करें।
1: अच्छा, से कौन
2: गांव मचो गांव आए बेड़ागुड़ा पंचायत।
1: अच्छा
2: तोकापाल
1: तोकापाल विकासखंड।
2: हाँ विकासखंड तोकापाल।
1: अच्छा सोनमनी दीदी ये सांग जसन की तुम जो जन ये स्व सहायता समूह बनालो कितलो दिन होली जाले।
2: हम जो समूह बनालो रे बेदक 2014 ने हमी जुड़ रलू समूह ने तो समूह ने जुड़ून हमी असनी कार्य करते रहू।
1: अच्छा
2: तो पाचे बोला बाहर ले इला सरमन और फिर 2016 ने हम के समूह ने और जुड़ लू हमी गाँव चो लोग के पूरा एबे हम चो गाँव ने 23 समूह आसे।
1: अच्छा पूरा
2: पूरा 23 समूह आसे और हम चो जो क्लस्टर आए नहीं नारी महिला स्व सहायता समूह क्लस्टर आए हम थाने में 7 साल तक अध्यक्ष रहे।
1: अच्छा।
2: और हम चो ग्राम संगठन आए बोले हम चो ग्राम संगठन पूरा 16 ग्राम संगठन आसे हम चो मतलब तोकापाल पंचायत विकास ने समझ
1: होता
2: 16 ग्राम संगठन आसे।
1: अच्छा
2: तो ग्राम ये बे हम चो हर गांव गांव ने गोट गोट बनालू से ग्राम संगठन।
1: अच्छा। जसन
2: हम चो ग्राम संगठन चो नाम है सौभाग्य महिला ग्राम संगठन।
1: अच्छा ये बोले ना ब्लॉक ने होए से।
2: हाँ ब्लॉक ने होए से ये ब्लॉक बोलू बे ब्लॉक ने 4 क्लस्टर आसे हम चो ब्लॉक ने।
1: अच्छा
2: जसन रायकोट क्लस्टर होली गोटो करंजी क्लस्टर आसे गोटोक जानो तोकापाल क्लस्टर आसे और गोटोक क्लस्टर हुन लौंडीगुड़ा क्षेत्र ने पड़ू आए समझ हमची ब्लॉक ही हुनी बले आए अंतर्गत।
1: अच्छा
2: तो 4 क्लस्टर आसे।
1: अच्छा बले ने तु आगे ये क्लस्टर चो बले ने पद ने
2: उतर। हाँ मैं 7 साल तक हम चो क्लस्टर चो पद ने कार्य कर ले से।
1: अच्छा बले ने क्लस्टर ने बले उदला है कितलो स्व सहायता समूह रला तुचो क्लस्टर।
2: मचो क्लस्टर ने रलो बेरा 300 रला।
1: अच्छा 300 स्व सहायता समूह
2: समूहला। हाँ
1: अच्छा
2: ये बोलू बे मचो ये क्लस्टर ने मचो क्लस्टर ने।
1: अच्छा
2: 300 रला ए बे 75 आसो।
1: अच्छा
2: क्लस्टर ने समूह लोग।
1: अच्छा बोले ने क्लस्टर जो जो अध्यक्ष है सुन चुका है काम रहे से जाले
2: क्लस्टर जो अध्यक्ष बोले तक ये पूरा भार रहे से क्लस्टर चो जितलो बल ग्राम संगठन ले पैसा ही हुआ है और जसन जिला ले बोले पैसा ही हुआ है तो हुन जिला चो पैसा के हमके क्लस्टर ले ग्राम संगठन मन ने वितरण करते रहे।
1: अच्छा,
2: मतलब बांट तो रहे
1: बांट तो रहे।
2: हाँ बांट तो रहे तो ग्राम संगठन मन ने जसन 60,000 एक समूह के देते रहे और 15,000 जनो अनुदान ने देते रहे।
1: अच्छा,
2: पहले 6 महीना हो लिया ले 6 महीना बाद ने हम 15,000 दे।
1: अच्छा
2: हुन मन के अपना मतलब कई बल काम करो ते पैसा खिंड कागर हो लिया फिर 60,000 दे।
1: अच्छा
2: 60,000 चो बाद लेने उनचो बाद ले हमी देवाऊ जसन लोन फार्म भरुआत काम करुआत लेकिन मन लोन फार्म भरुआत लोन फार्म भरला बोले जनपद ले जिला ले पास हुआ है।
1: अच्छा
2: तो को के 1.5 लाख हुआ है कौन समूह के 2 लाख हुआ है कौन समूह के 3 लाख हुआ है असन 10 लाख तक मतलब देवात योजना से।
1: अच्छा
2: तो ये बे हम चो समूह 5 साल होली।
1: अच्छा
2: हमें 10 लाख रुपया धरू से।
1: अच्छा
2: 10 लाख धरू से और सब अपना अपना व्यक्तिगत करू से।
1: अच्छा
2: कोनी किराना दुकान करे से तो कोनी कपड़ा का दुकान बल करे से कोनी होटल करे से असन कोनी हाट बाजार कर सो। अच्छा। असन करू से सपाय लोग।
1: अच्छा बोले ने समूह ने पैसा धरून बाती बोले एकलान एकलान बोले तुम चु कर तो।
2: हाँ कर तो बीती आए।
1: अच्छा।
2: अभी तक अले सपाई लोग तो इकट्ठा हूँ हमी कर नहीं सकू।
1: हाँ।
2: कोनी खिंडी का अच्छा लोग बोले घर ले नहीं निकरो।
1: हाँ।
2: और कोनी गरीब लोग आसो तो अले हम जो बाहर बोल सो।
1: हाँ।
2: तो हुन मन निकरे सो घर ले बाहर।
1: अच्छा
2: तो हुन मन हाट बाजार कर सो और कोनी किराना दुकान करे सो।
1: अच्छा बोले ने ये तो बोले ने आपलान आपलान बोले खुद धंधा कर तो बीती बोले ने खूबे अच्छा बोले है कि
2: नहीं। लड़ाई झगड़ा बोल
1: नहीं हो
2: और 10 लोग चो 10 गोट बोले नहीं
1: हो। बोले ने आप लो हिसाब ने काम करते
2: करते रहे।
1: अच्छा हाँ तो बोले ने ये भी तू समूह चो अध्यक्ष आज बोले। हाँ तो बोले तू खुद का काम कर से जाले।
2: एबे मैं करे से मैं बल धर ले से लोन।
1: अच्छा
2: मातर मैं तक बिजनेस तो दुकान मांगून दक दुकान नी दे सो तो नी कर ले से पीला मन के दिले से पीला मन करून भाती आनंद दे हुआ।
1: अच्छा
2: हाँ पीला मन पटा हुआ तो घर ने कोनी बल व्यक्ति एक जन बल कर रुक सके।
1: अच्छा
2: लोन मैं धर ले तो उन लोन के पीला मन बल कर
1: बोले परिवार से कोनी लोग
2: कोनी लोग कर रुक सको।
1: अच्छा
2: और आप लो मतलब जोन बल परेशानी आए उनके दूर कर रुक सको।
1: अच्छा
2: आसान नहीं।
1: हाँ हाँ तो दक सोनमती दीदी ये सांग सबले पहले कि ये समूह के जो चला तो काजे बोलू बे जैसे कि भी थुबे कुबे सांग ली तो ये जो कहीं प्रशिक्षण कहीं सीखा तो बीती बोल आगे हो समूह ने
2: हो ऐसे हो हुआ है सीखा हुआ तो ये जो काजे बोल ट्रेनिंग गेलू रायपुर गेलू ए बाटे का परचन पाल ट्रेनिंग गेलू हुता गेले ने हुता सीखा हुआ कसन ब्याज धरुआत कसन पैसा पटात राय और कसन दे तो राय कसन उसील करत राय ये सब चीज के सांग हुआ था।
1: अच्छा
2: ट्रेनिंग ने बोले
1: ट्रेनिंग ने 10-10 लाख
2: 10-10 लाख धर लू 5,000।
1: अच्छा
2: ये चले से दुई किस्त पटली मतलब पटे से।
1: हाँ। अच्छा बोले ने ये 10 लाख धर सा बोल कहीं छूट रहे से।
2: हाँ ये ता बोले हम के ब्याज छूट मिलुआ है।
1: अच्छा।
2: हम ही समय ले अच्छा समय ले पटा लेने हम के जानू एक हार मिरली 40,000 रुपया और एक हार मिरली हम के 60,000 रुपया असनी करुन करुन हम के मिरते जाऊआ है।
1: अच्छा
2: और बचत बल करूँ ये हम चो 4 लाख 4.5 लाख हम चो बचत आसे बैंक।
1: अच्छा।
2: ने तो उन्ने कम पैसा होते रहे तेबे हमें बोलू एक खिंडिक बढ़ाऊ तो ये हम 300-300 रुपया करूँ एक व्यक्ति महीना दिन ने
1: हर महीना।
2: हाँ
1: अच्छा
2: और 10 जन चो 3,000 जमा करूँ।
1: अच्छा
2: हुनी पैसा
1: महिला मन बोलू भी स्व सहायता समूह बना लो बेराले कहीं बदलाव देखा दे से
2: बहुत बदलाव होली। अभी तक जसन बिजनेस बल कर सो काम धाम बल कर सो तो बदलाव होली पिंदा ओड़ा बल बदलाव होली गोट बात बल बदलाव होली और धंधा पानी ने बोले लोग के फायदा हो से तो उनने ये लेडीज बल बदलाव होला मतलब बाल मन बल बदलाव होला पहना ओड़ा बल बदलाव गोट बात बल बदलाव होली और कहाँ बल जाए सो चाले अबे नी डर होला।
1: हाँ।
2: ना आगे तो घर ले दुआर नी नी करते रो।
1: हाँ हाँ।
2: तुम्ही मन बल तो जान साहस है।
1: बलन पूरा झिझक
2: मतलब नी कर ली।
1: हाँ हाँ।
2: ये भी जसन कोट कचरी बल जाए सो तो ये भी बाल मन गोठे आए सो।
1: हाँ हाँ।
2: आगे तो काय पुलिस आए काय आए बलन डरते रला।
1: हाँ हाँ।
2: डरते रहला कि नहीं
1: डरते
2: बाट गोट गाड़ी आवाज जिले बल डरते रहो
1: ये
2: बे नहीं बाल मन बल कोना ये इस दंड जाऊं दो कु बल सो।
1: अच्छा
2: असनी हो ऐसे
1: बल्ले ने कहा कि ये स्व सहायता समूह जो बाल लेके कितलो हिम्मत दे से।
2: हाँ हिम्मत दे से
1: अब
2: तक राती बल नहीं निकरते रहला बाले कई काम होले ना अस्पताल बल जाए सो राती बेरा बोले है नाले आगे कसन जावा गोटक बल मनुक पिला नहीं गेलो बोलते रहला ये भी नहीं सोचो तू सर सब ने आगे आस।
1: अच्छा तो दक इतलो अच्छा तुम्हें जो समूह बना ला से ये भी जैसे कि तुम्हें 10-10 लाख रुपया हर साल मतलब असन निकरा है साज बोलू भी।
2: हाँ।
1: आगे और कहीं असन सोच तुम चल लगे
2: हम के तो बहुत बड़े सोच आसे।
1: अच्छा।
2: और ये भी हमी तो खिंडी का हम चु जगह मन कम हो ऐसे।
1: हाँ।
2: नाले हमी काजू मशीन बले ता मंगा रलू।
1: अच्छा
2: काजू ने बले हम चो नाव रली तो जगह साटे झोली और काजू खिंडी कम मिलो कारण ने हम मशीन नहीं चला लू।
1: अच्छा
2: काजू मशीन
1: हाँ
2: तो हुन मशीने भी पढ़ ली जान।
1: अच्छा, आसे
2: आसे और बाल मन भले सिलाई बुनाई बल जान सो।
1: अच्छा
2: सिलाई बुनाई बोले एबे अंगूठा लगाते रहला उन मन एबे दस्तखत करुक बोले सिकालू उन मन के बैठक ने सब चीज के मतलब खिंड खिंड धीरे उन मन के बदलाव आनु
1: अच्छा तो अब तक कई जसन की ये जसन काजू मशीन आन लू बोलसी सिलाई चो मशीन बल आसे तो असन कई बड़े शेड असन दुकान असन कई मांग सरकार
2: ले करू से ए भी बोले जसन ट्रेनिंग हो से अड़ावल हुआ है ट्रेनिंग चो बाबू सेमरा
1: अच्छा
2: तो ये था ने सब चो ट्रेनिंग सिखा हुआ था तो ये हम चे लगे कि जगह साटे जो से उन असन बन तो लाइक जो जगह हो तो रासे तेबे तो 10 समूह गोटक थान काम कर दे और ये छोटे मोटे ने 10 जन 5 जन नाले सफाई समूह कर सोत कोनी थान मसाला बनाए सोत और कोनी थान अगरबत्ती बनाए सोत असन काम मन बल कर सोत समूह लोग
1: अच्छा
2: ये सब कर सोत
1: बोले असन चीज के दकुन बाती तुम चो समूह चो महिला मन के बोल के निक अच्छा हिम्मत
2: लागे से हाँ ये बेदा का कितली कमाले बल मनुक चले खिंड बायले आगे चे आसते हाँ हाँ हाँ नौकरी चे लोग खिंड बदल लास बोल भून मन चनाले असनी गांव चो व्यक्ति तो बायले मन खिंड बहुत सुधरला
1: अच्छा
2: हाँ सुधरला से
1: बोले ने सबले मूर गोट ये आए कि महिला मंच गोटो की एकता होली कमा तो गोटो चीज की सीखला
2: और ये बे तक गांव पर अनबल का ही खिंड झगड़ा लड़ाई हो तो समूह लोग आगे निकरे सो हुता बोले हम ही जाऊ और उन मन के समझाऊ ये ता अगर ये ता नहीं समझ ला बोले आगे बढ़ुआ तो नाल गांव नहीं समझा
1: अच्छा
2: उन काम बोले हम करू
1: अच्छा बोले तुम चो तुम पंचायत ने आला तुम चो गांव असन कहीं घटना असन होली से समझा
2: नहीं असन घटना मन होते चिरु है
1: अच्छा
2: जाले उनकी काय के पूरा घोरुआ समूह ने बोसुआ उनके निपटान भाती उनके निपटारा करुन दे
1: अच्छा
2: असन हुआ है
1: असन
2: अरे बे जसन ग्राम संगठन होले बल हम के हाक दिवा था मैं उन थाने बल जाऊंगा
1: अच्छा ग्राम संगठन
2: हाँ ए पंचायत ने बल काई काम हुआ है तो उता बल जाऊंगा
1: अच्छा
2: हम के मतलब हर जगह जातो आदेश आसे कि ये तक कसन इली सर कसन बोल सी बोल तो गोट नहीं है हाँ इतलो दिला सरकार
1: अच्छा
2: आदेश
1: बोले तुम चो कहीं गोट आए कहीं सुझाव आए मौका मेरे से
2: हाँ मौका मेरे से हम के
1: सांग तो काजे
2: और उन्हें समझा तो काजे जैसने बे कोनी आदमी बोले बिया करे से लेकिन मन की छड़ून बोल दे इसो तो उन चो बोल निर्णय हम चो तन धरुआ
1: अच्छा
2: ये सब काम मन के हम सबके संगुआ
1: अच्छा
2: तुम्हें आगे नहीं बढ़ाता आगे एता ही निपटाऊ था एता नहीं निपट लिया ले हम चो सखी सेंटर आसे ता बोले हम ही
1: अच्छा
2: असन काम मन करवा
1: अच्छा बोले ने पूरा जोन सामाजिक जोन काम आए बोलू रीति नीति ने बोल तुम जो सोचा था समूह मंच लोग भाग धर सब
2: हां सब ने भाग धरे
1: सो अच्छा हां ये तो बड़े हर एक उद्यम चो गोटा
2: है अले खिंडिक बल गांव विकास हो बोलू से हम बोले एकदम गांव कुड़ान भोकवा नहीं रो खिंडिक चलाक बल हो तो रा से है कि नहीं सभी तो पढ़े लिखे नो
1: आत तुम तो है
2: उन्हीं कारण ने हम खिंड के मन की जागरूक करूँ
1: अच्छा तो दक ये तू चो सांग तो गोट हिसाब ने ती बल्लिस की महिला मन बल्ले ने दाय किनिक जागरूक होला आगे सो झिझक मिटली तो उनमन चो परिवार चो जोन मनुक मन चो ने बल कहीं असन फरक दखा दे ऐसे
2: हाँ खिंडिक फरक दखा दे ऐसे एबे मनुक के बल सुधारा बोले सो थाम के
1: अच्छा
2: मनुक के बल सुधारा और मनुक के बल समूह ने जोड़ा बोले सो
1: अच्छा
2: असन असन बोले सांगे सो मैडम सर मन हाँ, सांगुआत बैठक ने ये वात हम पूरा गांव चो लोग रूंगा
1: अच्छा
2: हाँ और जैसन काई के निर्णय नहीं करुक सकलु बल्ले सर मैडम हुआ तर करुण देवा उन मन बल करुण देवा
1: अच्छा तो आले सोनमती घोष दीदी तू इतलो अच्छा तुम चुजन सोसायता समूह चो बल्ले ने जितलो महिला मंच उन्ती बाढ़ती आर्थिक होए से मंत्र संगे संगे बोलो भी जोन सामाजिक काम ने बोल तुम चो निपटा तो काजी भागीदारी जो मौका मेरे से आगे जो नहीं मिलते रह ली ये भी पूरी उन बाती बल्ले ने सब के गोटक सूतुर ने आंतो काजे बल्ले ने तुम चो सोच मन बाढ़ते जाए है कि नहीं तो आल इतलो अच्छा गोट बात कर लू आल खूब खूबे जुहार
2: जुहार
1: रेडियो सुन तो सपाए भाई बहन मन के सेवा जुहार।

जीवना चो सुर कार्यक्रम में आप सुन रहे थे साई महिला स्वसहायता समूह बेड़ागुड़ा की अध्यक्षता सोनमती घोष से भेंटवार्ता। इनसे बातचीत कर रहे थे बलबीर सिंह कच्छ। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: लीजिए अब सुनिए समसामयिक विषय पर भेंट वार्ता कार्यक्रम। राजू राम बघेल से इनसे बातचीत कर रहे हैं बलबीर सिंह कच्छ।
3: सपाय भाई बहन मन के सेवा जोहार। जसन की आमी बल्ल ने बस्तर चो जितलो बले मूल निवासी लोग मन आसुत उनमन चो जोन उन्नति बाढ़ती बल्ल ने कसन होए से आरु कई कसन समाज मन अपलान संगठन बनान बाती बले समाज चो उन्नति बाढ़ती समाज चो विकास काजे कई काम धाम कर सोत तो असनी ये सब गोड बात कर तो काजे आजी आमता ने इला से तो सबले पहले मैं तुम चो नाव के जानू चाहे से और बोले तुम जो समाज जो जो संगठन होने से उनता ने काय पद ने आशा से
4: दादा मुझे नाव राजू बघेल आए और मैं महाराष्ट्र समाज जो बस्तर संभाग जो संभागीय अध्यक्ष पद ने आसे।
3: अच्छा हाँ, तो राजू बघेल सबले पहले तो ये जानू चाहे से कि जैसन कि तुम जो सामाजिक जो संगठन आए बोलो भी एक बनाल और कितलो दिन सन होली जाले।
4: दादा ये हमचो समाजचो संगठन आजी 1984 ने हमचो बाप दादा मन बनाउरो और उन संगठन आजी बले 1984 चो बाद एबे तक बले उन संगठन चले से और समाजचो जगह जगह थोड़ी बातचीत करूं से और समाज चो उत्थान के बारे में बल सांगू से।
3: तो दक राजू जैसन कि तुम चो जो महारा समाज आए बोलू बे बल्ले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के जान लेने जैसन कि हम चो जगदुगुड़ा बलसोत जगतु महारा रलो आरु धर्म धर्म पूरा जो ने भी आसे धर्मु महारा रलो ये पूरा जगदलपुर शहर बल्ले ने कहा कि होनी मंच रहे बोलसो तो ये चुकी निक इतिहास के बोले मैं जानूक चाहे से
4: तो ये जो इतिहास है दादा जगतू चो और जगतू धर्मु जो दोन भाई चो रोत तो दोनों भाई बस्तर चो एक बहुत बड़े मतलब महापुरुष और एक जमींदार और बस्तर चो उपजास जड़ माटी जड़ काटी जगतू और धर्मुचो यता बेड़ा खाड़ा भूई बाड़ी खूबे ज्यादा रहे और यता अब इतिहास ने तो सपाई लोग पढ़ सोत जान सोत और हम चो समाज बोले उन इतिहास के पढ़ लू और जान लू। यता जगतू चो जो जमीन आए जगदलपुर ने पूरा जगतुगुड़ा उन चो नाव ने यता बसाहट रहे और प्राचीन काल ले बोले जगतू चो नाव ने पूरा जमीन जायदाद आसे।
3: अच्छा।
4: तो लेकिन एता गोटक समय जोन राजा एता ईला उदल दाए राजा फिर जगतू के खिनिक रतो काजे भूई मांग लो और दुई तीन किंवदंती मन आसे होता जैसन की जगतू जाऊ रहे कुंबड़ा कोट ने और रुन बट ले राजा ए बट शिकार खेलू के ऊ रहे और शिकार खेलू के ऊ रहे और जगतू चो गोटक ल मांग धरुन जगतू जाऊ रहे कुंबड़ा कोट ने और राजा आप लोग कुकुर शिकारी कुकुर के धरुन बती रहे तो लम्हाक दकुन भाती राजा जो कुकुर भयभीत हो लो भयभीत हो उन भाती तो राजा बोल लो ये तो काय बीती असन की जो छोटे माँ जानवर उन काय जानवर आए उनके दकुन बद मत कुकुर कसन भयभीत हो ऐसे उन लम्हा बोल ले उन खरगोश उनके दकुन भाती उन कुकुर भयभीत हो तो के राजा वापस मतलब होता पाजे कुन आप लो जो थाने मौत होता ने ये उन भाई तुम डेरा उदल जाए रियासत काल ने मौत होता बोल गोटक राजधानी रहे असन तो होता वापस गेलो और पाजे लोग उन जो मंत्री मन के जा तो उन कौन जगह आए मतलब कौन कौन लोग रहे सोत बोल उन भाती उनके ये था उन जो आदमी के पटा लो राजा।
3: अच्छा।
4: पटा तो के उन ये उन भाती पूछला ये कौन गाँव आए काय आए कसन आय असन असन तो एता कोन कोन लोग रहिसास तो एता फिर जगतु 13-14 कुड़िया संगे जगतु महाराज परिवार और हम जो मूल निवासी समाज और एक दुई परिवार जो लोग रोत फिर उनमन गेला और सांगला के असन असन बात आए तो असन असन बात आए तो जान भती मच कुकुर असन असन होली होते रहे तो तुम जो था काय भी तसन सकती है तो फिर हुन गोटो किवदंती आए और गोटो काय हुन जो फिर कुमड़ा कोर्ट जो नाव पड़ ली कुमड़ा कोर्ट हुन राजा जो हुन हाथी घोड़ा संग हुन एतरे और हुन कुमड़ा फूल के दकुन भाती हुन जो हाथी घोड़ा बोले बंद होली चल तो फिर तोर
3: अच्छा।
4: ते फिर वापस गेलो फिर वापस जाऊन बच फिर रहता पटालो फिर जग तू मन गेला उनच परिवार दो चार जन जाऊन बच असन तो काय असन शक्ति आसे ता काय असन शक्ति आसे कि ये सारा चीज असन हो ऐसे तो हम ही उता गोटोक देव के मानुआ काचन देवी हम जो इष्ट देवी आए और काचन देवी के तू कौन दिने आओ और उता पूछवा काय असन हो ऐसे तो फिर जोन फिर गोटोक कुंवारी कन्या जोन महारिन लेकी के देव चेक से रहे जो उन काचन देवी तो उन काचन देवी जोन महारिन लेकी के देव बसात हो के फिर राजा बोलो मने ये ता मौके असन असन होली माय कि मौके ये ता खिनिक के ता जो भूई ने कई शक्ति आसे मौके खिनिक रतो काजे खिनिक मौके जमीन चाहिए आए बोलतो के तू ये ता कसन हिसाब ने रुआ बोलते फिर उन लेकी बोल ली तु काय गजर हुआ जेता तो हम चो रहते जगह आए तु पर आया आदमी कसन ने रस ये था असन पूछताछ हो तो के दोनों दोनों जो बीच ने फिर अले ठीक है तु रहू आ साल खीनिक मैं तुके जगह दे से लेकिन तु मचो गोटो गोट के मानुक पड़े दे उन एक गोट आए कि तु जोन दिन बल तु शुभ काम के करते बस्तर ने रहून भाती तु जो घर चो हो या बस्तर चो कर तो मेरा ती पूरे हो से या जसनी बल तो उदल दाई तू के मौके प्रथम पूजा तू के करुक लागे दे असन बाती असन बात हो तो के फिर उनके खिनिक रतो का जी भूई दिला
3: दिला
4: हाँ। दे तो के फिर उन पे रहता आसे रोन भाती जसन की अबे उन गोट ने आजी बोले हम सपाई लोग जानू से कि प्रथम पूजा अगर दशहरा बेरा होले हम चो काचन देवी चो प्रथम पूजा और फूल मुंदा मांगुन भाती फिर दशहरा के उन संपन्न करे से। ये जगतु चो इतिहास है धर्मु चो इतिहास है ये मान्यता जो माटी पुजारी रो और उन ताने राजा संग पाचक चला चली होला और मन एक परंपरा ये भी बोले चले
3: चले से तो दक राजू तो इतलो अच्छा गोट के सांगलिस ना जसन के तुम जो जोन समाज जो जोन बल्ले ने जोन पृष्ठभूमि रोली आगे कसन रोली बल्ले ने इतलो सद्भाव इतलो बल्ले ने दूसर के जोन आपलों संगे मेल बाट होन बाती रतो गोटोक शिक्षा बल्ले कसन मेरे से दखा तुम जो समाज जो इतलो बड़े जोन भूमि बाड़ी के आए उनके बल्ले ने कहा है कि संगे रहूं बोलते भाईचारा चो हिसाब ने उनके देवन बाती बल्ले ने एता राजा बसा पट कर लो मंत्र दखा जक्षण तुम चो जो समाज चाहे मारा समाज आए बोलू भाई आम चो पूरा बस्तर संभाग ने बल्ले ने कहीं ची हो रीति नीति हो नाले कहीं सामाजिक काम हो धार्मिक काम हो बल्ले ने गोटोक योगदान बल्ले आसे जसन की आमी बाजा मोहरी बोलूं से वाद्य संगीत बोलूं से कहीं बोले शुभ काम ने तुम चो समाज चो लोग जब तक बोले ने वाद्य धुन नहीं बजाओ तब तक कहीं बोले जो धार्मिक काम है उन मूर हो उकलाए नहीं सके ये बोले का है कि समाज का जे खूबे बड़े योगदान है। मंत्र का है कि ये भी बोले जसन की पढ़ा लिखा होते जाए सो दिन दुनिया बदलते जाए से असन बोले ने समिया ने तुम चो जो समाज चो ये जो कला के आए बोले ने संरक्षण कर तो काजे नहा लिखने अच्छा उद्यम नहीं कहीं तो आर्थिक रूप ने मजबूत बना तो काजे तुम जो समाज बाटले कहीं असन बल्ले ने सोच ना लोग के समझाते रसन बल काम हुए से।
4: हाँ ये दादा कि हम ही जबले समाज संगठन बना लू तो हम चो जो संस्कृति आए हम चो जो कला आए ये गोट जो हम चो बाप दादा बेरा

0: जाले हुन देव बले प्रसन्न होन भाती खिल खिलते ये ऐसे और शुभ काम बल्ले शादी ने जोन बल जितलो मूल निवासी समाज घर ने बिया शादी हो ऐसे हुन जगह ने आमचो जो आमचो समाज चो लोग हुन मोहरी बाजा के बजाय सो हुन मन आजी बल हुन चो गोटक टीम आ से हुन मन के आग दिले उता जाय सो तार हुन मन चो घर चो शुभ काम के निपटाय सो तार हुन ताने बिया शादी हो और बस्तर ने शुरू ले हमचो जन संस्कृति आई कोटोक उन्नी धरती पृथ्वी जोन बोले हमचो जितलो बोले हम ये था मानु से माटी के बगना के नदी के उन जो गोटो का महारा के गोटो ऊपर बीता गॉड गिफ्ट दिलो मा उन उन कला उन मारा ही समाज लगे आसे और उनके हम के हमेशा बरकरार संगात हो रहा है हम जो उन गोटो संस्कृति हम जो कल्चर आए संस्कृति हमचो कल्चर है उनके बराबर हमके निभातो रहा है और हमके कितनी बोले जमाना आगे होले बोले हमचो जोन प्रकृति जोन हमचो स्टेटस आए उनके नहीं भूलकतो रहा है और सब बस्तर चो जितलो बोले लोग आओ आसू चाहे ओमूस हो चाहे नुआ हो चाहे दियारी हो चाहे गुड़ी ने गुड़ी बाजार बोलुआ हम उन सब मिलुन भाती जितलो बोले हमी बस्तर चो मूल निवासी मिलुन भाती उनका हम के करूं से और सब चो हम चो होली बाजा मोहरी और जो पनारा घर लेकिन फूल अंत पीती काय का ऐसा सब सारा चीज नियम वना से सब मिलुन जुलुन भाती हम काम के करूं से
1: ये तो अच्छा गोट सांगलीस राजू मांतर दक असन है बल्ले ने समाज ने बल्ले आजकल कई कसन बल्ले ने कहा है कि भ्रम जसन की हो से कि बल्ले ने कई समाज कई लोग असन उकसाय सोत बल का है कि एक हीन भावना ने दक सोत मंत्र आजकल चो जो आधुनिक जमाना ने आए यही कला के आर्थिक रूप में बोले दुई पैसा अमीर हो जैसन कि आज आमे दकों से कई शादी ब्याह मन ने कई बोले ने हर एक उद्यम चु काम ने डीजे वगैरह जो बजाय सो तारू बोले ने उन चु कीमत बोले ने देखा 50,000, 60,000, 1,00,000 तक बल जाए से तो कई असन बोले उनके परिष्कृत करुन बाती उनके बोले अच्छा टीम तैयार करुन बाती बोले तुम चु जो समाज चो जो संस्कृति उन बाचुन रो असन बोलते बोले उनचो परिष्कृत कर अच्छा ढंग ने बनात का तुम जो समाज बाटले कहीं प्रयास कर सास
0: दादा देखा ये तो हम ही सर्व मूल निवासी समाज संघ हम जो बैठक हो से और आप लो ढंग ले अपना अपना समाज ने हम ही समाज के जागरूक कर तो का अब देखा ये जो डीजे आए ये पुरखति ले नुआए ये बे अरहुन डीजे हम चो बस्तर चो जो रूढ़ीवादी जो व्यवस्था है उन बोले से कि हम चो कल्चर के बराबर ढंग ले हम के कर तो रहा है उनके हम के लोग के उजा दखा तो रहा है हम चो बीती के हम ये जो डीजे फीजे और नुआ बीती का और कई चीज के सीखवा ठीक है आज डेट ने किन लोग लग पैसा होली तो उनके दकुन भाती लोग दखा दखे ना ही उन काम के हम के नहीं कर तो रहा है क्योंकि हम चो पैसा बोल जा ऐसे और हम चो जो डीजे बाज तो लगे हम चो बाजा मोहरी होता दबुन जाए तो हम चो कल्चर को निबाट ना को निबाट ले दबे से तो मैं हम ही सब मूल निवासी समाज संग बैठक करूं भाती हम ही चर्चा हमेशा करते रहूं से कि ये हम चो जोन कल्चर आए सूरज पुरख तिलास उनके हम के कर तो रहा ये नुआ नुआ चीज बाट गेले हम चो पैसा बोल जाए से हम चो संस्कृति बोले फिर होता विलुप्त हो दे उन्हीं का जे हम चो जोन शुरू ले बाप दादा बेराल जोन चलते ऐसे उनके मान तो रहा है और उनके कर तो रहा है असन हम ही समाज के सांग से
1: अच्छा
0: और कुछ कुछ समाज ने डीजे बोले बंद कर ला हम ची मूल निवासी समाज ने तो असने धीरे धीरे धका दकुन दकुन तो लोग सीख तो रहा है दकुन दकुन लोग सीख तो रहा है तेवे तो हम जो समाज कोटोक अलग पहचान आ से बस्तर जो बस्तर एक अनुसूचित क्षेत्र है उन चो गोटोक पहचान अलग आ उन चो काज हम चो काज गोटोक कानून अलग आ से हम चो काज गोटोक नियम आ से हम चो काज उन सब के लोग ज्यादा जान तो कोशिश कर तो रहा है कि हम चो अधिकार जो मिरली से उनके आज तक हम चो बस्तर चो जितलो बोले समाज चो लोग के जानकारी चो अभाव कारण ने हम चो लोग ये बाट उन बाट भटक सो क्योंकि हम चो अधिकार के कसन प्राप्त करवा उनके जान तोर कोशिश करते रहा इतलो बड़े संविधान ने हम चो का विशेष विशेष एक ताकत दिल्ली से उनके लोग नहीं पहचान सकते उनके ज्यादा पढ़ तो कोशिश करते रहे उनके ज्यादा जान तो कोशिश करते रहे ते भी हम जो सारा चीज संस्कृति कल्चर हम जो रूढ़ीवादी व्यवस्था बचुन रह दे
1: ये तो अच्छा।

0: राजू बघेल मान्तर जसन की जसन सामाजिक संगठन जो जोन गठन होली आरु जसन की तु बोलिस 1984 ले मान्तर का है कि आगे बोले ने समाज चो लोग उतलो पढ़े लिखे नहीं रहो उनमन की उतलो जानकारी बोल नहीं रहे कि आमी समाज चो उन्नति बाढ़ती विकास करवा बोलते मान्तर ये भी जसन की तुम्हें पढ़े लिखे नौजवान लेका ना ले लेकी पूरी उन बाती समाज का जो असन कहीं ना कहीं कर साथ तुम्हें जानुक चाहे से कि तुम चो जो समाज नहीं आए अगर आमी जानुक चाहूँ तो शिक्षा चो क्षेत्र ने नाले फिर आर्थिक क्षेत्र ने बोले ने अब तक बोले ने कसन उन्नति बाढ़ती हुए से लोग लेका लेके मन पढ़ा लिखा हो बोले ने कहाँ तक अमरला से।
1: हाँ दादा ये भी जैसा इनकी शिक्षा तो क्षेत्र और आर्थिक स्थिति, अब आर्थिक स्थिति पहले बोले बोले हम जो जगदलपुर ने हो या बस्तर ने हम जो जन जमीन जायदाद गोटो हम जो शुरू ले हम ही खेती कमानी करूँ भाती खातो लोग रहूँ और खाते रहूँ, लेकिन हम के सबसे ज्यादा बस्तर ने आर्थिक स्थिति ले भी थोड़े कमजोर हामी ये कारण ने महसूस करूं से क्योंकि बस्तर ने सबसे ज्यादा जमीन जो खरीदी बिक्री होली बोल ले हम जो समाज जो गेली सबसे ज्यादा हम जो समाज जो जमीन आज ही बस्तर संभाग ने सबसे ज्यादा खरीदी बिक्री होली। तो आर्थिक स्थिति हम जो जोन था ने हमके जोन रोजी रोटी जो चीज हम जो हाथ ले गए तो स्थिति हम जो थोड़े मतलब सब जो बेड़ा खड़ा आसे हम जो समाज जो लोग लगे बहुत कम आसे बहुत ज्यादा रहे उन बहुत कम बाछली तो ये पहला हम जो आर्थिक स्थिति उनकी हम जो नुकसान होली। और शिक्षा जो क्षेत्र ने बोल ले कि ये बे हम जो लोग खिनिक शिक्षा ने जागरूक होला और पढ़ सोत पूर्ण भांति मतलब 10% 100 में 10% लोग खिनिक जागरूक पूर्ण भांति शिक्षित शिक्षा जो लाइन के धरला से और बस्तर संभाग ने उन फर्स्ट क्लास अधिकारी तो नहीं आत लेकिन छोटे मोटे पद ने और ज्यादा ज्यादा बस्तर संभाग ने 100-150 लोग आज ही नौकरी पैसा कर सो नानी चुनी नौकरी।
0: अच्छा
1: तो हम ही समाज ने ही बात के बोलूं से कि शिक्षा उन शेर नीचे दूध आए जोन पीऊ आए उनके भी झुक देवनु आए बोलते बाबा साहब लिख लो से तो उन्हीं का हम ज्यादा से ज्यादा शिक्षा तो इस तरह के जो गेली उनके फिर कसन आनो हम पूर्ण लिखा हूं भाती नौकरी पैसा करुण भाती फिर जमीन जायदाद के हमके बनौक लागे थे और अच्छा अच्छा पद ने रले भाई कलेक्टर हो जज हो कमिश्नर हो भाई यूपीएससी ने निष्का तो कोशिश करा बोलते हम पीला जिला को सांगों से पीएससी एग्जाम मन फाइट करा बोलते सांगों से ताकि ये पढ़ाई कर ले लोग बड़े पद ने रह ले लोग सुलूट मारुआत बोलते लोग के समझाऊ से और शिक्षा ही सब चीज ने उजागर करुआ है शिक्षा नहीं रह ले लोग भकवा बना हुआ चूतिया बना हुआ था और आगे हम जो बाप दादा के लूट ला सब आए लोग जान सास तो ये दिन और खराब जो बाटलो भी तिकबल सुरक्षित कर तो का जो हम जो शिक्षा ही गोटो के आज इस डेट ने हूँ नाम चो एक मतलब मेन शिक्षा बोलते बोलू से हम यार लोग के सांगों से गांव गांव ने जब बोले समाज चो बैठक होले पढ़े लिखे आदमी के कोनी चूतिया बनाऊ नू आत बोलते।
0: हाँ हाँ ये तो खूब नंगत गोट सांगलस कि बोले ने शिक्षा ही बोले ने विकास जो सबले बड़े हथियार है बोलू वे मंत्र राजू जसन की अभी तुम्हें सामाजिक संगठन हिसाब ने बोलू का है कि पूरा बस्तर संभाग जो अध्यक्ष बलिया था हम जो बस्तर संभाग ने बोलू बे 7 जिला आसे और सब जिला मन ने बोले ने तुम जो समाज जो लोग बोले बसला से तो ये मन के जागरूक कर तो काजी असन कहीं सम्मेलन आए नहीं तो कहीं शिविर आए नहीं तो कहीं बैठक आए तो असन बोले कहीं व्यवस्था तुम चो लग आसे हो से।
1: हाँ वो हम ये भी कहा दादा कि बहुत सारे लोग एबे नुआ जनरेशन नीली पुराना चीज के बुलक सोत और हम ही खिनी पुराना लोग मन संग भिड़ून भाती समाज ने तेबे पुराना लोग संगे भीड़ रले का आया उन जानकारी हम के हासिल हुआ है तेबे तो हम ही कोनी लोग लग जाऊन भाती सांगवा तेबे आज हम बस्तर संभाग ने भले मैं उम्र ने नानी आए लेकिन संभाग चो पद चो दायित्व ने आसे तो कोनी गांव ने दुख ने हो सुख ने हो गेले समाज चो हमेशा उन्ती बाढ़ती का जी गोट के कोनी जगह ने बल चर्चा करते चे रहूं से।
0: अच्छा।
1: और हम चो समाज बस्तर संभाग ने बैठक हम चो शुरू ले हम जिला स्तरीय हो ब्लॉक स्तरीय हो और संभाग लेवल लेवल हम बीच बीच ने कार्यक्रम करते रहूं से।
0: अच्छा।
1: और महीना ने दो महीना नाम चो बैठक होते रहू है और हम चो समाज के जागरूक करते हम ही हमेशा सामने आंसू और हम चो बहुत सारे जो साथी आसो सब भिड़न बात उन योजना बद्ध तरीका ले हम काम के करूँ से, क्योंकि हम चो संग सबसे ज्यादा बस्तर ने अत्याचार और शोषण हम ही होलू से, ये कारण ने हमके ज्यादा से ज्यादा बैठक करूँ भाती समाज के आगे बढ़ा तो काजे हम जो इतिहास के जानू रल तो शरीर खून खोले दे कि हम बस्तर जो माटी पुत्र जैसा आदमी आज हम जो संग काय व्यवहार और हम जो जमीन जायदाद सब के तकलीफ हुआ है दुख लागू है ये चीज के जान ले है। हम चीज घरे घरे 100-150 एकड़ जमीन रहे आज ये घर बना तो लाइक जो बाच ली तो कसन ने गेली हम जो बाप दादा शिक्षा रहे गुन तो गेली ये भी हम जो हर थाना ने चाहे कलेक्टर था खाने हो हम जो आदिवासी भाई मन कलेक्टर बन सो हम जो आदिवासी भाई मन तहसीलदार बन सो हम जो आदिवासी भाई मन थानेदार बन सो तो ये समाज के हुन गोट मन के हम समाज के जौन जौन लोग के सांगू से कि हम के बल पड़ता रहा और हुन पद ने जातो रहा हम के जो उन जगह ने गेले तेबे उन समाज जो समाज फोड़ुआ है जो समाज ने अधिकारी बनुआ तो उन समाज जो ऑलरेडी विकास बढ़ुआ है ये गोट मन के हम जगह जगह सांगू हुआ दादा।
0: अच्छा। हाँ। और राजू गोटो की ये बोले मैं जानू चाहे से कि जसन ने कई समाज मन ने बोले जो रीति रिवाज परंपरा ने आसे थी मंत्र कई चीज मन जसन की खर्चीला चीज मन बोले आसे फालतू चीज मन बोले आसे उनके कई समाज मन का है कि जसन की बंद कर कराए सो जसन शादी विवाह नहीं आए कहीं समाज जसन की कपड़ा लता कि नहीं बाटून कहीं टीका ने कहीं पैसा कोड़ी दी लेने परिवार का कहीं काम है दे नहीं तो कहे कि डीजे के नहीं बजान बाती तुम चो समाज चो लोक संग गोट बात करून बाती तुम चो समाज चो वाद्य यंत्र के प्रयोग करो असन असन कई परंपरा मना से जो समाज का जो घाटा है तो का असन बोले तुम चो समाज ने कहीं प्रयास हो सके।
1: हाँ दादा ये वोट जो पूछ लास ये बीती जो बात है कि हम जो मतलब ये जो फालतू खर्चा बोलते बीती गोट आए हो कि हम डीजे बजावा 50,000 खर्चा टेंट लगावा 2,00,000 रुपया खर्चा है साड़ी बांटवा हम जो 3-4 लाख खर्चा है 10-15 लाख रुपया ये मोचो घर ने कठो काम होली मोचो भाई चो बिया बना ले 2 बरस पहले तो मैं मची घर ने सबसे पहले मैं कपड़ा बाट तो भी थी के मैं बंद करा ले कि कपड़ा बाट तो भी थी ये कारण ने बंद करा ले मैं कि आज ही हम चो कपड़ा दे तो जो हम ही गोटो साड़ी देते रहूं उन साड़ी की कीमत 200 रुपया 200-150 तो मैं मचो घर ने आज बिया बनाए बोलते मैं 500 परिवार के साड़ी देते रहा तो 200 रुपया गुणित 500 होली 1,00,000 रुपया होली तो 1-2 लाख रुपया हम साड़ी के आनू से आनून भाती हुन साड़ी के हम देहूं से हम जो जितलो बोल सगा के यार लोग बाग के यार जितलो बोल हम जो मूल निवासी समाज जो लोग हम जो पर जो रीतिया से बोलते असन टाइप जो करते रहो लोग तो मैं ये कारण उनके बंद करा ले तो हम जो ये नेव भी तक 200 रुपया गेल ली लेकिन हम चो जो घर ने हम 2,00,000 जो साड़ू हम साड़ी जो आन लू और बांट लू उन तो फोकट होली उन्हीं कारण ने मचो घर ने मैं गोटोक ये साड़ी के बंद कर भाती गोटोक तू आल 30 रुपया जोन चीज हम चो उपयोग आ से उपयोग ने आ से उन चीज के कर ले का है उन नुकसान मतलब आप चलो मतलब पैसा चो नुकसान नहीं होए तो हुन कारण ने हुन साड़ी काम के बंद करा लू टेंट ने 2-3 लाख खर्चा करूं से हुन बोले एक फालतू जाए से है तो हुन पैसा मन के बचाऊन उन सारा चीज के जो नाम चो शुरू ले जो नाम चो कल्चर हिसाब ने लोग जानो तो बोलते हम चो जो रीति नियम आ से शुरू ले हुन हिसाब ने कर ले जो हम चो परंपरा रूढ़ीवादी व्यवस्था अनुसार जो नाम हमेशा रूढ़ीवादी ये कारण ने बोले से क्योंकि लोग एक भूलकुन भाती नुआ नुआ चीज बढ़ जाए सो ते भी हम चो चीज लुप्त हो ऐसे तो हम चो चीज के बचा तो बहुत कोशिश करुन भाती कि नहीं हुन थाने हम चो थाने बोले उनके अच्छा भव्य कर सकू हम चो हुन थाने बोले हम चो जो व्यवस्था ने बोले तो हम उनके कर सकू लेकिन ये भी धीरे धीरे हो दे लोग जागरूक हो दे ये भी मैं चालू कर ले से और समाज मन बल कर बंद कर सो तो हम तो समाज ने बोले गोट के हम सांगू से जैसे कि मरनी ने कपड़ा ने तो भी थी हुन कपड़ा के पाचे दफना लुआ ले उन कपड़ा जरम दे तो एक घर ने 50 रुपया जो गोटक तुआल के नहीं सोत नौले पिचोरी के नहीं सोत धोती के नहीं सोत उनकी जलाऊ तो उन 50-50 रुपया उन दुखेला घर के हम 50 रुपया पैसा दे देवा उन घर ने आज पना पानी बोले निपटू है तत्काल चुका तो ये बोले मचो समाज ने मैं बंद करा ले सी बहुत 10-15 साल पहले।
0: अच्छा
1: हाँ लेकिन कोनी कोनी जगह ने आस है उनके बल धीरे धीरे ठीक करवा क्योंकि जो समाज ने हम चो नुकसान आस है नुकसान लाइक जो काम के नहीं करूँ बता अच्छा काम के करूँ क्योंकि उनके दख्त लोग के बोले अच्छा लागो समाज के फायदा बोले हो मतलब समाज के भाई आज विकास जो बात करूं से सब दुनिया एताले कहाँ जा तो कोशिश कर तो हम दकुन दकुन बल नी सीख लू वाले और हम जो समाज के हम नी जगा ले कौन जगा दे दूसरा आदमी तो नहीं करो आप लोग समाज की हम की जगह पड़े तो उन्हीं कहा भाई बंधु मन बोले हम जो गोट के मांस हो और कौन बहुत जगह है हम ये बात ने सक्सेस बोले होलू से।
0: अच्छा हाँ हाँ ये तो खूब अच्छा गोटा है मानतर जैसन की तुम्हें जैसन पढ़े लिखे नौजवान लेखा लेखी मने वे समाज के संभाल तो काज पूरे इलास तो बोले ने असन तुम चो समाज चो और बोले जो लेखा लेखी मैं पढ़े लिखे उनमन बोले ने कसन बोले ने कहा कि रुचि धरसोत मन धरसोत समाज के सुधार काज असन आगे है सोत।
1: हाँ ये बे सब समाज धीरे धीरे संगठित हो ऐसे तो पीला जिला बोले काय बीती आए जैसे इनकी 9 अगस्त के मूल निवासी दिवस जो मना लू ने तो आगे हम चो पीला जिला मूल निवासी दिवस काय बीती आए ना जानते नहीं रहो हुन बोले हम चो संस्कृति के बचा तो बीती गोट सांग सोत हुन जगह मन ने बोले और हुन जगह गेरे लेखा मन जोन पढ़ाई जोन चीज नहीं मिले से हुन दकुन भाती बोले होता सीख सोत ये काय बीते हम के पूछ सोत ये बाबा ये काय बीती आए हम ही सांगू से बेटा ये हम चो समाज के ये जोन बस्तर ने जितलो बोले लोग आसू भारत देश ने जितलो बोले मूल निवासी लोग आसू ये विश्व ने जितलो मूल निवासी लोग आसो ये जो लोग ये ता हम चो गोटक विशेष अधिकार आते हुन दिने भव्य रूप ले हम हुन दिने हरि कुदिम चो दिन आए जैसे गोटक तैयारी समझ तो रहा है उनके और जा तो रहा है होता जाऊन बात ही हम चो कला संस्कृति के दखा तो रहा है एक दूसरे ने मेल मिलाप हो तो रहा है परिचय हो तो रहा है आप लो समाज ने जाऊन बात ही लोग तेबे होता डेवलप हो दे हम जो अधिकार का आया उनके जान तो रहा है ये नहीं जान लो कारण ने तो आज हम अवेलेबल है दूसरा लोग ले हम पीछे आसू डेवलप नहीं हो से उन चन चन जाऊन बात हम लोग अधिकार के जान तो कोशिश करते रहे बोलते सांगू से और ये पीला जिला बोल विशेष इंटरेस्ट धरसोत और उन जगह मन ने जाए सोत जोन बोले कार्यक्रम हो से हम जो मूल निवासी समाज जो
0: अच्छा
1: हाँ तेबे जाऊन बात सीख सोत और मौके असन लागे से कि ये पीला जिला बोल उन अब ये पूरा अधिकार के जाना बोलते हम भी बोलू से और उनमें जान तो कोशिश कर सोत क्योंकि और नहीं जान ले फिर कहाँ जा दे हुन फिर हुन जान ले तो काई बोला और हम ही जसन सांगू से ये तो पीढ़ी के हुन मन बोलते उनके बोल तो सांगू पड़े दिए और ये तो पीढ़ी के नी जान ले काई सांगू है जानू बीता तो सांगू है नी जानू बीता काई सांगू है उनका जाना और समझा और लोग के तुम ही समझा बोलते हम ही पीले जिला बोल रुचि अच्छा दखा दे इसे
0: अच्छा
1: रुचि धर सो।
0: अच्छा राजू मैं ये जानू चाहे से कि जैसन की ये बे बोलू भे ये समय ने तुम जो समाज ने जैसन की कहीं बदलाव बोलू भे जैसन की रहन सहन नहीं आए खान पान नहीं आए कपड़ा लता नहीं आए घर द्वार नहीं आए स्वच्छता नहीं आए कहीं असन बदलाव दिखा दे इसे।
1: हाँ दादा बदलाव हम ची समाज नहीं बस्तर संभाग ने जितलो बोले अब बस्तर चो गोट गोटिया उस तो अभी पहले जो अपेक्षा ये भी खूबे बदलाव इली कसन इली बोले अब लोग कसन खातो रहे कसन पीतो रहे कसन रतो रहे ये सब के जानला बोले पोड़सोत भाई आजी पोड़सोत बाबा साहब जो जो संविधान के बोले पोड़सोत और शिक्षा चीज स्तर ने बोल जाए सो पढ़ून भाती फिर हम के पढ़ ले तो उन आदमी खुद जानुक हो कि हम के कसन रतो रहे तो ये पे कोनी गांव ने बोले पहले जसन लोग का है उदल दाय लाइट बुजुर्बल नहीं रहे कि कसन जाले ये पे जो लोग नहीं किनिक बढ़िया साफ सफाई न्यास होत।
0: अच्छा।
1: पहले लोग पहले ले तो खूब परिवर्तन नहीं ली मैं पूरा गांव गांव बाट भूले से तो और समाज ने असन परिवर्तन ये तो जरूरी है क्योंकि आप लो शरीर आप लो अच्छा आप लो समाज के सुरक्षित संगातो का अपना समाज को एक अच्छा संदेश दे तो कहते सब चीज ने खान पान रीति रिवाज सारा चीज के बड़ा सुंदर ढंग ने बनाउ संगातो राय और असन बोलते सांगो से लोग के और किनिक अच्छा लागे इस मकबल की बस्तर ने अभी सभी जाति समाज चो किनिक अच्छा रहन सहन आसे
0: आसे हाँ हाँ तो राजू बघेल साल खूब हाँ। सेवा जुवार ना
1: सेवा जुवार दादा
2: आप सुन रहे थे राजू बघेल से भेंट वार्ता इनसे बातचीत कर रहे थे बलबीर सिंह कच्छ आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है इस समय रात्रि के 10 बजे हैं।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है रात्रि के 10:01:30 हुए हैं। कोदोमाली कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए कहरू राम और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुदोमाली कार्यक्रम में कहरू राम और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत।

आकाशवाणी की जगदलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कोदोमाली कार्यक्रम में कहरू राम वड्डे और साथियों के गाए गोंडी गीत। लीजिए अब सुनिए विवाह मांडो गीत।

रे।

कोदो माली कार्यक्रम में आप सुन रहे थे कहरू राम वड्डे और साथियों के गाए गोंडी गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है, ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।